सुप्रभात, हम विविध भारती के जोधपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 102.1 MHz पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 30वीं तिथि तद अनुसार 20 मई सन 2026। सवेरे के 5:57 होने वाले हैं। हमारी आज की ये प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: हम विविध भारती के जोधपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ज पर सवेरे के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, जिन्हें हम अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की ये 2 दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की 66 श्रेणियों को अधिसूचित किया है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ए का 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग बी का 7% आरक्षण रद्द कर दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक

0: व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमरीका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। संग्रहालय का ये तीसरा AI संचालित इंटरैक्टिव होलो बॉक्स होगा। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। विविध भारती का FM सन सिटी चैनल है। सवेरे के 6:05 हुए हैं। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं सीधे मुंबई, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। और इसी कड़ी में पहला कार्यक्रम होगा भक्ति संगीत वर्ण दरबार।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन, आचार्य चाणक्य का कथन है, शांति तुल्यम तपो नास्ति, न संतोषात परम सुखम, न तृष्णायाः परो व्याधिर्न च धर्मो दयापरः। अर्थात हमारे जीवन में शांति के समान कोई तप नहीं है, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, तृष्णा से बड़ा कोई रोग नहीं है और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

राम पिया मोरी रंग दे सुनरिया। बिल्कुल स्पष्ट है इसका अर्थ, और गहराई में जाएं और ध्यान दें।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से थोड़ी देर में सुबह 6:35 से आप सुनिएगा श्री रामचरितमानस गान भाग 194। सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से सुनेगा संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ऐसी लागी लगन। कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायक अनूप जलोटा। इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी आज सुनिएगा प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। सुबह 7 भूले बिसरे गीत 7:30 से हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 से सुनिएगा त्रिवेणी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। 8:30 सुनवाएंगे आपको कार्यक्रम चित्रलोक। सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 से सुनेगा कार्यक्रम आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार गिरीश कर्नाड पर।

सुबह 10 बजे से सुनवाएंगे आपको पिटारा। इसके अंतर्गत सेलुलॉइड के सितारे, इसके अंतर्गत सुनेगा पार्श्व गायिका कमल बरोट से कमल शर्मा की बातचीत, प्रस्तुति शकुंतला पंडित की। सुबह 11 बजे और रात्रि 11 बजे से रंग तरंग, यादों की महफिल, यह कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दिन में 12:05 से, सुरीला सफर दिन में 1 बजे से। दोपहर 2 बजे से सुनेगा त्रिवेणी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे दोपहर 2:30 से, सखी सहेली, इस कार्यक्रम का वक्त होता है दोपहर 3 बजे। आज के विषय हैं विश्व मधुमक्खी दिवस, भाषाओं से जुड़ा संस्कार, साड़ियों का संसार, तंचोई साड़ी, शब्द हमारा विचार आपके के अंतर्गत सद्भावना, व्यंजन के अंतर्गत ठेकुआ और दाल पीठा, संवादक है मंदाकिनी जोशी और आरती श्रीवास्तव, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। शाम 4 बजे से सुनिएगा पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान, इसके अंतर्गत सुप्रसिद्ध शायर और विविध भारती के सेवानिवृत्त केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग सुनिएगा, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। छाया गीत का पुनर्प्रसारण आप सुनते हैं शाम 5 बजे से, शाम 5:30 से सुनिएगा तराने नए पुराने।

शाम 6:30 से सुनेगा झरोखा, 6:35 से सुनवाएंगे संध्या रंजन। फौजी साथियों के लिए कार्यक्रम सुनेगा जयमाला शाम 7:00 से, शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनवाएंगे आपको राग अनुराग। रात 8:00 से हवा महल के अंतर्गत सुनेगा प्रहसन खरीदा हुआ दुख, लेखन शोभा रस्तोगी का, निर्देशन दुर्गा मेहरोत्रा का। और रात 8:15 से चित्रलोक। आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 9:00 से, रात 10:00 से सुनेगा छाया गीत आलेख एवं स्वर मंदाकिनी जोशी का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। रात 10:30 से ढलती जाए रात, और रात 11:00 से रंग तरंग। अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत कार्यक्रम विवरण।

भरत को श्री रामचंद्र के प्रेम की प्रतिमूर्ति मान सभी अयोध्यावासी उनके साथ राम को लौटा लाने के लिए वन जाने को उद्यत हैं। मंत्रियों को आदेश दिया गया है कि वे राज तिलक की सारी सामग्री वन में ले चलें, जहां वशिष्ठ जी श्री राम का राज तिलक करेंगे। सबसे आगे अरुंधति तथा अग्निहोत्र की सामग्री के साथ मुनि वशिष्ठ रथ पर सवार होकर चले। उनके पीछे तेज और तपस्या के धनी ब्राह्मणों के दल अनेक सवारियों पर आसीन हैं। नगर के नर नारियों के सुसज्जित रथों के साथ हैं रानियों की पालकियां। सबको विदा करके भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई पैदल चल पड़े तो माता कौशल्या ने भरत को बुलाकर उनकी पलैया ली और उनसे रथ पर सवार होने को कहा। दोनों भाइयों ने माता की आज्ञा सिर पर धारण की।

0: संगीत सरिता में भक्ति भाव पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि हैं जाने माने गायक श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी।
1: नमस्कार। ऐसी लागी लगन इस श्रृंखला के माध्यम से हम भक्ति रस की वर्षा से भीग रहे हैं और विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं श्री अनूप जलोटा जी। नमस्कार अनूप जी।
2: नमस्कार जी।
1: गंगा जमुना के तट पर लगातार आपके स्वर में और आपके पिताजी के गाए भजन गूंजते रहते हैं, लेकिन आज जगत में बहुत ही कोलाहल है। जो संस्कार भजनों के हमें मिले वो नई पीढ़ी से नदारद है। ऐसे में भक्ति संगीत की ये रसधारा कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है आप हमें बताएं। और कबीर के अनगिनत भजन आपने गाए हैं, तो कबीर के भजन के जरिए आप क्या संदेश देंगे सभी श्रोताओं को?
2: कबीर ने जो जो लिखा है, जो देखा है वो लिखा है। उन्होंने हमेशा समाज की सच्चाइयों को अपने भजन के माध्यम से उतारा है। तो कबीर जैसे दार्शनिक दूसरे नहीं है, कबीर जैसा यथार्थ बात करने वाला कोई नहीं है, सच्ची बात करने वाला कोई नहीं है। इसलिए हम कबीर को केवल कवि ही नहीं, समाज सुधारक भी मानते हैं।
1: जी जी।
2: कुछ भजन हैं जो बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, चदरिया झीनी रे झीनी, जन्म तेरा बात वही बीत गयो, मत कर मोह तू, न जाने कितने भजन हैं। मैं आपको कबीरदास जी का एक भजन सुनाता हूँ
1: जी।

इस भजन के माध्यम से कबीर ये समझा रहे हैं कि अलग अलग अवस्था में मनुष्य अलग अलग काम करता है, एक काम करना भूल जाता है, भगवान का नाम लेना। तो इसके भी कुछ कारण होंगे क्यों भूल जाता है। उन्हीं कारणों को समझाया है कि मनुष्य क्यों भूल जाता है भगवान का नाम लेना।

0: बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा हमें। अनूप जी, आपकी भक्ति रचनाओं में जीवन दर्शन समाहित है और वो दर्शन जैसे मन में समा जाता है, तो इस वक्त कोई ऐसा भजन याद आ रहा है आपको, हमारे श्रोताओं को सुनाए कुछ पंक्तियाँ?
1: कबीर को सुनाता हूँ
0: जी।

0: तो श्रोताओं, कबीर की इस रचना में हम डूब गए थे, खोसे गए थे। ऐसी लागी लगन, अनूप जलोटा से बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की ये थी नवी कड़ी। अब आज की ये कड़ी बस यहीं तक।
1: ऐसी लागी लगन, आप सुन रहे हैं जाने माने गायक अनूप जलोटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत आशीष झा की है। कल सुनिए इस श्रृंखला की अगली कड़ी।
2: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में बरखा फिल्म के गाने के साथ। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार हैं चित्रगुप्त।

हमारी अगली पेशकश मुकेश की आवाज में बेदर्द जमाना क्या जाने इस फिल्म से भरत व्यास हैं गीतकार और संगीतकार हैं कल्याण जी वीर जी शाह।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
0: तनिया। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में बाप बेटे इस फिल्म का गाना। इसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत से संवारा है मदन मोहन ने।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का, तुरंत हाजिर होते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए सुरैया मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और हुस्नलाल भगत राम का संगीतबद्ध किया गाना, फिल्म का नाम क्षमा परवाना।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए सुनिए किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में टैक्सी ड्राइवर फिल्म का गाना। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीतकार हैं एसडी बर्मन।

0: शरीर की हवा निकल गई।
1: जैक लगाओ, किक किक किक किक, स्टीपनिंग, पहिया, अरे पंपिंग।

विद्युत भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:00 बजकर

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मन्ना डे, सुलोचना कदम और साथियों की आवाजों में सुरंग फिल्म से शिवन रिज्वी के हैं बोल और तर्ज बनाई है पंडित शिवराम कृष्ण ने।

गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, हम हैं राही प्यार के। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में श्री 420 इस फिल्म के गाने के साथ। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

लीजिए अब सुनिए हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में हाउस नंबर 44। इस फिल्म का गाना साहिर लुधियानवी है गीतकार और संगीतकार हैं एसडी बर्मन।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूँ? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लूँ।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में बारादरी फिल्म का गाना। खुमार बाराबंकी हैं गीतकार और संगीतकार हैं शौकत दहलवी नाशाद।

चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

अगला गाना हमने लिया है यास्मीन फिल्म से, इसे गाया है लता मंगेशकर और तलत महमूद ने, लिखा है जानिसार अख्तर ने और संगीत से संवारा है सी रामचंद्र ने।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश हेमंत कुमार गीता दत्त और ठाकुर की आवाजों में मुनीम जी फिल्म से। साहिर लुधियानवी हैं गीतकार और संगीतकार हैं एस डी बर्मन।

0: गाइए ना।
1: दिल की उमंग है जवान,
0: गाइए ना, क्या मुश्किल है, सरगम बताऊं।
1: पामा पधा पगा सपा, दिल की उमंग है जवान, गाइए।
2: दिल की उमंग है जवान।

0: क्या मजा आ रहा है।
1: इस गाने के साथ ही आज का हम है राही प्यार के कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आगे दीजिए। नमस्कार।

0: ये विविध भारती का जोधपुर केंद्र है। एफएम बैंड 102.1 MHz पर सवेरे के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
2: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले

0: प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: नॉर्वे की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
3: इंडिया इज एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज।
4: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 185,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
3: पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
7: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
4: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत न हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
8: में जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे, भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरे तरह माइग्रेट करती है, सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
0: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787 8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC

0: 32 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
1: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
3: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार 3रे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
4: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोकसत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष, हेल्थ, डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द, नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख, दैनिक जागरण में है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की

0: टिप्पणी को दिया है भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार नक्सलवाद की तरह तीन वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है
1: धन्यवाद आकर्षिता और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025

0: इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ. नमस्कार.
1: ये विविध भारती का जोधपुर केंद्र है. एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ज पर सवेरे के 8:15 हैं और इस समय आप सुना करते हैं आपका पसंदीदा फिल्म संगीत. लीजिए साथियों, कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं सैयारा फिल्म के इस गाने के साथ. आवाजें हैं राजशेखर और हंसिका पारिक की. आइए ना आप और हम मिलकर सुनते हैं.

आपका पसंदीदा राजस्थानी भाषा को समर्पित कार्यक्रम मरुधरारा गीत सुनिए ना हर बुधवार सुबह 10 बजे जोधपुर के छोरे बलवीर के साथ ओनली ऑन FM सन सिटी। आपका अपना पसंदीदा फिल्म संगीत, गाने वो जो आपके सीने में धड़कते हैं, जिन्हें आप कभी अकेले में सुनते हैं तो कभी अपनों के साथ बैठकर आप सुनना चाहते हैं, जिन पर आप थिरकते भी हैं और जो आपके होठों पर आकर आपके दिल को धड़का देता है। चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब हम आपको सुनवा रहे हैं राघव चैतन्य और प्रीतम की आवाजों में एनिमल फिल्म का गीत। ये गीत लिखा है मनोज मुंतशिर ने और धुन किसने बनाई है ये आप सोचिएगा। संगीत, उसकी बीट, उसकी ध्वनि, उसकी सुरताल के साथ आप सोचिएगा, कल्पना कीजिएगा और फिर आप इसको कहीं और जो आपके गानों की जो लाइब्रेरी है उसमें जो ये गाना पड़ा है उसमें जाके सर्च करिएगा कि इसका संगीतकार कौन है, म्यूजिक किसने दिया है। आइए मिलकर सुनते हैं।

तुम जो मिले हो, विशाल मिश्रा और सचिन जिगर की आवाज़ों में विक्की विद्या का वो वाला वीडियो के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। ये विविध भारती का जोधपुर केंद्र है, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ज पर। सवेरे के 8:30 बजे हैं और इस समय आप सुना करते हैं आपका अपना पसंदीदा मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन कार्यक्रम। नमस्कार।

सुबह की किरणों ने कानों में ये बात कही है, रुकना नहीं पथिक, अभी तो है राह नहीं, थोड़ी सी ठोकर से हिम्मत मत हारना, आंधियों के बीच भी दीपक सा जलना, हर दिन एक अवसर है खुद को गढ़ जाने का, सपनों को अपने सच में बदल जाने का, चलते रहो विश्वास की डोरी थाम कर, मंजिल भी झुकेगी ना एक दिन तुम्हें सलाम कर।

0: और फुल मोटिवेशन के साथ, एनर्जी के साथ हम लेकर आ गए हैं आप डेली मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम. नमस्कार.
1: और मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में आपके अभिनंदन के साथ ही बताते हैं आपसे हमारी टीम का परिचय.

0: ट्रांसमीटर पर हमारे साथ हैं विक्रम सिंह भाटी और प्रकाश पवार।
1: कंट्रोल रूम से नियंत्रण कमान संभाल रहे हैं प्रवीण कुमार।
0: हमारे साथ एफएम चैनल पर हैं बलवीर और प्राइमरी चैनल पर हैं शैला माहेश्वरी उद्घोषिका के रूप में।
1: इस खूबसूरत कार्यक्रम की प्रस्तुति है संजय व्यास के द्वारा और संयोजन किया है राजेश लामडोर ने।
0: जानकारियों से सजे इस कार्यक्रम में आज आपके साथ हैं दो हमराई, मैं मीता मुल्तानी
1: और मैं नेहा रांकावत। और इसी परिचय के साथ आगाज करते हैं इस नमस्कार कार्यक्रम का। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: तो अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत से।

0: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु कमला नगर अस्पताल।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

श्रोताओं, कई बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत सारी हमारी जो भीतर की कमियां हैं उनको लेकर बहुत ही दुखी रहते हैं. हम सोचते हैं कि वो कमियां हैं और लेकिन उन पर काम करना, किस तरह से शुरू करना है हमें नहीं पता चलता. एक कहानी आपको सुनाती हूँ. ये कहानी है रोहन की, जो आपकी और मेरी तरह ही एक आम इंसान था, लेकिन उसका सपना बहुत बड़ा था. वो एक बहुत बड़ा चित्रकार, पेंटर बनना चाहता था. घंटों मेहनत करता, रंग बिखेरता, लेकिन जब भी अपनी पेंटिंग्स लोगों को दिखाता, सब उसकी कमियां निकाल कर रख देते. कोई कहता रंगों का तालमेल ठीक नहीं है, तो कोई कहता इसमें कोई भावना नहीं दिखती, कोई विचार नहीं दिखता. लगातार मिल रही असफलताओं और लोगों की आलोचनाओं से, क्रिटिसिज्म से तंग आकर रोहन ने मान लिया कि शायद वो कभी एक अच्छा चित्रकार नहीं बन पाएगा. उसने हार मान ली और अपना ब्रश एक कोने में फेंक दिया. फिर एक दिन उसकी मुलाकात शहर के एक मशहूर बुजुर्ग चित्रकार से हुई. रोहन ने अपनी मायूसी उनके सामने रखी और कहा, सर मैं हार मान चुका हूँ, लोग मेरी कला में सिर्फ कमियाँ ढूंढते हैं, मुझ में शायद कोई टैलेंट है ही नहीं. उस बुजुर्ग चित्रकार ने मुस्कुरा कर कहा, रोहन निराश मत हो, कल तुम अपनी सबसे बेहतरीन पेंटिंग बनाओ और उसको शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर रख दो. और हाँ, नीचे एक नोट लिख देना, जिस किसी को भी इस पेंटिंग में जहाँ भी कमी दिखे वहाँ एक छोटा सा गलत का निशान लगा देना. रोहन को बात समझ तो नहीं आई, लेकिन उसने वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था. फिर अगले दिन शाम को जब रोहन उस चौराहे पर अपनी पेंटिंग वापस लेने गया, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए. वो बुरी तरह टूट गया और रोते हुए बुजुर्ग चित्रकार के पास पहुंचा. मैंने कहा था ना सर, मैं किसी काम का नहीं हूं, सबने मेरी पेंटिंग को खराब बता दिया है. तो बुजुर्ग चित्रकार ने उसे उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, घबराओ मत रोहन, कल एक और पेंटिंग बनाना, बिल्कुल वैसी ही, और इस बार चौराहे पर रखने के बाद नीचे एक दूसरा नोट लिखना, इस पेंटिंग में जहां भी कोई कमी दिखे कृपया उसे सुधार दें. नजरिया बदल गया. रोहन ने भारी मन से एक और खूबसूरत पेंटिंग बनाई. उसी तरह की पेंटिंग थी वो भी, नए नोट के साथ उसने चौराहे पर उसे रख दिया. शाम को जब वो वापस गया तो वो हैरान रह गया. पेंटिंग जैसी की तैसी थी, उस पर एक भी निशान नहीं था. अगले दो दिनों तक वो पेंटिंग जो थी वो वहीं रही, लेकिन किसी ने उस पर एक लकीर भी नहीं खींची थी. तो रोहन जो है दौड़कर बुजुर्ग चित्रकार के पास गया और कहा, ये चमत्कार कैसे हुआ? तब उस चित्रकार ने रोहन को जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया, रोहन इस दुनिया में कमियां निकालना सबसे आसान काम है, और खुद की कमियां देखना भी सबसे आसान काम हो सकता है. कमियां निकालना आसान है, लेकिन पहली बार में सबने उस पर निशान लगा दिए थे उस पेंटिंग पर, लेकिन जब बात कमी को सुधारने की आई तो सब पीछे हट गए, क्योंकि जिम्मेदारी लेना और सही ज्ञान रखना मुश्किल होता है. तुम्हारी जिंदगी की कमान दूसरों के हाथों में नहीं है. लोग सिर्फ बोलना जानते हैं, करना नहीं. इसीलिए लोगों को आलोचनाओं, उनकी जो आलोचनाएं हैं उनसे डर कर अपने सपनों को छोड़ना कोई अच्छा काम तो नहीं है. तो बस श्रोताओं, मेहनत करते रहो और अपनी कमियों को खुद सुधारा करो.

श्रोताओं, अभी आपने ये स्टोरी सुनी कि मेहनत करते रहो, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। मित्रों, नदी का पानी मीठा रहता है क्योंकि वो देती रहती है। सागर का पानी खारा रहता है क्योंकि वो लेता रहता है। नाले का पानी दुर्गंध पैदा करता है क्योंकि वो रुका रहता है। अपना जीवन भी ऐसा ही कुछ है दोस्तों। अगर देते रहोगे तो मीठे लगेंगे, लेते रहेंगे तो खारे लगेंगे, और रुके रहेंगे तो बेचारे लगेंगे। इसलिए हमेशा चलते रहें, आगे बढ़ते रहें। और ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, चाहे वह बोझ क्रोध का हो, ईर्ष्या का हो या अभिमान का हो। इसलिए कोई बोझ नहीं लें, हमेशा दूसरों पर कुछ ना कुछ न्योछावर करते रहें, आगे बढ़ते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।

0: दोस्तों, प्रेम से बढ़कर त्याग है, दौलत से बढ़कर मानवता है, परंतु सुंदर रिश्तों से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। क्या कहोगी नेहा?
1: बिल्कुल सही बात है। रिश्ते जो होते हैं वो आपको अंदरूनी बाहरी मजबूती प्रदान करते हैं और आपके जीवन को एकदम ही सफल बना देते हैं, सुगम बना देते हैं।
0: बिल्कुल, तो हमें रिश्तों को अहमियत जरूर देनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करें, आप मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियां दे सकते हैं। तो इसी तरह से हम अपने रिश्तों को अहमियत दें, अपने प्रेम, त्याग, समर्पण, ममत्व भावनाओं को हमेशा सर्वोपरि माने, और इसी तरह जैसा आपको पहले भी कहा, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। तो अब एक प्यारा सा गाना सुने।

0: प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायक हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS वचिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन, पथरी मतलब विनायक हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।

0: योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

0: बिल्कुल श्रोताओं, ये रिश्ता जो है प्यार का, मोहब्बत का, इश्क का, कुछ ऐसा ही होता है। कई सारे रंग अपने में समाए रहता है, लेकिन जब हम देखते हैं कि कुछ कुछ शुरुआती दौर में वो हमें खिला खिला सा लगता है, सारे उसके रंग खिलकर आते हैं, लेकिन धीरे धीरे कुछ ना कुछ कमियां हमें नज़र आने लगती हैं। जैसे कि हमने पहले भी कहा था, कमियां हमें सबसे पहले नज़र आती हैं, लेकिन ये जो कमियां हैं वो कुछ गलत फहमियों की वजह से भी हो सकती हैं। बातचीत ना होने की वजह से जब वो बढ़ने लगती हैं, तो अपने दिल की बात, अपनी नाराज़गी या अपनी खुशी को बिना किसी डर के अपने पार्टनर के साथ उसके सामने रखना रिश्ते को आपके पारदर्शी बना देता है और ज़्यादा सुगढ़ मजबूत बनाता है। तो इस तरह से जो रिश्ते में उतार चढ़ाव आते रहते हैं दोस्तों, वो लाजमी तो है। ऐसे में एक दूसरे को समझना, बिना कहे दिल की बात जान लेना और मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहना ही सच्चे प्यार की निशानी है। और दोस्तों, आज की व्यस्त जिंदगी में एक दूसरे के लिए क्वालिटी टाइम निकालना इस रिश्ते को तरोताजा रख सकता है।
1: बिल्कुल नेहा, इसीलिए कहते हैं ना कि ये जिंदगी खूबसूरत है, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। ईश्वर पर रखो भरोसा और प्रयास बार बार करो।

हम आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से प्रसारित किया जाएगा।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंचे, इससे पहले नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज बांसवाड़ा के चुड़ादा गांव में रात्रि चौपाल में लोगों से संवाद का कार्यक्रम। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से राजस्थान के तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को उत्कृष्ट कार्य के लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का पहला पुरस्कार मिला। और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के पांचवे और अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। नॉर्वे की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया। इस मौके पर श्री मोदी ने बताया कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की नवाचार रणनीतिक भागीदारी अगले स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में चार गुना वृद्धि हुई है। 10 वर्षों में देश का बायलेटरल ट्रेड लगभग चार गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक में नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ग्राम विकास चौपाल की कड़ी में आज बांसवाड़ा पहुंचेंगे। श्री शर्मा चुड़ादा गांव में रात्रि चौपाल में ग्रामीणों के साथ संवाद करेंगे। वहीं कल सुबह गांव का पैदल भ्रमण कर लोगों से बातचीत करेंगे। गौरतलब है कि ग्राम विकास चौपालों के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्रामीणों से सीधा संवाद कर रहे हैं, साथ ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में फीडबैक भी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री का कल डूंगरपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। वे 84 क्षेत्र के धम्बोला गांव में ग्राम विकास चौपाल करेंगे। राज्य सरकार ने देर रात 17 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार एक एडीजी, 4 आईजी, 2 डीआईजी और 7 जिलों के एसपी बदले गए हैं। हरिंद्र कुमार कुमावत महावर को कोटा रेंज का आईजी बनाया गया है। वहीं चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डीडवाना कुचामन, टोंक, भरतपुर, नागौर और दौसा के एसपी बदले गए हैं। एडीजी लता मनोज कुमार को सिविल राइट से कम्युनिटिंग पुलिस में भेजा गया है। वहीं एडीजी हवा सिंह घुमरिया को एडीजी सिविल राइट्स का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राजस्थान विधानसभा की स्थापना के उपलक्ष्य में चलने वाले अमृत महोत्सव के तहत इस साल 4 बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये उत्सव विधायिका को समर्पित होगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि अमृत महोत्सव के जरिए परंपरा, नवाचार और जनविश्वास एक साथ नजर आएगा। श्री देवनानी कल विधानसभा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा की कार्यकारिणी समिति की बैठक में बोल रहे थे। राज्य में सहकारिता, उपभोक्ता, भंडार और क्रय विक्रय सहकारी

0: AIR News Rajasthan पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की ओर से राजस्थान के तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड नो टोबैको डे 2026 में राज्य के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में पहला पुरस्कार मिला है और ब्यौरा दे रही हैं न्यूज डेस्क से हमारी सहयोगी सालेहा गाजी।
1: राज्य में तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में व्यापक मॉडल स्थापित किया गया है। इसके तहत 500 से ज्यादा तंबाकू मुक्ति उपचार और परामर्श केंद्र चलाए जा रहे हैं। इन्हें जियो टैग कर लोगों की सुविधा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है। साथ ही 83,000 से ज्यादा स्कूलों में तंबाकू मुक्त विद्यालय परिसर संबंधी निर्देशों की पालना की गई है और तंबाकू मुक्ति के लिए 2.5 लाख से ज्यादा जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। प्रदेश में तंबाकू मुक्त ग्राम अभियान को आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना से जोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में जन भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।
0: प्रदेश में प्री डीएलएड परीक्षा आज आयोजित की जा रही है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है। ये परीक्षा दो पारियों में हो रही है। करौली जिले में इसके लिए 25 और बारां जिले में 24 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख एक दिन और बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं NTA की ओर से नीट UG परीक्षा 21 जून को दोबारा लिए जाने की घोषणा के बाद शिक्षा नगरी कोटा में देश भर से विद्यार्थियों की वापसी शुरू हो गई है। शहर के छात्रावासों, पुस्तकालयों और कोचिंग संस्थानों में विद्यार्थियों की चहल पहल नजर आने लगी है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने प्रदेश के अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन के लिए पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्री खेवसर कल जयपुर से VC के माध्यम से समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने लू और तापघात, मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं और HPV वैक्सीन की प्रगति सहित अन्य बिंदुओं पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश में भीषण गर्मी की स्थिति को देखते हुए अस्पतालों में हीट वेव से प्रभावित मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने और आवश्यक दवाइयां तथा कूलिंग उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। प्रदेश में प्रचंड गर्मी का दौर बना हुआ है। गर्म हवाओं से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। कल प्रदेश के 9 शहरों में दिन का पारा 44 डिग्री से अधिक रहा। चित्तौड़गढ़, अलवर, पिलानी, श्रीगंगानगर, दौसा, चूरू, करौली और कोटा में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप रहा। वहीं फलौदी, चित्तौड़गढ़, कोटा और जयपुर में रात का पारा 30 डिग्री के ऊपर मापा गया। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार तापमान में गिरावट आई है, किंतु तेज गर्मी का असर बरकरार है। आज दक्षिण पूर्वी भागों में और सीमावर्ती जिलों में कहीं कहीं हीट वेव की चेतावनी है। श्रीगंगानगर निवासी मानव सुथार का भारतीय क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। वे भारत अफगानिस्तान के बीच होने वाली टेस्ट और वनडे सीरीज में खेलेंगे। मानव लेफ्ट आर्म स्पिनर, बॉलर और बल्लेबाज भी हैं। सुथार की इस उपलब्धि से जिले भर में खुशी का माहौल है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंचे। इससे पहले नॉर्वे में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज बांसवाड़ा के चुड़ादा गांव में रात्रि चौपाल में लोगों से संवाद का कार्यक्रम। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से राजस्थान के तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को उत्कृष्ट कार्य के लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का पहला पुरस्कार मिला। और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

श्रोताओं, समाचारों के बाद हम फिर से हाजिर हैं एक कार्यक्रम लेकर जिसका नाम है नमस्कार। आज नमस्कार में जानकारियों से सजी बहुत सी बातें आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये म्यूजिकल ट्रैक।

चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: श्रोताओं, आज है 20 मई और आज का दिन देश और दुनिया के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जानते हैं क्या है आज के दिन का इतिहास? वर्ष 1498 और दिन था आज का, यानी 20 मई को ही पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा भारत के मलाबार तट पर कालीकट, जो कि आज हम कोझिकोड के नाम से जानते हैं, वहां पहुंचे। इसके साथ ही यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज पूरी हुई।
1: श्रोताओं, आज ही के दिन 1873 में दुनिया की पहली ब्लू जीन्स का जन्म हुआ था। जी हाँ, बिजनेसमैन लेविस स्ट्रॉस और दर्जी जेकब डेविस को तांबे के रिवेट्स वाली मजबूत पतलून बनाने का पेटेंट मिला था। यहीं से आज की मशहूर ब्लू जीन्स की शुरुआत हुई थी।
0: दोस्तों, वर्ष 1932 प्रसिद्ध महिला पायलट अमेलिया ईयरहार्ट ने अटलांटिक महासागर के ऊपर अकेले उड़ान भरी थी, जिसे पूरा करने के बाद वे आयरलैंड में उतरी थी। आज ही के दिन
1: सन 1972 में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कोलकाता में दूसरे हावड़ा ब्रिज विद्यासागर सेतु की आधारशिला रखी थी।
0: वर्ष 1990 में आज ही के दिन हबल स्पेस टेलीस्कोप ने पहली बार अंतरिक्ष से पृथ्वी पर तस्वीरें भेजी थी।

0: बता सकता है जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी। पहली फेयर यूथ सोनेट्स, जिन्हें एक से लगाकर 126 तक समझा जा सकता है, इसका जो डिवीजन किया गया था, ये कविताएं एक अज्ञात खूबसूरत और युवा पुरुष मित्र को संबोधित हैं। और दूसरा जो इसका हिस्सा है 127 से लेकर 154 तक की जो सोनेट्स हैं, वो डार्क लेडी सोनेट्स भी मानी जाती हैं। ये कविताएं एक रहस्यमयी महिला को समर्पित हैं।
1: साथ ही श्रोताओं, आज हम मना रहे हैं विश्व मधुमक्खी दिवस, जो हर साल 20 मई को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में मधुमक्खियों की भूमिका को मान्यता देने के लिए और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिन की घोषणा स्लोवेनिया की पहल पर की गई थी। 20 मई का दिन आधुनिक मधुमक्खी पालन के प्रणेता एंटोन जानसा के जन्म दिवस की स्मृति में चुना गया था। मित्रों, मधुमक्खियां केवल शहद ही नहीं देती, बल्कि ये प्रकृति की सबसे बेहतरीन परागण करता है। दुनिया की लगभग एक तिहाई फसलें और पौधे इन्हीं पर निर्भर होते हैं। आजकल बढ़ते प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, निवास स्थान के नुकसान और कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग से इन छोटे जीवों का जीवन खतरे में पड़ गया है। तो हम सभी जहाँ कहीं भी मधुमक्खी को या फिर उनके छत्तों को देखें, जो स्थानीय मधुमक्खी पालकों के लिए प्राकृतिक शहद तैयार करते हैं, उनके लिए हम अनुकूल फूल पौधे लगाकर इनके लिए योगदान दे सकते हैं। तो देखिए, मधुमक्खी की भी कितनी महत्ता बताई गई है कि ये हमें प्रकृति का कितना अद्भुत तोहफा है, जो हमें पारिस्थितिकी संतुलन को नियंत्रण रखने में सहायक है। तो अब सुनते हैं इसी के मिलता जुलता एक गीत।

0: एक खुशियाँ री उम्मीद विनायका हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर गीता भवन रोड जोधपुर।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: पथरी, प्रोस्टेट, गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्ला स्टेडियम के सामने, जोधपुर। मोबाइल 9829027065।
2: ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है।
3: कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रूपए का फ्रॉड हुआ है, पता है?
2: इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना।
4: टेंशन क्यों, मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निःशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
6: बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान आती है, माता पिता के माथे पर उतनी बड़ी चिंता की लकीरें खिंच जाती है, क्योंकि बच्चे छुट्टियों में शरारतें करते हैं, अपने मम्मी से नई नई डिश बनाने की फरमाइशें करते हैं। स्कूल बंद होने का मतलब है कि बच्चों का सेट रूटीन खत्म हो जाता है, तो ऐसे में क्या किया जाए? तो मित्रों, ऐसे में उनका ज्यादातर समय TV, मोबाइल या वीडियो गेम्स में जो बीतने लगता है, उससे अलग छुट्टियों में उनका रूटीन बदल कर उन्हें कैंप में भेजना चाहिए। तो ये समर कैंप किस तरह से लाभदायक हैं, इसके बारे में आज हम काम की बात करेंगे। मित्रों, रिसर्च के अनुसार छुट्टियों में समय का अनुशासन छूट जाता है, जिससे बच्चे सुस्त हो जाते हैं। शारीरिक गतिविधि में कमी और स्क्रीन टाइम बढ़ने से बच्चों के हृदय के स्वास्थ्य, नींद और व्यवहार पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए छुट्टियों में भी रूटीन बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसलिए जो बच्चे समर कैंप जाते हैं, वे घर पर रहने वाले बच्चों की तुलना में कहीं ज्यादा एक्टिव रहते हैं। समर कैंप का फिक्स रूटीन होता है, जहां जाने के बाद बच्चे नए दोस्त बनाते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं और शारीरिक गतिविधि में लगे रहते हैं। इससे उनका स्क्रीन टाइम खुद ब खुद कम हो जाता है। उसके लिए कहां कहां भेजा जाए और क्या किया जाए, तो बच्चों को शाम के समय घर से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करने के साथ ही उन्हें आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भेजना चाहिए। उन्हें स्विमिंग क्लास भेज सकते हैं, या उन्हें स्केटिंग करने के लिए भेज सकते हैं, या जिम्नास्टिक के लिए। खुले मैदान में खेलने से बच्चों की हड्डियों का विकास अच्छा होता है, शरीर का एक्स्ट्रा फैट बर्न होता है और उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट तेज होता है। साथ ही जो बच्चे डांस के लिए इंटरेस्टेड हों या मार्शल आर्ट सीखने जाएं, उनके लिए डांस क्लासेस भेजना बहुत अच्छा है। डांस से भी उनकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, और डांस, जुम्बा, ताइक्वांडो आदि भेजकर भी उनके रूटीन को बेहतर बनाया जा सकता है। कोई भी ऐसी शारीरिक गतिविधि जिसमें ऊर्जा खर्च होती है, वह व्यायाम है, और बच्चों को इनके लिए भेजने के साथ ही घर में दोपहर में छोटे छोटे काम सिखाए जाएं। बच्चों को मिट्टी के पौधे लगाने, पौधों को पानी देने या अपने स्वयं के काम स्वयं करने के लिए, जैसे अलमारी सेट करने जैसे काम करने भी सिखाए जाने चाहिए। भले दोपहर की गतिविधि खेलकूद ना हो, लेकिन ये बच्चे को लगातार एक्टिव बनाए रखती है, और साथ ही इन एक्टिविटीज से उनमें जिम्मेदारी का एहसास होता है और साथ ही साथ उनका प्रकृति से जुड़ाव भी होता है। तो साथियों, आप भी बच्चों को छुट्टियों में इन एक्टिविटीज में जरूर भेजिए।

श्रोताओं, आज है बुधवार और बुधवार को हमारा स्पेशल सेगमेंट होता है इतिहास। और इतिहास में आज हमको ले चलते हैं आप सभी को बटेश्वर हिंदू मंदिर, जो मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित है। और चंबल घाटी में स्थित यह स्थल 8वीं और 10वीं शताब्दी के बीच गुर्जर प्रतिहार राजवंश द्वारा निर्मित लगभग 200 बलुआ पत्थर के मंदिरों का एक विस्तृत समूह है। मित्रों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इन खंडहर हो चुके मंदिरों का जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण किया गया है। यह स्थान ग्वालियर से लगभग 35 किलोमीटर दूर और मुरैना से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। बटेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के चंबल की घाटी के बेड़ों में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिरों का विशाल समूह है। यह ऐतिहासिक स्थल बहुत ही भव्य बना हुआ है और भगवान शिव, विष्णु और शक्ति को समर्पित है, जो हिंदू धर्म के 3 प्रमुख परंपराओं को दर्शाते हैं।

0: वास्तुकला की दृष्टि से यह मंदिर बहुत ही उत्कृष्ट नमूना है, बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है यहाँ के मंदिर, जो शंकाकार शिखर पर को अपने में समेटे हुए हैं। लगभग 25 एकड़ के क्षेत्र में फैले यह 200 छोटे बड़े मंदिर एक बहुत ही वास्तुकला का अद्भुत नमूना दिखाते हैं। प्राकृतिक आपदाओं और आक्रमणकारियों के हमलों के कारण यह पूरा परिसर खंडर में बदल गया था, लेकिन 2005 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और प्रसिद्ध पुरातत्वविद के मोहम्मद के नेतृत्व में इसका पुनर्निर्माण किया गया और बिखरे हुए पत्थरों को जोड़कर मंदिरों को फिर से खड़ा करने का एक अद्भुत और कठिन कार्य शुरू किया गया। इसे टूटे हुए मंदिरों को जोड़ने की दुनिया की सबसे बड़ी पहेली के रूप में भी देखा जाता है।
1: श्रोताओं, इस बटेश्वर हिंदू मंदिर का मुख्य आकर्षण है भूतेश्वर मंदिर और इस पूरे स्थल का नाम शायद भूतेश्वर मंदिर से पड़ा है, जो इस परिसर का सबसे बड़ा शिव मंदिर है। ये स्थान है पदावली के पास एक पहाड़ी के ढलान पर स्थित, जो चंबल नदी घाटी के किलों के करीब है। और यहाँ पहुंचा कैसे जा सकता है सड़क मार्ग द्वारा अगर बात की जाए तो बटेश्वर मंदिर मुरैना शहर से लगभग 35 किलोमीटर पूर्व में और ग्वालियर से लगभग 35 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। और इसका निकटतम हवाई अड्डा अगर देखा जाए तो वो ग्वालियर ही है, लगभग 40 किलोमीटर दूर इसका निकटतम हवाई अड्डा है और निकटतम रेलवे स्टेशन इसका मुरैना और ग्वालियर इसके प्रमुख रेलवे स्टेशन माने जाते हैं, जहां से टैक्सी या बसों के माध्यम से मंदिर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। एक बात और ध्यान देने की है कि कई मंदिर अभी भी पुनर्निर्माण के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन यहाँ का प्राचीन और कलात्मक माहौल इसे फोटोग्राफी और ऐतिहासिक पर्यटन के लिए एक बेहतरीन स्थान बनाता है।

0: श्रोताओ नमस्कार। कार्यक्रम में जन्मतिथि विशेष व्यक्तित्व की चर्चा कर लेते हैं। आज भारत के एक महान और साहसी सैनिक कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत की जन्मतिथि है, जिनका जन्म आज ही के दिन 1918 को राजस्थान के झुंझुनू में हुआ था और 1948 के भारत पाक युद्ध के दौरान जम्मू कश्मीर के तीतवाल सेक्टर में दुश्मन की चौकियों को नष्ट करने की जिम्मेदारी उनकी टुकड़ी को मिली थी। भारी गोलाबारी के बीच अपनी टीम के अधिकांश साथियों के शहीद होने और खुद भी गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया था। अकेले ही आगे बढ़े और दुश्मन के कई बंकरों को पूरी तरह तबाह कर दिया। अंतिम सांस तक लड़ते हुए उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया था। मेजर पीरू सिंह, इनका जीवन केवल युद्ध भूमि की कहानी नहीं बल्कि कर्तव्य, त्याग और राष्ट्र प्रेम की प्रेरक गाथा है। ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े पीरू सिंह ने कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा और आगे चलकर भारतीय सेना में भर्ती होकर मातृभूमि की रक्षा को अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्हीं की सम्मान में राजस्थान के झुंझुनू में एक भव्य प्रतिमा और सर्कल बनाया गया है और भारतीय नौसेना और सेना ने अपने कई जहाजों और शिविरों का नाम पीरू सिंह के नाम पर रखा हुआ है। उनकी जयंती पर देश उनके इस बेमिसाल शौर्य को नमन करता है।
1: श्रोताओं, जयंती के मौके पर आज हम याद करते हैं हिंदी साहित्य में छायावादी युग के चार स्तंभों में से एक सुमित्रा नंदन पंत को। पंत नए युग के प्रवर्तक के रूप में आधुनिक हिंदी साहित्य में उदित हुए थे। ऐसे साहित्यकारों में वे उनका नाम आता है जिनका प्रकृति चित्रण समकालीन कवियों में सबसे बेहतरीन था। आकर्षक व्यक्तित्व के धनी सुमित्रा नंदन पंत के बारे में साहित्यकार राजेंद्र यादव कहते हैं कि पंत अंग्रेजी के रूमानी कवियों जैसी वेशभूषा में रहकर प्रकृति केंद्रित साहित्य लिखते थे। जन्म के महज 6 घंटे के भीतर उन्होंने अपनी माँ को खो दिया और वे लोगों से बहुत ही जल्दी प्रभावित हो जाते थे। पंत ने महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स से प्रभावित होकर उन पर कई रचनाएं लिखी। हिंदी साहित्य के विलियम वर्ड्सवर्थ कहे जाने वाले इस कवि ने महानायक अमिताभ बच्चन को अमिताभ नाम दिया था। पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कारों से नवाजे जा चुके पंत की रचनाओं में समाज के यथार्थ के साथ साथ प्रकृति और मनुष्य की सत्ता के बीच टकराव भी होता था। पंत को कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार एवं चिदंबरम

0: पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ मित्रों। उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं वीणा, पल्लव, गुंजन, और जो छायावादी शैली में सौंदर्य और प्रेम की प्रस्तुति है, युगांत, युगवाणी तथा ग्राम्या में पंत जी के प्रगतिवादी और यथार्थ परक भावों का प्रकाशन हुआ है। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूली, युगपथ, उत्तरा, अतिमा, रजत रश्मि, इन संग्रहों में अरविंद दर्शन का उनका प्रभाव परिलक्षित होता है। पंत जी की अंतर्दृष्टि तथा संवेदनशीलता ने जहां उनके भाव पक्ष को गहराई और विविधता प्रदान की है, वहीं उनकी कल्पना प्रबलता और अभिव्यक्ति कौशल ने उनके कला पक्ष को संवारा है।
1: श्रोताओं, आज ही के दिन 20 मई 1977 को दिल्ली में जन्मी भारतीय महिला क्रिकेट की उन अग्रणी खिलाड़ियों में से एक अंजुम चोपड़ा का भी आज हम जन्मदिन मना रहे हैं, जिन्होंने बचपन से ही क्रिकेट के प्रति गहरा लगाव रखा। अंजुम चोपड़ा उन कठिन प्रतिस्पर्धा के बीच अपनी प्रतिभा और मेहनत से भारतीय टीम में इन्होंने स्थान बनाया था और वे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं और अपनी शानदार बल्लेबाजी, संयमित खेल शैली और नेतृत्व क्षमता के लिए जानी जाती हैं। अंजुम चोपड़ा भारत की पहली महिला क्रिकेटर बनी जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 एक दिवसीय मैच खेलने का गौरव प्राप्त हुआ। मैदान पर उनकी बल्लेबाजी किसी शांत नदी की तरह लगती थी, जिसमें धैर्य भी था और अवसर आते ही तीव्र प्रवाह भी था। क्रिकेट से संन्यास ले लिया है उन्होंने, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने खेल से अपना जुड़ाव जो है बनाए रखा है। क्रिकेट में वे कमेंट्री, लेखन और खेल विश्लेषण के माध्यम से महिला क्रिकेट को आगे बढ़ाने में योगदान दे रही हैं और उनकी आवाज आज भी कमेंट्री बॉक्स में खेल की बारीकियों को सहज और रोचक ढंग से प्रस्तुत करती है। अंजुम चोपड़ा का जीवन संघर्ष, अनुशासन और आत्मविश्वास की एक प्रेरक मिसाल है। दोस्तों, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि प्रतिभा और निरंतर मेहनत के बल पर महिलाएं हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल कर सकती हैं। आज उनके जन्मदिवस पर हम समस्त आकाशवाणी टीम की तरफ से उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

श्रोताओं, अब हम बात करते हैं स्मृति दिवस की। तो आज लाल बाल पाल में से प्रसिद्ध बिपिन चंद्र पाल की पुण्यतिथि है। 20 मई 1932 के दिन उनका निधन हुआ। भारत के स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में क्रांतिकारी विचारों के जनक के रूप में प्रसिद्ध बिपिन चंद्र पाल ने अंग्रेजों की चूलें हिला दी थी। वे लाल बाल पाल तिकड़ी का एक हिस्सा थे और उन्होंने वंदे मातरम पत्रिका का संस्था की स्थापना की और साथ ही समाज सुधार के क्षेत्र में भी वे बहुत अग्रणी रहे।

0: साथ ही आज हम पुण्यतिथि मना रहे हैं टी प्रकाशम की, जो भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रख्यात वकील, राजनेता और समाज सुधारक थे। उन्हें उनके अदम्य साहस और वीरता के कारण आंध्र केसरी की उपाधि दी गई थी। वे मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री और भाषाई आधार पर बने पहले आंध्र राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे।
1: श्रोताओं, भारतीय समाज शास्त्र और मानव शास्त्र के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान को याद करते हुए लीला दुबे की आज हम पुण्यतिथि मना रहे हैं। भारत की अग्रणी महिला विद्वानों में से गिनी जाने वाली, जिन्होंने समाज, परिवार, लैंगिक समानता और भारतीय सांस्कृतिक संरचनाओं पर गहन अध्ययन किया था। आज उनकी हम पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए, श्रद्धा नमन करते हुए ये संकल्प ले सकते हैं कि समाज में समानता, सम्मान और मानवीय मूल्यों को और अधिक मजबूत बनाया जा सकता है। उनका जीवन ज्ञान, संवेदनशीलता और सामाजिक चेतना का सुंदर संगम था।

0: श्रोताओं, हिंदी साहित्य जगत में विशेष स्थान रखने वाले गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की भी हम पुण्यतिथि मना रहे हैं। वे हिंदी कविता के ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने रचनाएं कई सारी लिखी, लेकिन राष्ट्र प्रेम पर, सामाजिक चेतना पर और मानवीय संवेदनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति उनमें हमें देखने को मिलती है। द्विवेद युग के प्रमुख कवियों में उनका विशेष स्थान माना जाता है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज को जागरूक करने, देशभक्ति की भावना को प्रबल बनाने का कार्य किया। और उनकी जो भाषा शैली है उसकी बात करें तो वो काफ़ी सरल, सहज और जनमानस से निकट थी। इसीलिए उनकी रचनाएं आम लोगों के हृदय तक आसानी से पहुंच जाती थी।
1: स्नेही नाम के अनुरूप उनकी रचनाओं में प्रेम, संवेदना और आत्मीयता का मधुर स्वर मिलता है। उनकी शैली की झलक देने वाली कुछ पंक्तियां अक्सर उद्धृत की जाती हैं, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज के इस मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन

0: नमस्कार को हम कहते हैं अलविदा। कल सुबह फिर मुलाकात होगी इस प्रोग्राम में, तब तक के लिए स्वीकार कीजिए मीता मुल्तानी,
1: नेहा रांकावत का नमस्कार।

0: एफएम सन सिटी चैनल है। लीजिए सुनिए राजस्थानी भाषा को समर्पित कार्यक्रम मरुधरारा गीत।
1: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
2: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
3: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
4: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
3: कमला नगर अस्पताल, फाल लिंक रोड, जोधपुर।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: FM सन सिटी पर आपके साथ है आपका अपना बलबीर सिंह।

जेठ आषाढ़ा चालती लू लागा अणपार, जेठ आषाढ़ा चालती लू लागा अणपार, कंचन वर्णी माठरो पानी अमृत धार, पानी अमृत धार। देखो भया कि जेठ आषाढ़ रे महीना में हागेड़ी गर्मी पड़े है, अणपार लुआ जकी है वे तन ने झुलसावे है, ऐड़े में माटी रे मटके रो पानी अमृत बरोबर लागे है। आषाढ़ सावन री गर्मी में दुख पावे है जीव, आषाढ़ सावन री गर्मी में दुख पावे है जीव, कोरे घड़ेरे पानी स्यू नीचो लागे गीव। बाया आषाढ़ सावन रे महीने में जिकी गर्मी पड़े उन गर्मी में उमस बद जाया करे है, जीव बेहाल भी जाया करे है, और गर्मी भी घनी बेजा पड़े है, घनी सतावे है, इन बेला कोरे घड़ेरो पानी रो मोल बद जाया करे है।

देखो भैया की घड़ी पुराने जमाने की बात है कि जब आपने घर रे माए फ्रिज नहीं होता और भैया उन जमाने में तो आपना बड़ेरा तो फ्रिज में समझता ही नहीं हा उन भगत उनाले में गले ने तर करण वास्ते आपरी तीर बुझावन वास्ते मटके मुड़ पतोली या सुराही रे पानी जो को है वो पीन आपरी तीर बुझावता। और भाया उन पुराने जमाने में तो घर रे माए माटी राइज बर्तन होता पण भाया आज रे आधुनिक जमाने में इन नव युग में अब तो घर घर में मोटा मोटा मॉडर्न फ्रिज आईगा है। आरओ वाटर प्यूरीफायर री मशीन लाग गई है और घर में परिणारी जो कि परंपरा है परिणारी वह खत्म बेगी है क्योंकि भाया अपने अठे भी फ्लैट में रेवन रो कल्चर पनप गो है और अपन अठे संयुक्त परिवार टूट ने अब एकल परिवार बन गया है और आज रे टाबरा ने आज री नुवी पीढ़ी ने मोटियारा ने मुड़ मटकी पतोली सुराई इन रे बारे में तो मारे ख्याल से ठाई नहीं वेला क्योंकि भाया भाया आज री पीढ़ी ने तो ठाई कटू वेला क्योंकि ए तो नुवे जमाने री पीढ़ी है ए तो जेन जी है और अबे तो देखो भाया कि इन सुबह धके वाली पीढ़ी भी आएगी है उनरो नाम है अल्फा। तो भाया ए तो घर में आवे और फ्रिज रो आडो खोले पानी री बोतल निकाले और उबा उबाई झट सू पानी पीर पाची बोतल जकी है वह फ्रिज माए धर देवे जबकि पानी तो बैठने पीऊंगा चाहिए ए अपन बड़ेरा अपने सीख दी है। कहीं आज री आ पीढ़ी जाने हैं कि माटी सू बनियोड़ा मटके रो पानी पीवन सू पेट संबंधित बीमारियां नहीं विया करे है और अपनी धोरा धरती रे जीवन में तो मटके रो मोल इन बखत बद जाया करे है। माटी रो मटको जीवन री गाथा ठंडो पानी करे मिटावे सगली व्यथा। ओ कहो जावे है भया कि माटी रे मटके रो पानी अमृत बरोबर विया करे है और ओ पानी अपने सेहत वास्ते घणो ही फायदेमंद वे है। तो भया आज माटी सु बनियोड़ा मटके रे पानी रा फायदा आप ते पुगावला आप रे पसंदीदा आप रे हिवड़े बसियो मायड़ भाषा ने समर्पित कार्यक्रम मरुधरारा गीत में और ठेठ राजस्थानी लोक रचना सु आप रो मनोरंजन कराला। कार्यक्रम रो आज रो नुवो अंक लेर हाजिर होयो हूँ मैं इन संगीतमय रथरो सारथी और आप रो दीवानो दोस्त बलवीर मैं हूँ छोरो जोधपुर रो। आप सगला हिताड़ु श्रोताओं ने सीर का साइनों ने नया नवेलों ने और बड़ा बड़ेरों ने मारा राम राम। तो ये फायदा आप ती पुगावा पण देखो कि गर्मी हागेड़ी पड़े है और गर्मी में घड़े रो पानी जो को है घड़ा ही फूट रो लागे है और इन गर्मी में जो को है तन झुलसाव दी गर्मी में जद कोई कई कहवे है जीवड़ लो जो को है कल्पी जे है।

0: सौम्यता है इसकी पहचान।
1: ये शहर है अमन का, यहाँ की फिजा है निराली।
0: FM Sun City
2: FM Sun City पर आपके साथ है आपका अपना बलबीर सिंह।
3: FM Sun City रे इन आंगने आप सुन रिया हो मायड़ भाषा झनझन ताई पुगाव तो मायड़ भाषा री ओळखाण कराव तो आप रे हिवड़े बसियो राजस्थानी भाषा रो लूंठो रेडियो कार्यक्रम मरुधरारा गीत। आज रे अंक में आपे बात कर रिया हां माटी सु बणियोड़ा मटके री और इन रो ठंडो पानी पीवण सु सेहत ने होवन वाला फायदे री। इन फायदे री आपे बात कर रहा भाया पर उनसु पहला हमेश बात करूं मैं आपरो स्वागत नंदन वंदन अभिनंदन मारे अंदाज में। थे आंगणिये पधारिया मारे बदियो खुशियारो भंडार, थे आंगणिये पधारिया मारे बदियो खुशियारो भंडार, मारे घर मारो कार्यक्रम हमेश करूं मैं थानो इंतजार, हमेश करूं थानो इंतजार। और देखो कि हमेश मैं आपरो ढोल थाली रे साथे बधाने आपने इन कार्यक्रम रे माय लिया करूं हूं। FM Sun City रे आंगणिये आपने बधाने लिया करूं हूं। आपने तिलक करा, मंगल तिलक करा और फेटो पैरान आपरो स्वागत करा। और भाया आपने ठा है कि आ ढोल थाली जकी है अपने FM Sun City री जकी नारी शक्ति है उनारे वास्ते भी है। वे घर में जटे भी वे चाहे वे झाड़ू कटको करे, बासन बर्तन करे, बड़ा बुजुर्गारी सेवा करे या पचे घर में और भी कोई दूजो काम काज करे, आपरी भोजनशाला में भोजन पकावे की भी काम काज करता वे तो भी उनारे कानारे कने मरु दरारा गीत कार्यक्रम गूंज तो रिया करे है। और जब आ ढोल थाली बाजे तो थोड़ी जेज वे घूमर घालिया करे है तो आप घूमर घाल लो और आपके साथ मैं भी दे से जो मने लगाणी आवे ठुमका मैं लगाई लूं।

देखो कि आज तो हमारे स्टूडियो में एक साथ इतनी सारी नारी शक्ति जगी है वह भेड़ी वेन घूमर घाल रही है और मने अरज कर रही है कि थोड़ी एक जेज और भाजन तो हमारे साथ आप भी थोड़ी एक जेज और घूमर घाल लो।

कि माटी रा बर्तन बनावण रो जी की महारत जिन्हें हासिल है उन्हें आपे कुम्हार गया करा हा। वे माटी रा बर्तन बनावण वाला शिल्पकार है। इनारी कला जकी है वह कुंभकारी कहलावे है। और भाया बात करा मटकी रे ठंडे पानी पीवण सू होवण वाला फायदे री, तो देखो भाया की चाक रे माथे जद माटी ने आकार देवे अपन कुम्हार भाई आप रे हाथा सू गोलाई देवता देवता मटकी रो रूप लेवे, मूड बन जावे, पतोली जकी है वह बन जाया करे है, सुराई रो आकार ले लिया करे है। तो उन रे माए इन धरती रा अपन इन पृथ्वी रा गुण आ जाया करे है, क्योंकि माटी सु बनी चीज है भाया। और इनरी खास बात आ है कि मटको पानी ने जो है वो मौसम रे आधार माते ठंडो राख्या करे है, जिनसू अपने डील ने कोई नुकसान नहीं वे है भाया, बल्कि ओ तो अपने वास्ते घणो फायदेमंद वे है। जबकि फ्रीज रो ठंडो होयड़ो कचकड़ी री बोतल रो पानी या बर्फ रो पानी गले ने नुकसान पहुंचाया करे है, टॉन्सिल्स वे सके है, पर मटकी रो पानी गले रे माथे नरम प्रभाव छोड़िया करे है। जे आप लू में तपत में उनाड़े में गर्मी में तावड़े में देखो किता ये पर्यायवाची है, बारिश आर मटकी रो पानी पी

गर्मी में, दावड़ में, देखो किता ये पर्यायवाची है, बारिशु आर मटकी रो पानी पी भी लो तो नुकसान दायक तो हरगीज नहीं वे भाया। जाहिर सी बात है भाया कि जद आपा प्लास्टिक री बोतल रे माए पानी भर ने फ्रीज में रखा, कई घंटा तई वो फ्रीज में पड़ियो रहे वा पानी री बोतल, और जद वाजा ठंडो वे वा प्लास्टिक रा गुण उन माए आ जाया करे है उन बोतल में। भाई संगत रो असर तो वे है, इनी भात जद माटी रो जो को मटको है इनमें आप पानी भरने रखा तो इनमें माटी रा गुण आ जाया करे है, जिनसु आ पानी प्रतिरक्षा प्रणाली ने बढ़ावो मिले है। भाया अब भूर जी जे धोल जी रे साथे रे रंग नी तो कम सुकम गुण तो ग्रहण कर ही है। खास बात आ है भाया की पेट री एसिडिटी ने मिटावे है ओ मटकी रो पानी, इनरे साथ ही माटी रा जका शारे गुण वे मटके में विया करे है, और इन शारे पानी री अम्लता रे साथे उचित पीएच संतुलन बनाए रखे ओ मटके रो पानी। आप बात तो भाया विज्ञान भी कहया करे है, और मटकी रो पानी पीवन सु अपने एसिडिटी गड़ारी जलन सु पूर्ण रूप सु निजात मिले है भाया, और साथ ही पेट दर्द में भी अपने छुटकारो दिलावे है, और कब्ज में भी आराम मिले है भाया। ठंडो पानी मटके रो गर्मी में सुख देवे, ठंडो पानी मटके रो गर्मी में सुख देवे, मन री तृष्णा शांत करे, तन री पीर हरे। तो घणो ही फायदेमंद है भाया ओ मटकी रो पानी। इनरी बात आपे कह रहा, पण अबार तो आप बनिया रहो FM Sun City रे माथे, और सुनता रहो मरुधरारा गीत जोधपुरे छोरे बलवीर रे साथे।

चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

0: गणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: अरे FM सन सिटी ट्यून कर।
2: FM सन सिटी पर आपके साथ है आपका अपना बलबीर सिंह।
3: 102.1 FM सन सिटी, जोधपुर शहरी धड़कन, जिठे मिले है आपने शुद्ध मनोरंजन। अबार सुन रिया हो मायड़ भाषारो सजीव रेडियो कार्यक्रम मरुधरारा गीत, जिन्हें आप सुनिया करो हो हर बुधवार रे दिन सुबह 10 बजे सु लेर 11 बजे ताई पूरे एक घंटे। आनंद उठाई रिया हो जोधपुर छोरे बलवीर रे साथे। आज बात कर रहे हैं भाया कार्यक्रम में माटी सु बनियोड़े मटकेरी और इनरो पानी पीवन सु अपने सेहत ने होन वाला फायदे री। देखो भाया की गर्मी री रुत में मटके रो पानी जितो शीतल और सुकूनदायक लागे उत्तो ही अपनी सेहत वास्ते अपने स्वास्थ्य वास्ते फायदेमंद विया करे है। खास तौर से गर्भवती महिलाओं वास्ते तो ओ मटके रो पानी घणो ही फायदेमंद वे है। भाया आ बात भी सोले आना साची है कि जिकी दो जीवायती बहना है सवासनिया है उन्होंने फ्रिज रो पानी छोड़ रहे मटके रो पानी पीणो चाहिए।

मटके रो पानी भाया नी केवल उनारी सेहत वास्ते चोखो है बल्कि उनारे पेट में पड़न वाला जो को जीव है उन रे भी स्वास्थ्य वर्धक तत्व मिल जाया करे है इन मटके रे पानी सु। क्योंकि भाया माटी रे माए कई तरह रे रोगासू लड़न री शक्ति व्या करे है क्षमता व्या करे है। पानी में विषैला पदार्थ ने सोखन री शक्ति राख्या करे है माटी। और भाया मटके रे पानी में एक सौंधी सौंधी महक व्या करे है जिनसु खुद ने भी चोखो फील व्या करे है। उन्नाले में लोग बर्फ रो पानी या पछे यूं कह दा कि फ्रीज रो चल्ड पानी जो है घटा घट पिया करे है। हालांकि आप सगला ने ठा है कि ओ बर्फ प्रिय पानी पीवा तो ओ बर्फ जो को है उनकी तासीर गरम व्या करे है। और भाया आयुर्वेद रे मुजक आपे बात करा तो ओ बर्फ रो पानी आपने शरीर में वात ने बढ़ाया करे है। और यूं भी ओ चिल्ड पानी भाया जो को है गले रीते ने तो ओ शांत कर ही नहीं सके है। पर मटके रो पानी बारे रे तापमान रे मुजब शीतल व्या करे है ठंडो व्या करे है। इन कारण आपने भरपूर तृप्ति मिले है पानी पीवा तो आपने गले री तिर बुझे है और एक तृप्ति सी महसूस वे है आहा कि पानी पियो शीतल पानी पियो हो एड़ो पानी तो आहा कि तो ही आप चिल्ड कर लो फ्रिज में वो स्वाद नहीं आवे। और पानी पियाऊं सुम भाया आपे रिंज जामा और पूरी तरिया संतुष्ट वे जाया करा है कि नहीं। गलेरी तिर बुझावे मटको शीतल छाव गलेरी तिर बुझावे मटको शीतल छाव गर्मी में राहत देवे मन में जागे चाव मन में जागे चाव। और देखो कि चाव जागे है जद सागर पानी भरवा जावे आह पणियारी। और कई बात आवे है और किन बात जगह है अपना ठहरा लोक कलाकार आप कंठ सु उन बात ने लय में पुगावे वो आप ते पुगावा। बस बढ़िया रहो FM सनसिटी मारे और सुनता रहो मरुधरारा गीत जोधपुरे छोरे बलवीर के साथ है।

0: इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिक दम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, फाल लिंक रोड, जोधपुर।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो तू?
2: अरे जा कहाँ रही हो, सवार गया छोड़ के आ रही हो?
1: तो इंजन बंद कर, गाना बहुत बढ़िया आ रही है।
3: FM Sun City पर आपके साथ है आपका अपना बलबीर सिंह।
4: 102.1 FM Sun City आप अपना रेडियो चैनल जिन्हें आप सुनिया करो हो हमेशा सुबह सु लेर रात ताई, क्योंकि अठे मिले है आपने शुद्ध मनोरंजन। इन बखत आपरे परिवार और मित्र मंडली रे सागे बैठ रे आनंद उठाई रिया हो मायड़ भाषा रो लूंठो रेडियो कार्यक्रम मरुधरारा गीत रो। लोक रंजन रे इन कार्यक्रम में आज बात कर रिया हाँ माटी सु बनियोड़ा मटकेरी और इन रो पानी पीवन सु सेहत ने होन वाले फायदे री।

देखो भैया की कचकड़े री बोतल रे पानी और फ्रिज रे पानी रे बीच है वो घणो फायदेमंद है मटके रो पानी। अपने आथुने राजस्थान में तो लू ने तपत ने गर्मी ने उनाड़ो ने तीको तावड़ो ओज मिले है और इन आग बरसावती गर्मी रे माए हर वर्ग रे लोगा ने चाहे वे टाबर वो मोटियार वो बड़ा बुजुर्ग वो या पचे लुगाया वो बारे आवन जावन बखत लू तो लाग ही जाया करे है क्योंकि भाया यूज एंड थ्रो रो जमानो है। रास्ते चालता तीर लागे तो आपे दुकान माते चढ़ा और वठासू पानी री बोतल जकी है मोला लेवा पानी पीवा और सड़क रे माते फेंक देवा खाली कर। इनसु तो एक तो खुदरे डील ने भी नुकसान वे है ने बारे प्लास्टिक सु पर्यावरण ने भी नुकसान वे है और साथ ही सड़क माते फेंकण सु आ खाली बोतल साफ सफाई माते बट्टो भी लगावे है कि नहीं। और दूसरी बात आप भाया के लोग नींबू पानी जल जीरा रो पानी ने अमलाणो एडी तरल चीजा जकी है अपन घर में मिले है वो पीवनी छोड़ दी है। अबे तो कई भाया सगला चाय रे माथे जोर रखे है एक कप ऑफ टी जठी जावे बारे जावे घरे जावे किनी सु मिलन जावे तो चाय रो कप तो पक्को है। अबे आपे सगला कही है कि खाटी छाछ पीवनी छोड़ दी हाँ अबे नुवी पीढ़ी ने तो कद दाय आवे इन वास्ते लू लागिया पछे भी मटके रो पानी अपने सुरक्षा प्रदान करिया करे है। अबे आ बात भी सोले आना साची है भया की कचकड़े री बोतल यानी कि आ प्लास्टिक रो जो को बोतल बंद पानी है आपे मुलामा बाजार में उनमें कितना घातक केमिकल वहला वो थाने और मने कही था और साथ ही उन बोतल में कितना दिनारो जूनो पानी वहला अपने कही था। हालांकि भाया उनरे माते एक्सपायरी डेट लिखियोड़ी वे पर उनने देखे कौन है दुकान सु मोहलावा ढक्कन खोला और घटाघट पीला आपा तो चिल्ड बोतल खरीदा और पानी पीला इतनी जेज लागे अपने। इन वास्ते भाया एफएम सनसिटी री पूरी टीम मरुधारा गीत रे माध्यम सु आपसु अर्ज करे है कि बोतल बंद पानी और फ्रिज रो पानी छोड़ो और मटके रो ठंडो ठंडो पानी पियो शीतलता मिलेला अंतरात्मा ने। घूम तो चाक माटी रो खेल मटको बने शीतल घूम तो चाक माटी रो खेल मटको बने शीतल जीवन री गद्दी मटके री पल पल बदल पल पल बदल। गन्नी घनी पड़े सरदार कई करा कई कई जतन करा है लोग पण देखो कि लोग गीत रे माध्यम सु कई वे है ओए आपते पुगावा बस बढ़िया रहो एफएम सनसिटी माते और सुनता रहो मरुधारा गीत जोधपुरी छोरे बलवीर रे साथे।

है सिरदार तो रूखारी छाव चलो, और मैं तो ओइज क्यों भया कि बिना काम जो को है घर से बाहरे निकलो ही क्यों एड़ी तपत में। देखो भया कि मटकी रो पानी पीवण सु मेटाबॉलिज्म बढ़े है, पाचन क्रिया अपने ठीक रहवे है, इम्यूनी सिस्टम मेंटेन रहवे है, और मटके रो पानी जो को है अपना कोलेस्ट्रॉल कम रखे, जिनसु ब्लड सर्कुलेशन अपनो कंट्रोल में रहवे। इन वास्ते भाया इन धोरा धरती री संस्कृति में मटकी रो घणो महत्व है, और ओ अपनी आपनी जी की खुदरी उपयोगिता ने दर्शावे है। भाया ओ मटको जो को है अपने अठे नी केवल पानी राखण रो एक पात्र है, बल्कि अपने जीवन में शीतलता और ग्रामीण जीवन रो प्रतीक भी है। आप सगला श्रोताओं रो FM सन सिटी री पूरी टीम री तरफ सु धन्यवाद आभार व्यक्त करा कि आप इन कार्यक्रम ने घणो पसंद करो हो, आपरे हिवड़े बसायो हो और आपरे पसंदीदा कार्यक्रम री सूची में

0: अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी कार्यक्रम मरुधारा गीत। ये FM सन सिटी चैनल है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम रेडियो रेस्टोरेंट।
1: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूँ घर से।

0: ओए मखना, ये एफएम सन सिटी का जादू है भैया, जो कि सर चढ़ के बोलता है। भाई साहब, कहते हैं ना कि इस दुनिया में इतना खाना है कि हर आदमी का पेट भर सके, पर एक आदमी का लालच नहीं। और ये भी कहते हैं कि प्यार अंधा होता है पर पेट नहीं होता भैया, उसे हर बिरयानी की खुशबू आई जाती है। मोहब्बत भी क्या चीज है साहेब, तवे पर रोटी सी पलट जाती है, और जरा सी आंच तेज हुई नहीं कि दिल और सब्जी दोनों जल जाती है। आप सुनना शुरू कर चुके हैं एफएम सन सिटी का चटपटा मसालेदार रेसिपी शो रेडियो रेस्टोरेंट, जिसमें खाने की खुशबू होती है बातों के जरिए, और जहां हर बात में थोड़ा स्वाद है। मैं हूं इस शो का शेफ, आपका दीवाना दोस्त बलवीर। मैं हूं छोरा जोधपुर का, कहता हूं आपको हेलो, हाय, नमस्ते, सलाम, गुड मॉर्निंग। और भैया, जब मैं हूं आपके साथ तो चिल मारो ना यार। किसी ने मुझसे पूछा कि किचन में सक्सेस का मंत्र क्या है, तो मैंने कहा कि बस गैस धीमी रखो और कॉन्फिडेंट हाई और बहाने रेडी, क्योंकि भैया शेफ वो नहीं है जो परफेक्ट बनाए, शेफ तो वो है जो इम्परफेक्ट को भी सिग्नेचर डिश बना दे। अगर आपकी मम्मी कहती है कि तू शादी के बाद क्या करेगा, मेरी बहू को भूखा मारेगा, तुझे तो कुछ बनाना आता ही नहीं, और दोस्त लोग कहते हैं कि तेरी दाल का नाम तारीख पे तारीख रख दे, कभी गलती ही नहीं, तो भैया आप सही जगह पे हैं, ये शो सिर्फ आपके लिए ही है। क्योंकि भैया हर किचन में एक कहानी पकती है, और वही कहानी मैं आपकी प्लेट में सजा के लाऊंगा। तो चलिए अपने किचन की खिड़की खोलते हैं।
1: खिड़की खुली जरा, जरा पर्दा सरक गया।
0: ओहो, मैंने खिड़की क्या खोली, पड़ोस वाली आंटी जी ने मेरी खिड़की पे आई और बोली, पूछा आज क्या बना रहे हो। मैं उनको जवाब देने ही वाला था कि उससे पहले उनकी नजरें मेरे सिंक में पड़े बर्तनों पर पड़ गई, और बोली, बेटा काम चोरी। मैं उनको जैसे तैसे समझा के घर भेजता हूँ। तब तक आप सुनिए बैक टू बैक गाने, बस चिपके रहिए अपने रेडियो सेट के साथ और सुनते रहें एफएम सन सिटी जोधपुर के छोरे बलवीर के साथ।

0: थ्री प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायक हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS वचिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायक हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: पथरी, प्रोस्टेट, गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्लाह स्टेडियम के सामने, जोधपुर। मोबाइल 9829027065।
3: आप सुन रहे हैं FM सन सिटी।

भैया हीरो नंबर वन तो एफएम सन सिटी है, जहां के गाने सर चढ़कर बोलते हैं। किचन वो जादुई जगह जहां सुबह की चाय से लेकर रात के डिनर तक हर बार एक नई मिस्ट्री सुलझाई जाती है कि आज क्या बनेगा। आप सुन रहे हैं एफएम सन सिटी पर फूड लवर का पसंदीदा रेसिपी शो चटकादेदार मसालेदार रेडियो रेस्टोरेंट। बलवीर के साथ मैं हूं छोरा जोधपुर का। जब मैं हूं आपके साथ तो चिल मारो ना यार। भाई साहब, कल रात को मैं एक रेस्टोरेंट में डिनर ले रहा था तो एक साहब आए और बड़े इमोशनल होकर बोले, भैया एक प्लेट तवा पुलाव लगा दो, पर इसमें पाव भाजी मसाला इतना डालना जितना मेरी सासू जी मेरी बातों में मिर्च डालती है। कसम से शेफ ने इतना मसाला डाला कि पुलाव में धुआं नहीं बल्कि आग निकल रही थी। जनाब, अगर आप आज इतने बिजी रहे कि आपने अपना ब्रेकफास्ट भी स्किप कर दिया और लंच का अभी तक कोई नामो निशान नहीं है और आपके पेट में बैटल ऑफ पानीपत शुरू हो गया है, तो एफएम सन सिटी की फ्रीक्वेंसी 102.1 लॉक कर लो, क्योंकि आज की रेसिपी में लेकर आया हूं मलाईदार। क्या है मलाईदार? मैं बनाऊंगा तब मालूम चलेगा ना। मैं लेकर आया हूं तवा पुलाव, वो भी बचे हुए चावल से। घर में सबको खिलाएंगे तो आप बन जाओगे किचन के रॉकस्टार। तो चलिए किचन की खिड़की खोलते हैं। हाँ भैया, ये जादू चलेगा आज के रेस्टोरेंट में तवा पुलाव जो हम बना रहे हैं। इसे बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए उसे नोट करने की जरूरत नहीं है, आप तो बस इमेजिन करो कि आप हो, तवा है और भूख है। भाई साहब, तवा पुलाव की रेसिपी बड़ी जादुई है। इसमें वो सब कुछ जाता है जो फ्रिज में बच जाता है, लेकिन असली हीरो है वो बड़ा सा लोहे का तवा जिसमें दुकानदार तवे पर चावल ऐसे उछालता है जैसे कि कोरियोग्राफर गणेश आचार्य गोविंदा को नचाता है। तो सबसे पहले ये तवा गर्म करो और वो भी तेज आंच पर। अब इसमें बहुत सारा बटर डालो और बटर की टिकिया जो है वो तवे पे ऐसे फिसलेगी जैसे मंडे मॉर्निंग हम सब अपनी जिम्मेदारी से फिसल जाते हैं। बटर पिघल जाए तो डालो इसमें एक चम्मच जीरा, एक बारीक कटा प्याज और जब ये सुनहरा हो जाए तब डालो एक चम्मच अदरक का पेस्ट। छोंक की आवाज आएगी और यही है स्वाद का बेस। और भैया, अब इसमें डालो बारीक कटी शिमला मिर्च, गाजर, बीन्स, और अगर आपकी अपने सब्जी वाले से कोई दुश्मनी नहीं है तो आपके फ्रिज में जो भी सब्जियां बची है वो कटिंग करके सारी इसमें डाल दो। अब डालते हैं इसमें असली जादू, 2 चम्मच पाव भाजी मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च, नमक आपके स्वाद के अनुसार और 2 बड़े चम्मच टोमेटो प्यूरी। अब इनको अच्छे

से भुनना है जब तक कि बटर किनारे ना छोड़ दे। और अब इसमें एंट्री होगी उस रेसिपी के असली हीरो की, रात के बचे हुए चावल। भैया बासी है तो क्या हुआ, ये नए स्वाद के साथ प्रेजेंट होंगे। अब ये चावल जो है वो पाव भाजी मसाले और दूसरे मसाले और जितनी भी सब्जियां हमने जो इसमें डाली है उनके साथ ऐसे मिक्स करो जैसे कि फिल्मों में कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ बच्चा बरसों बाद अपनी फैमिली के साथ मिलता है। अब याद रखिएगा कि अब इसमें फाइनली धनिया डालकर इसे ऐसे उछालना है जैसे कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया ने अपने रोहित शर्मा को उछाला था। और ये लो जी, ये मुंबईया तवा पुलाव तैयार है। लेकिन इसे खाने का सबसे असली मजा जो है वो ठंडे ठंडे रायते और प्याज के साथ आता है। याद रखिएगा, किचन में डर के आगे जीत है और बटर के आगे डाइट भी फेल है। चलिए अगले गाने में उन लोगों के लिए प्ले कर रहा हूँ जो डाइट पर तो हैं पर पुलाव की खुशबू आते ही कहते हैं कि भैया जिम तो मैं कल जाऊंगा, अभी तो मैं एक्स्ट्रा बटर डाल के एक प्लेट और चटका लूं। तो बस आप बने रहें हमारे संग और सुनते रहें FM Sun City, जोधपुर के छोरे बलबीर के साथ।

गर्ल्स, आदमी मैं अच्छा हूँ, दिल का भी सच्चा हूँ, बट बी यू टी बट आई एम अ

0: भाई साहब, लोग कहते हैं कि इश्क और खाना दोनों नाप तोल के मत करो, पर मैं कहता हूं कि किचन में नाप तोल नहीं करोगे तो इश्क में भी बेलन ही पड़ेंगे। खम्मागणी हुकुम एफएम सेंसिटिव पर फूड लवर का चटपटा मसालेदार रेसिपी शो रेडियो रेस्टोरेंट आप सुन रहे हैं जोधपुर के छोरे बलवीर के साथ। भैया जब मैं हूँ आपके साथ तो चिल मारो ना यार। भाई साहब किचन में घुसते ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता कि पहले प्याज काटूं या फिर आंसू बहाऊं। तो लगाओ अपनी सीट बेल्ट क्योंकि मैंने अपना जीपीएस ऑन कर दिया है और अगले कुछ मिनट्स में मैं आपको किचन की कंफ्यूज करती गलियों से शाबाशी की दुनिया में लेकर जाऊंगा जहां मिलेगी आपकी पाक कला को वाहवाही। क्योंकि एफएम रेस्टोरेंट का अगला सेगमेंट है किचन हैक्स। भाई साहब कुछ लोगों ने मुझे फोन करके और मैसेज करके कहा कि सास बहू के लिए किचन हैक्स लेकर आइए ताकि उनके बीच में तालमेल बना रहे। आज मैं कुछ ऐसे ही कोशिश कर रहा हूँ कि किचन में किचन नहीं है, ये तो एक तरह का कुरुक्षेत्र है। तो किचन के कुरुक्षेत्र में जहाँ एक और है सासू माँ जिनके पास है 30 सालों का एक्सपीरियंस और दूसरी तरफ है नई नवेली जोधपुरी बीननी सा जिनके पास है गूगल वाला कॉन्फिडेंस। आज ऐसे हैक्स लेकर आया हूं जो इनके बीच में युद्ध नहीं संधि करवाएगी। चलिए शुरू करते हैं।
1: चल शुरू हो जा। 1 2
0: भाई साहब गोल रोटी नहीं बन रही है और सासू जी आकर कहती है कि ये कौन सा नक्शा बना दिया भींदनी। तो टेंशन नहीं लेने का भेंदनी सा, आटे की लोई बनाकर 10 मिनट फ्रिज में रख दो फिर बोलो। जब आप उसे बेलेंगे तो रोटी गोल गोल बनेगी और सासू माँ जो है कंपास लेकर ढूंढती रह जाएगी कि इसका आड़ापन तिरछापन कहाँ है, वो तो ताना देना भूल जाएगी। सासू माँ भैया फ्रिज खोलती है और बोलती है कि अरे भेंदनी सा इनमु तो बास आवे है। तो बहुरानी टेंशन नक्को लेने का, एक कटोरी में बेकिंग सोडा या फिर कॉफी पाउडर रख कर फ्रिज में रख दो। 2 घंटे में बदबू गायब होगी और अगली बार जब सासू जी फ्रिज खोलेगी तो बोलेगी वाह भेंदनी आज तो मैं रोज गार्डन में घूमकर आई हूँ।

सासु माँ अचानक बाहर से आती है और बोल देती है कि बेंदनी सा फलाना मेहमान घर आने वाला है, बस 15 मिनट में आ रिया है, तब उनके वास्ते खानो तैयार करो। तो टेंशन नहीं लेने का बेंदनी सा, मैं हूं ना। आप दो ब्रेड लो, उसकी दोनों साइड काटो और उनके बीच में पिज्जा सॉस, प्याज, टमाटर, ककड़ी और चीज डालो और उसे तवे पे रख के बस 3 मिनट, हाँ बस 3 मिनट सेक लो। मिनी पिज्जा जो है वो तैयार हो जाएगा। गेस्ट खाएंगे तो सासू माँ से बोलेंगे, आपकी बहू तो मास्टर शेफ है। और सासू माँ का सीना चौड़ा हो जाएगा और बहू को लख लख आशीर्वाद देगी। बस याद रखना है कि रसोई में लड़ाई नमक मिर्च की नहीं, बस थोड़े से जुगाड़ की कमी से होती है। तो अभी आप अपनी सासू माँ के पैर छुए और हैक्स को है अब यूज करें। टिके रहें FM सेंसिटिव पर और सुनते रहें जोधपुर के छोरे बलवीर को।

0: आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए। और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये पीएम ने ये कहा है तुम पढ़ो।
1: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु एनसीपीसीआर द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: दुनिया रा सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रो सुख एक तरफ।
2: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियारी उम्मीद। विनायका हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
3: पथरी, प्रोस्टेट, गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्ला स्टेडियम के सामने, जोधपुर। मोबाइल 9829027065।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: लोग मुझे कहते हैं कि खिड़की खोल के खाना बना ताकि खुशबू पड़ोस तक जाए, और मैं कहता हूँ कि दिल की खिड़की खोल के जियो भाइयों, ताकि खुशी हर किसी तक जाए। क्योंकि भैया, बंद किचन में दम घुटता है और बंद दिल में आदमी। इसलिए मैं तो हमेशा दिल की खिड़की खोलकर आप तक FM सन सिटी का रेडियो रेस्टोरेंट लेकर आता हूँ। मेरे दिल की तमन्ना है कि तुझे पलकों पे बिठाऊं, पर तुम इतनी वजनी हो कि दिल को कैसे समझाऊं। अरे भाई साहब, मैं तो अपने तवा पुलाव की बात कर रहा था। इतने मसालेदार और लजीज बने हैं कि मेरी FM की पूरी टीम उसे चट करने पे तुली है। इसलिए मैं तो अब रेडियो रेस्टोरेंट की खिड़की और दरवाजा करता हूँ बंद। खिड़की बंद करना मेरी मजबूरी है और दरवाजा लॉक करना मेरी होशियारी है। एक बात याद रखना कि दिल का दरवाजा कभी भी लॉक मत करना, क्योंकि किचन का दरवाजा लॉक करोगे तो चूहे नहीं आएंगे, और दिल लॉक कर दिया तो अपने नहीं आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, रुकिए रुकिए, एक बात तो और बताना मैं भूल गया। जोधपुर के एक हलवाई ने कहा है कि जिंदगी में मिठास बांटो, पर रेट लिस्ट अपनी जेब में रखो, क्योंकि फ्री की सलाह तो आपको हर कहीं मिल जाएगी, पर फ्री का रसगुल्ला सिर्फ सपने में मिलेगा। मिलते हैं अगले सप्ताह नए एपिसोड में, नए बहानों के साथ, नए तानों के साथ और नई कहानी के साथ। तब तक आप फ्रिज में जो भी पड़ा है वो खाते रहिए और FM सन सिटी सुनते रहिए। और अभी के लिए अपने दीवाने दोस्त जोधपुर के छोरे बलवीर को कहिए बाय बाय। Sayonara.

ये विविध भारती का जोधपुर केंद्र है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ज पर दिन के 12 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, जिन्हें हम अनुप्रसारित करेंगे।

0: मंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि रोम पहुंचने पर उन्हें प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ रात के खाने पर मिलने का अवसर मिला, जिसके बाद उन्होंने मशहूर कोलोसियम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने कई विषयों पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियांपोलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशकों से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। इससे पहले श्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। ये बैठक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई, जहां उन्होंने शी जिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। अभियान के दौरान पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आगे की जाँच जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। घरेलू

0: बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.35% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 75,157 पर जबकि निफ्टी 23,611 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती का जोधपुर केंद्र है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ज पर दिन के 12:05 हुए हैं। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं सीधे मुंबई, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। और इसी कड़ी में पहला कार्यक्रम होगा यादों की महफिल,
2: की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में शबाब फिल्म के गाने के साथ। शकील बदायनी है गीतकार और संगीतकार हैं नौशाद।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में गंवार फिल्म का गाना। गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार थे नौशाद। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
1: याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है यादों की महफिल। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में राजहट। इस फिल्म का गाना हजरत जयपुरी हैं गीतकार और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

अभी आप सुन रहे थे अजीज कश्मीरी का लिखा और ओपी नैयर का संगीतबद्ध किया गाना। आवाजें थी आशा भोसले और मीनू पुरुषोत्तम की। फिल्म का नाम ये रात फिर ना आएगी। लीजिए अब सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा और ओपी नैयर का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम तुमसा नहीं देखा।

विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में बैजू बावरा फिल्म का गाना। इसे लिखा है शकील बदायूनी ने और संगीत से संवारा है नौशाद ने।

0: आरती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।
3: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है यादों की महफिल। लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में कमर जलालाबादी का लिखा और ओपी नैयर का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम रागिनी।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

हमारी अगली पेशकश सावन की घटा फिल्म से, आवाज मोहम्मद रफी की, लिखा है सच बिहारी ने और संगीतबद्ध किया है ओपी नैयर ने।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम यादों की महफिल। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में गंगा जमुना फिल्म का गाना। इसे लिखा है शकील बदायूं ने और संगीत से संवारा है नौशाद ने।

0: शख्सियत।
1: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
1: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से,
1: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आइए सुने सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। विविध भारती पर हमने सुरीला सफर की पोस्ट अब से 2 घंटे पहले ही जारी कर दी थी और उस पोस्ट में आज के सुरीला सफर कार्यक्रम का टेक्स्ट जारी किया गया है। इस इबारत को पढ़कर आपको अंदाजा लग गया होगा कि आज के गाने कौन कौन से हो सकते हैं। जब कमेंट बॉक्स देखा तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं जिसमें आप सभी ने लगाया है गानों का अंदाजा। एक बार मैं टेक्स्ट आपको पढ़कर सुना देता हूं। इतनी गर्मी पर गुलमोहर का देखो कैसे मुस्कुरा रहा है, मन करता है इसे गले लगा लें। पर्वतों के पेड़ों को कभी गले लगाएं, कभी उनसे अपने जिया की पीर कहें। जब शाम हो तो निकलें बाहर किसी नदी किसी सागर के किनारे, पंछियों की चहक फूलों की महक महसूस करें, आसमान को निहारें। कभी कभी ऐसा भी तो करें, कितना खूबसूरत होगा तब जीवन। ये है आज की इबारत। और इस इबारत में जैसे बहुत सारे अलग अलग शब्द अलग अलग गानों की तरफ इशारा कर रहे हैं, पर एक शब्द ऐसा है जो केवल एक ही गाने की तरफ इशारा कर रहा है। दरअसल गुलमोहर शब्द पर फिल्म उद्योग में कम से कम 2 गाने तो जरूरी तौर पर बने हैं, लेकिन एक गाना है जो आप सभी के जहन में आया, उसी से कार्यक्रम का आगाज करेंगे और इस गाने के बाद आप सभी के कमेंट्स शामिल करने की कोशिश करेंगे। फिर एक झलक गुलमोहर शब्द से दूसरे गाने की भी सुनाएंगे।

गुलजार साहब के बोल, गुल मुहर गर तुम्हारा नाम होता, क्या तो गाना है देवता फिल्म का। और अमूमन लोगों को गुलमुहर शब्द से यही एक गाना याद आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, एक और गाना है गुलमुहर शब्द से। पहले वो सुनवाते हैं, फिर आपके कमेंट्स की बातें।

ये आशा भोसले की आवाज, नीरज के बोल, और ये जो गाना है ये बहुत ही कम चर्चित गाना है। फिल्म का नाम मैं आपको फिलहाल नहीं बताऊंगा। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं और वो कमेंट्स जो हैं अब आप तक पहुंचाते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि गुलमोहर शब्द के दूसरे गाने का इंतजार रहेगा क्योंकि हमें तो याद नहीं है, हमारे फिल्मी ज्ञान में वृद्धि होगी। इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं ने आज का टेक्स्ट पढ़ के ये अंदाजा लगाया है कि कौन कौन से गाने हो सकते हैं। एक श्रोता लिखती है कि गुलमोहर के लाल लाल फूल खिल गए, ये दूसरा गीत गुलमोहर शब्द पर आधारित है। ये किसी श्रोता के पिताजी ने उनको ये सजेशन दिया है। इसके अलावा कई श्रोता हैं जो अपनी बातें कह रहे हैं। जैसे एक श्रोता कहते हैं कि आज पंची नदिया पवन के झोंके ये गाना जरूर सुनाई देगा। एक श्रोता लिखती है कि मेरे घर से कुछ ही दूरी पर एक नहीं दो गुलमोहर के पेड़ हैं, एक बगीचे में और एक सड़क के किनारे, सच मानो जैसे गले लगने के लिए तैयार हैं। आज सुबह देखा एक छोटा सा पंछी गुलमोहर पर अटखेलियां कर रहा था। जरा सोचिए कि गर्मी जैसे जैसे अपने शबाब पर होती है, दो ऐसे पौधे या पेड़ हैं जो ज्यादा ही खिल उठते हैं, एक तो गुलमोहर और दूसरा गुलाबी रंग का जो बोगनविलिया होता है। यूं लगता है जैसे कड़ी धूप का इन पर कोई असर नहीं है, मानो जिंदगी में हमें ये सबक सिखा रहे हों कि धूप कितनी भी तेज हो आपकी, आपको अपनी चमक नहीं छोड़ना चाहिए, आपको अपनी मुस्कान नहीं छोड़नी चाहिए। चलिए कुछ और श्रोताओं के कमेंट्स पढ़ते हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये गाना आज के इस कार्यक्रम में आ सकता है। उसके अलावा मन क्यों बहका आधी रात को, ये भी आ सकता है। एक श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल लंबी सी रिसर्च कर डाली है, फूलों की महक ये जो जुमला था ये हमारे आज के टेक्स्ट में शामिल था। तो कई सारे गाने उन्होंने लिखे हैं, ए गुलबदन फूलों की महक, उसके अलावा इन्होंने फूलों के रंग से, और फिर और भी, अरे बाप रे इतने सारे गाने लिखे हैं। बहुत लंबा ये कमेंट है जिसमें फूलों पर पूरी जैसे रिसर्च कर दी गई है, सुंदर बात। इसके अलावा एक श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने शानदार तरीके से कुछ ऐसे गानों का जिक्र किया है जो आज के इस कार्यक्रम में बज सकते हैं, तो ये कमाल की बात है। और उसके अलावा अभी एक श्रोता लिखती है कि यूनुस जी गर्मी वाकई इतनी तेज हो गई है, इस समय हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं बड़ौदा से अजमेर की तरफ, कोच में तो एसी की ठंडक है लेकिन बाहर आग बरस रही है। ट्रेन जब साबरमती नदी के ऊपर से गुजर रही थी तो हमने देखा नदी लगभग सूखने की कगार पर पहुंच गई है। अहमदाबाद की शान साबरमती नदी इतनी ज्यादा सूख गई है पर किनारे पर पेड़ पौधे मुस्कुरा रहे हैं, गजब। ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखी है। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि आज का जो आपने पैराग्राफ पोस्ट किया है उसमें पेड़ पहाड़ नदी पंछी सागर फूलों की महक जैसे दिख रहे हैं,

इन सब पर गाने सुनाई दे सकते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने जिया की पीर पर अपनी बात लिखी है। जाहिर है टेक्स्ट में जब जिया की पीर शब्द हो तो आप पूरी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो गाना कौन सा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको ये गाना सुनवाते हैं, साथ में ये सवाल कि फिल्म दस्तक के निर्देशक कौन थे, एक तो ये बात, और फिल्म दस्तक के लिए किस किस को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था।

0: कभी गाना जब खत्म हो जाता है तो लगता है अरे ये तो खत्म हो गया, इतना दिल की गहराई तक पहुंचने वाला गाना। मदन मोहन जी की ये आवाज और इस गाने को ज्यादा ऊंचाई पर ले जाती है ये आवाज। एक श्रोता लिखते हैं कि दस्तक राजेंद्र सिंह बेदी ने निर्देशित की थी और ये उन्हीं के लिखे एक नाटक पर आधारित फिल्म थी। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि 1 मई को सुरीला सफर कार्यक्रम का पहला एपिसोड आपने किया था और अब आप इस कार्यक्रम में दूसरी बार आ रहे हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि
1: ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गणगौर।

0: पगा में पाजेब, हाथ में चूड़ी और होठों पर मीठी सी मुस्कान। घर रे आंगन री है लक्ष्मी, राखे परिवार रोमान। अपन ऐठे किया करे कि घर री धनियाणी हस्ती खेलती रहे तो पूरो घर है वो स्वर्ग बन जावे। चाहे रसोई री खुशबू सुलेर, टाबरा री किलकारियां हुओ, सभारी सेवा तक अपनी माँ बहना पूरा घर ने एक धागा में पिरोए राखे और अपना मीठा बोल सु और मेहनत सु आंगना ने भी मेकावे। तो हंसती खेलती है अपना सगली आंगना ने मेकावती सगली सखियारो स्वागत है कार्यक्रम गणगौर रे माई ने और आपकी सखी कोमल राठौड़ रा घणे है तरकसु राम राम। और आज मारे साथ है भावना जी। तो भावना जी आपने भी मारा घणे है तरकसु राम राम।
1: बिल्कुल कोमल जी, आपने मारा घणे मान राम राम। और गणगौर प्रोग्राम होणन वाली मारी प्यारी प्यारी शख्या ने भी आपकी सखी भावना लखारारा घणे मान राम राम। तो कोमल, हताया तो आपा करा लाई, पण ब्यू पहली होना एक प्यारा सो गीत।

0: लाक और काच रो चूड़ो थारो सुहाग, मेहंदी राचा हाथ में जाग उठ्यो भाग। घूमर घालो गोरी खनकाओ चूड़ी आज, थाने देखणे पूरो मरुधर आज। बिल्कुल भावना जी,
1: हाँ
0: हाथारी जकी रंग बिरंगी चूड़ियां हैं बे अपनी पहचान बतावे, और इरा रंग इतना इरी डिजाइना भी इतनी है कि
1: हाँ
0: जति भी डिजाइना चालती रेवे, आपा भी और अपनी बहनिया रो मन भी है जो को खरीदन वास्ते करे। और अपना इतिहास रे मायने भी चूड़िया ने आपा गहना सु भी सबसे पुराना रूप में आपा मान्या करा। और
1: बिल्कुल
0: अगर इरी पहली खोज री अगर बात करा तो इरो क्रेडिट जको है वो मोहन जोदड़ो री जकी बस्तियां हैं बने
1: हाँ
0: दियो गयो है, जकी आज सु लगभग 5,000 साल पहला की है।
1: जी
0: और पुराना टाइम री बात करा तो पहली चूड़ियां हैं जकी सीप और मिट्टी सु बनाई जावती, और जिया जिया औजार आया तकनीक आई वीरे बारे में समझ भी विकसित हुई, बिया बिया कई धातु री काच री कई तरह री कीमती पत्थरा सु ए चूड़िया है जकी बनन लागे। और आज रा टाइम में आप देखा कि सिंथेटिक है, प्लास्टिक है, रबड़ है, मेटल है, कई तरह री चूड़िया है
1: चूड़िया
0: जकी
1: दिखे।
0: चाल गई। जिया
1: हाँ
0: की पुराना टाइम में भी देखो बनती जिया की लकड़ी की है,
1: हाँ
0: लाख है, पत्थर है, कांच है, मिट्टी की, तांबा की, कांसे की, सोना चांदी, एडी कई धातुअरे चूड़िया बनती और पहनी जावती। और आजकल भी आप पहन, हाँ बस थोड़ो सो एको मॉडल है वो बदल गो,
1: बदल गया
0: नई
1: है।
0: तरह की बनन लागी, पर जो को नगीना है, कई तरह रे कुंदन है वे आपने देखने मिले।
1: बिल्कुल कांच है, कई तरह रे अपन डिजाइन आए जो अलग अलग तरह रे दिखने मिले। बिल्कुल को मैं तो अपने जो को भारत देश है नी, वो केवे नी की कारीगरी, कई चीज त्योहार, ये कई अठेरी परंपरा, कई रंग बिरंगी के नी कपड़ा चूड़िया है, बेण खातरी प्रसिद्ध जानी जा करे हैं।
0: बिल्कुल
1: तो देखो कि बात कर रहे आपा चूड़िया री, तो फिरोजाबाद है बीर मायने, देखो फिरोजाबाद में काचरी चूड़िया है वे बहुत ही फेमस है बटेरी, और फिरोजाबाद ने तो सुहाग नगरी और ग्लास सिटी रे नामों भी जानी जा करे हैं। तो अटेरी बनियोड़ी जी की काचरी चूड़िया है वे पूरे ही देश रे मायने मशहूर है। और बात करा राजस्थान री, तो राजस्थान रे मायने जयपुर रे मायने जोहरी बाजार है, बिने तो सगले ही जाने हैं, बटे तो लाखरी चूड़िया बनिया करे हैं
0: बिल्कुल
1: जिन्हें अपा मोकड़ी भी कहया करा। हाँ तो ये जी की रंग बिरंगी लाखरी चूड़िया है वे ज्यादातर अपनी बहने है वे तीज तिमार और गणगौर है एड़ा खास त्योहार माते पहनना रो इनो बहुत ही महत्व राख्या करे हैं। बियाई जा देखो कि बीकानेर है, तो आपने ध्यान है कि पहले रे टाइम रे मैंने राजघराना रहू था वेने कई एक हाथी दात्रा चूड़ा पहनने करता। हाँ हाथी दात्री चूड़िया पहने करता। हाँ तो वह कहिए बीकानेरी प्रसिद्ध है।
0: बिल्कुल। और पहली चूड़िया बनाने वास्ते समुद्री सीप या पत्थर ने कठोर जगह माथे रगड़ और चूड़िया बनाई जाती,
1: बनाए थे।
0: और
1: हाँ
0: मिट्टी री चूड़िया ने सिर्फ आकार देर सुकार बनाता, धीरे धीरे चूड़िया माथे डिजाइन बनी जन लागी। पहली शुरुआत में कहीं तो कि खुदाई करर देवी देवता री मूर्तियां बनाता,
1: हाँ
0: फूल पत्ती बनाता, कई पैटर्न है जका उकेरता। और आज तो आप देखें यहाँ काच पेल बूंटी पात भी चालगो, चांदी का पात चालगा, सोना का पात चालगा,
1: कई तरह तरह
0: घूंगरा
1: लगा
0: तका तक लगावे। आजकल तो नाम और फोटो भी चूड़िया पर है जो को लगावन लाग गया।
1: लगाउन लाग
0: तो टेम रे
1: गया।
0: साथे साथे कई बदलाव हुआ, जका चोखा भी लागे और मैचिंग रे साथे आप चूड़िया मैचिंग कर कर आज पहना भी। हाँ
1: बिल्कुल पैरा। हाँ
0: तो चलो सुना था एक और चूड़ी पर बने
1: बिल्कुल
0: डो गीत।

0: तो भावना जी आप देखा ही हाँ, आजकल बहना जकी है, खुद तो सजी है, सजन में
1: हाँ
0: माहिर है, घर ने भी सजा हुआ, ब्याह में भी माहिर है, लेकिन आजकल तरह तरह का काम भी घर बैठे बहना जकी है कर रही है, वहां में आप रो हुनर ने आगे भी ले जा रही है, और
1: हाँ
0: घर बैठे बैठा कमाई रहा जका नवा नवा रास्ता है, बेबी खोल रही है, कोई सिलाई करे, कोई कढ़ाई करे, तो कई है जका हस्तशिल्प रो सामान बनावे, मसाला भी घरे तैयार करे, और आरो भी उद्योग घर घर से शुरुआत करे,
1: शुरुआत करें।
0: सूखी सब्जियां हैं, पापड़ अचार जड़ी कई चीजें सो आप रो व्यापार शुरू कर, खुद ने आत्मनिर्भर है बहने बना रही है, और दूसरा रे वास्ते भी वे एक प्रेरणा बने। तो आज एड़ी शख्सियत ने आप आज आकाशवाणी में फोन रे माध्यम से आमंत्रित कर हाँ, जका गृह उद्योग रे मायने आप रो व्यवसाय शुरू कर आप रो एक अलग पहचान बनाई है। तो चलो सुनावा आपने फोन रे माध्यम से गृह उद्यमी खुशबू लक्ष्यकार सु भावना लखारारी बातचीत, जी प्रस्तुति है राजेश लामरोडरी, संयोजन है मनीष सोलंकी रो।
2: आकाशवाणी रे गणगौर कार्यक्रम रे प्रांगण रे मायने खुशबू जी आपरो गणी मान स्वागत है और आपने गणी मान राम राम सा।
3: हमार गणी सा मैं खुशबू
2: जी तो खुशबू जी आप इतो बढ़िया गृह उद्योग चला रहा हो तो आप मैं एक सवाल करूं कि आप इन गृह उद्योग री शुरुआत है बा कदे करी ही और आप क्यों करी ही।
3: मैं गृह उद्योग की शुरुआत हमारे 26 अगस्त 2025 को की थी, लगभग एक साल होने में आया है।
2: जी जी तो आप क्यों करी ही।
3: हमने इसलिए की कि हमारे राजस्थान के लोग बाहर रहते हैं, तो हम राजस्थान की खान पान परंपरा वो स्वाद लोगों के पास पहुंचा पाए।
2: अच्छा अच्छा जी जी
3: हाँ।
2: और देखो आप गृह उद्योग चला रहे हो तो इनमें आप कह रहे हो कि राजस्थान रे लोगों ने राजस्थानी तक आ चीजा पहुंचा सका, तो कौन सी चीजा है जिसको आप तैयार करिया करो हो।
3: देखो आपने सीजन बाय की उतना सीजन है, जैसे ठंड है गर्मी हो, जैसे हम प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे गर्मी के हिसाब से अचार चलता है, ठंड में आपने राबोड़ी मूंग बड़ी होती है जो खराब नहीं होती, लंबे समय तक चलती रहती है राबोड़ी मूंग बड़ी, हमारी राबोड़ी मूंग बड़ी अचार खींचे पापड़ चकली, जैसे मखाने की मिर्ची हल्दी पाउडर धनिया पाउडर, ये सारे जो जो सारे प्रोडक्ट होते हैं किचन के यूज में लेते हैं अपने रसोई घर में मसाले का, वो सारे हम एकदम देसी तरह से यूज में लेते हैं।
2: जी जी तो आज का बड़ी और राबोड़ी आप बनाया करो हो, ये पारंपरिक विधि का ही है खुशबू जी।
3: पारंपरिक विधि देखो राबोड़ी आपने पहले चूल्हा पे बनावा, यूं नहीं कि आपने गैस पे बना दो, गैस पे ऐसा कहीं भी नहीं करा, आपने चूल्हा पे बनावा, चूल्हा पे बना एकदम खाटी छाछ में, अगर मक्की की हो ज्वार की हो एकदम खाटी छाछ में बना, बड़े भिगोन अंदर रख बड़े चूल्हा पे रखा हांडी, बड़ी हांडी रखा 10 किलो 20 किलो 25 किलो, विद 3-4 घंटा तो बड़े पकावा, पकान डायरेक्ट धूप में सुखावा इसको, हम घर के सब जने मिलके बढ़िया हमने धूप में सुखान बड़े तैयार करा।
2: जी जी और बड़ी बड़ी की कर बना। हाँ
3: मूंग बड़ी हो जाती वो अपने खेत से लेकर आते, मूंग अपने एकदम साफ सुथरा मूंग लेकर आते, फिर घर पे आराम से भिगो के रखते हैं, 10 किलो हो या 20 किलो ऐसे भिगो के सुबह मॉर्निंग में फिर अपन यूज में लेते हैं, छिलके सारे उतर जाएंगे, शाम की ठंडी है ठंडी में होते ना वड़ी करते हैं, जो ठंडी में टेस्ट भी अच्छा होता है।

0: हुआ हाथों से करते हैं पूरी फैमिली।
1: अच्छा अच्छा, और देखो कि आप सूखी सब्जियां भी ये जो कबाब भी तैयार करिया करो, तो ये जो की सूखी सब्जियां है बिने लंबे टाइम तक सुरक्षित रखने वास्ते कई कई सावधानियां रखनी चाहिए।
0: देखो लंबे समय तक सूखी सब्जी रह भी जाती है, बट वो की मौसम होता है, मौसम के हिसाब से अपन को ध्यान रखना पड़ता है। मौसम जैसे नमी हो जाती है, नमी से वो खराब हो जाती है, तो इसकी वजह से अच्छे से बॉक्स में अच्छे से पैक करके रखना पड़ता है। और मौसम जैसे धूप आती है तो बार बार धूप में दोगे तो वो खराब नहीं होती है।
1: अच्छा अच्छा, समय समय में धूप देना भी जरूरी है।
0: समय समय पर आप धूप देना चाहिए और इसको अच्छे से पैकिंग करके रखना चाहिए। और राबोड़ी मूंगबड़ी ऐसी होती है वो खराब नहीं होती, अगर आप इसको धूप में रख दोगे ना तो एकदम साफ सुथरी रह जाती है और अच्छी रह जाती है, कीड़े वगैरह कुछ भी नहीं पड़ते हैं।
1: अच्छा, तो 12 महीने तक आप रख सके यानी?
0: हाँ जी मैम, आप आराम से रख सकते हो। अपनी देसी है, हम मथाने के हैं तो एकदम देसी तरह की यूज में लेते हो। घर से स्टार्ट किया है तो मैंने देसी किया है तो वो बिल्कुल भी खराब नहीं हो गया, बिल्कुल भी मिलावट 1% भी नहीं है, अपने है जो पूरा प्योर है।
1: जी जी, तो आप ये उत्पाद रे महीने घर रो देखो स्वाद बनी ओड़ी रेवे, घर की गुणवत्ता बनी ओड़ी रेवे, इन्हें बनान रखने वास्ते आप काई करिया करो हो? आपने उत्पाद रे में
0: आपने देखो घर का स्वाद बनाने के लिए घर के मसाले यूज में लेते हैं। ठीक है, घर के मसाले यूज में लेते हैं, जो अपने दादा दादी होते हैं वो अपने पुराने वाले मसाले होते हैं उनकी विधि लेते हैं, उनका विधि उनके मसाले वो यूज में लेते हैं कि अपना माल भी अच्छा रहे, हर एक चीज प्रोडक्ट भी लोगों के पास पहुंचे वो भी अच्छा रहे, वो टेस्ट में भी अच्छा बढ़े, हर एक चीज अपने देसी की तरह होता है। अपने मार्केट वाले मसाले लाके ऐसा कुछ भी नहीं, अपने मथाने की मिर्ची होती है आपको पता ही है, हमारे घर के पीछे ही खेत है वहां से हम लेकर आते हैं तो अच्छे पाउडर हो जाते हैं, उस देसी यूज में करते हैं हम, ऐसे मार्केट वाला मिलावटी 1% भी नहीं है अपना।
1: जी जी जी, एकदम घर वाला है जो को घरे है चक्की में पिसान आप काम में लिया।
0: हाँ,
1: करो नहीं,
0: हमने घर में चक्की है जी में पिसान बड़े हमने प्रोडक्ट यूज में लिया हुआ।
1: अच्छा, इन वास्ते स्वाद है जो को वो घर जड़ो बनी ओड़ो रहे है,
0: घर जड़ो है बस इकेले मैं घरों स्टार्ट की दो है, आपने घर जो सो टेस्ट में सबके पास पहुँचाओ सो, मैं जो भारत में सब जगह पहुँचना चाहे की आपने घर को टेस्ट बस।
1: जी जी जी, तो ये इन काम रे मायने आप रे देखो आप रे घर परिवार रो है वो कितों सहयोग बनी ओड़ो रही है, कितों सहयोग मिलियो आपने?
0: देखो मारो पूरा सपोर्ट है मारा ससुराल वालों है, मारा पीर वालों की सपोर्ट में ससुराल वालों देखो मारो हर एक कदम पे मारा साथ देवे। अगर मैं पहली मैं वीडियो बनाने जाती थी जोधपुर तो लोग पहले धूप में जाना बस में जाना मैं देवर वीडियो बनाने ले जाते थे, काफी लोग बोलते थे उनको पसंद भी नहीं आता था और काफी लोगों को पसंद आता था, हर एक चीज देखो मेरी सपोर्ट में बहुत होता था और मेरे साथ, मैं कभी हार भी मानती थी तो मेरे साथ मुझे बोलती थी बेटा आपने हार नहीं मानी, आज नहीं कल तो अच्छा होगा अपना, इसी कदम पे मैं आगे बढ़ी, आज मेरा सब कुछ है, मेरे सास ससुर ने मेरी पूरी फैमिली ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट दिया।
1: जी जी, देखो परिवार और सपोर्ट रही हो जो आप आज आगे बढ़ रही हो है ने?
0: हाँ, आज मेरे पूरी फैमिली की सपोर्ट की वजह से मैं आगे बढ़ी हूँ।
1: जी जी, तो देखो खुशबू जी की वो काम आप शुरू करियो तो आपने कोई आर्थिक स्थिति के मायने में कोई बदलाव आयो, कोई आपने परेशानी रियो सामना भी करना पड़ियो कहीं?
0: देखो और भी काम करे सब मु ज्यादा इम्पोर्टेंट है पैसा, पैसा के बिना कुछ भी काम नहीं होता है।
1: जी जी,
0: ठीक है, एक हम मिडिल क्लास फैमिली से है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, लेकिन मेरे घर वाले ने मेरे हस्बैंड ने जो जॉब करता है मेरे हस्बैंड जिसकी जो सैलरी होती है उससे इकट्ठा करके हमने हमारा काम स्टार्ट किया, गृह उद्योग घर पे स्टार्ट किया है। मेरी पूरी फैमिली ने सपोर्ट करके पैसा, हमने ऐसे लोन लेना ऐसा कुछ भी नहीं किया, अपने जो भी था थोड़ा बहुत था तो थोड़ा से स्टार्ट किया, जीरो से स्टार्ट किया।
1: जी जी, घरु काम की शुरुआत करिएगा।
0: हाँ, अपने घरु काम स्टार्ट की दो, जितना हो उनो स्टार्ट की दो, आपने लोन लेनो अचन कहीं भी नहीं की दो, बस अपनी फैमिली आपने साथ दी दो और आपका काम स्टार्ट की दो।
1: जी जी जी, मतलब के नी के अणु तो माथे नी करने जितना आपने करना हो वटू ती शुरुआत करी हो,
0: जितरो है वे जितरो ही आपने करनो।
1: तो आज आपकी नी स्थिति माते हो, आज आप रो इतना टाइम हुई कि आज आपकी नी स्थिति माते हो?
0: देखो पहले हमारी स्थिति कोई सही नहीं थी, अब धीरे धीरे काम करते करते बहुत अच्छी हो गई है, जितना पहले बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया हमने बट आज हमने स्थिति बहुत ही ज्यादा अच्छी हो चुकी।
1: जी जी, और देखो खुशबू जी की आज गणगौर प्रोग्राम हो रही अपनी बहनिया, तो आप ये जगह गणगौर प्रोग्राम होने वाली बहना ने आप तरह कई कहनी चाहो?
0: मैं भी एक औरत हूँ, शादीशुदा औरत हूँ, हमारे भी घर की जिम्मेदारी बहुत रहती है, आपको पता है जिम्मेदारी हर एक औरत के ऊपर होती है, जिम्मेदारी भी पूरे के बच्चे भी होते हैं उनको भी पूरा करना पड़ता है, 2 घंटे अपने काम के लिए भी आप स्टार्ट करो, भले सिलाई हो भले खाना हो भले कुछ भी काम आता हो, छोटा कभी कुछ छोटा काम नहीं होता है, आप स्टार्ट करो कुछ भी घर पे बैठे आप स्टार्ट करो, भले सोशल मीडिया की वीडियोस हो

0: भी काम हो, कभी कोई लड़की, कोई भी महिला, कभी किसी चीज को काम कम नहीं समझना चाहिए. हर चीज को आगे बढ़ो. आज अपना हस्बैंड सपोर्ट है, अपनी फैमिली सपोर्ट हो, तो हर एक चीज में आगे बढ़ना चाहिए. घर बैठे स्टार्ट करो ना, ज्यादा कुछ नहीं. अपन बाहर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, पर आप घर से स्टार्ट करो.
1: जी जी बिल्कुल.
0: अगर आप लोगों को किसी को भी मेरी हेल्प चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे पेज है, वहाँ जाके मुझे भी आप मैसेज कर सकते हो. किसी भी चीज में मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ.
1: जी जी बिल्कुल. देखो खुशबू जी, आज आपरी बातों घनी जी की महिला है बेने, देखो आज शक्ति आई है, पावर आयो है के नहीं, देखो ये कर रहा है तो मैं भी आज घर बैठा कीन की कर सका है नहीं.
0: हाँ बस यही बोलना चाहती हूँ हर एक लेडीज को, हर एक बहन को यही बोलना चाहिए, बस काम करना स्टार्ट करो. मैंने भी स्टार्ट किया है, आप लोग भी स्टार्ट करो.
1: जी बिल्कुल खुशबू जी. तो आज आप अमूल्य टाइम निकाल मन से बात करी, बहुत ही चोखी अपनी बहनिया ने जानकारी दी, इन वास्ते आप गणो गणो ही धन्यवाद है और राम राम सा.
0: राम राम.
2: अबार आपा सगला सुनेहा गृह उद्यमी खुशबू लक्षकार सु भावना लखारारी फोन आउट बातचीत जकारी प्रस्तुति ही राजेश लामरोडरी, संयोजन हो मनीष कुमार सोलंकी रो.

0: बिल्कुल कोमल, बारे तो घणी निकल जावा पण बारे निकलता ही वो तावड़ो है वो तब तो अपने घणो आखरो लागे है।
1: बिल्कुल
0: पण कई है कि कई एड़ा काम जरूरी विया करे है भी मैं अपन तावड़ा में निकलनो जरूरी ज विया करे है। तो अपा अगर तावड़ा में बारे निकल भी रिया हा तो अपने नहीं अपने शरीर ही थोड़ी सी देखभाल करने बहुत जरूरी रिया करे है, क्योंकि वो तब तो तावड़ो है इनमें ने पसीनो ही आवे धूल मिट्टी होवे यू कही है कि अपनी त्वचा है बार रुखी हो जाए करे बेजान वे जाए करे है। तो कई अड़ा छोटा छोटा उपाय है वे ने अपा अपना सका वे ने अपना ना अपने त्वचा ने जो को एकदम सही रख सका या चमकदार रख सका। हाँ तो इरे वास्ते अपन कई करना कि पूरे दिन अपने खूब तो पानी पीवनो है ताकि शरीर कई है कि हाइड्रेट रहेला।
1: बिल्कुल
0: और आप चाहो तो नींबू रो पानी ले लो, छाछ ले लो, नारियल रो पानी ले लो, किन की कहनी के पेय पदार्थ है वे अपन लेवता रहना चाहिए।
1: बिल्कुल भावना जी, पेय पदार्थी रो आप बात करे हो पर एक समस्या भी हो जाए कि आप जी धूप में निकला तो अपनी चमड़ी पर जलन है जो की हो जाए तो इरो भी उपाय है जो को बेनान बताओ।
0: बिल्कुल अपने कई करना चाहिए कि या तो आप निकल जाओ तो टोपी लगाई लो या पचे एक दुपट्टा सु मुंडा ने बांध लो या छातो ले लो या वो तो सनग्लास है वो जरूर पहनना चाहिए। हो सके तो सीधी धूप है वह अपने त्वचा पड़ने लागे है।
1: बिल्कुल बाहू तो देखो आप धूप थोड़ा सा बच रह सका लेकिन लू की लू का थपेड़ा जगह बारे में आप बहुत ज्यादा पड़ रहा है वासु कुछ को नो नाड़ो कुछ एडो टिप बताओ जो आप जो है कि थोड़ा सा चेहरा पर है जो ठंडक रह सके।
0: बिल्कुल तो देखो कि आप बता रहे हो कि लू रे थपेड़ा चेहरा मत लाग जाओ तो कई छोटा सी फेस पैक है वे बना नगर आप लगा दानी तो अपन त्वचा पर निखार आ जाया करे है। तो अपन ने कई करना है कि बेसन ले लेनो है थोड़ा सी और थोड़ी सी हल्दी ले लेनी है और आप पली मात्रा चाहो तो 2 चम्मच बेसन ले लो 1 चम्मच दही ले लो इन्हें थोड़ा सा हिला और इन्हें चेहरा माथे लगा दो 15 मिनट तनी रख दो और 15 मिनट के बाद में कई करना कि ठंडे पानी से धो लेना है भी कही है कि त्वचा सॉफ्ट भी हो जाए और कई साफ भी हो जाएगा।
1: बिल्कुल और देखो कई बहना भी है जो कि बाहर निकले तो भी पहले सनबर्न क्रीम लगा हुआ यानी कि सूरज की जो कि किरण है बा अपने ऊपर नेगेटिव इफेक्ट नहीं डाले तो बिन्द्र वास्ते भी आप कुछ मास्क भी आप घरे तैयार कर सकता जी की चंदन और एलोवेरा है तो भी ने आप थोड़ा सो मिला गुलाब जल रे मायने जरूरत रहे हिसाब से डाल और पेस्ट बना ला और धूप में जावन सो 20 मिनट पहले भी लगा लो बस दोर आप धूप में निकल सको या फिर धूप लौटन रे बाद में भी आप इन्हें लगा थोड़ी सी देर रखा तो अपना जो की जलन हुए बाकम हो जावे और ठंडक भी देवे।
0: यही देखो कि मुल्तानी मिट्टी रे बारे में तो आप सगला सुनी ओड़ी है तो 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी ले लो उनमें ने थोड़ो सी गुलाब जल डाल दो इरो पेस्ट बना और चेहरा माथे लगा दो और जब वो सूख जावे तब इन्हें अच्छी तरीके से धो लो।
1: बिल्कुल और तिल रो तेल और हल्दी रो सीरम भी एक प्राकृतिक रूप से सनबर्न रो काम करिया करे तो 2 चम्मच तिल रो तेल में 1 चुटकी हल्दी मिला और वीर मायने गुनगुनो तिल रो तेल अगर आप डाला और भी ने अच्छे से हल्का हाथ से मालिश करा तो इमें जका एंटी ऑक्सीडेंट गुण हुए बापनी त्वचा ने डेमेज होने से बचावे।
0: बिल्कुल तो सगली बहना ने वही कहनी चाहू कि आप रे इन तावड़ा रे महीने और तपती धूप रे महीने जरूर ए चीज अपना आप ध्यान रख जाओ।

0: या फिर धूप में लौटन रे बाद में भी आप इन्हें लगा थोड़ी सी देर रखा तो अपना जो कि जलन हुए बा कम हो जावे और ठंडक भी देवे।
1: यही देखो कि मुल्तानी मिट्टी रे बारे में तो आप सगला सुनी उड़ी है, तो 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी ले लो, उनमें ने थोड़ो सी गुलाब जल डाल दो, इरो पेस्ट बना और चेहरा माथे लगा दो, और जब वो सूख जावे तब इन्हें अच्छी तरीके से धो लो।
0: बिल्कुल। और तिल रो तेल और हल्दी रो सीरम भी एक प्राकृतिक रूप सु सनबर्न रो काम करिया करे। तो 2 चम्मच तिल रो तेल में 1 चुटकी हल्दी मिला और वीरो मायने गुनगुनो तिल रो तेल अगर आप डाला और भी ने अच्छे से हल्का हाथ सु मालिश करा तो इमें जका एंटीऑक्सीडेंट गुण हुए बा अपनी त्वचा ने डैमेज होने से बचावे।
1: बिल्कुल। तो सगली बहना ने वही कहनी चाहूँ कि आप इन तावड़ा रे महीने और तपती धूप रे महीने जरूर ये चीज अपना आप ध्यान रखो।

0: बिल्कुल भावना जी, गर्मियों की बात आप कर रहे हैं, हाँ तो मेहंदी रो जो को योगदान है वो भी गर्मी में ठंड जो कि गर्माहट है बा मिटन वास्ते आप काम में लेवा ही हाँ, क्योंकि मेहंदी आंगनारी रौनक तो हुई है साथ ही साथ शरीर ने ठंडक देवन रो काम भी करया करे।
1: बिल्कुल कह नहीं कि अपनी बहनिया ने साज और सजावट करने रो घणी कोट दिया करे है। कोई भी देखो कि तीज त्योहार या पछ कोई ब्याह शादी आवे नहीं तो अपनी बहनिया हरों पहले ओच लेवे कि मन मेहंदी कद लगानी है नहीं, तो वह जो मेहंदी लगा में नहीं तो वे बहन है जो घड़ी घड़ी आपने फरूक फरूक हाथा ने देखिया करे है कि वे सजी उड़ी कितनी चोखी लागे है। पर आ मेहंदी है बस सजावट तो देवे ये अपने शरीर वास्ते ही घनी चोखी दिया करे, अपने शरीर ने है वह ठंडक दिया करे है। और ध्यान है कोमल जी के पहले रे टेमरे महीने तो कई करता हाँ कि मेहंदी रे पत्ता हाँ बिने तोड़ हर सुखा दिया करता, सुकान बिने पीस और बिने रात भर भिगोन हाथा पगारे और माथा रे लगा दिया करता हाँ, उनाड़ो आवते ही वो काम हगड़ू पहले करता हाँ। यूं कहिए कि शरीर ने ठंडक मिल जाया करती है
0: बिल्कुल
1: और ठंडक तो मिलती भी रहते कई फायदा हुआ करता हाँ, क्योंकि मेहंदी री तासीर ठंडी है वे इन वास हाथा पगार महीने जो को भी केनी जलन वगैरह हुए बिना कम करया करे है। और मेहंदी है वो बाला रे भी लगाया करे है, वे कह नहीं कि बाला रे में लगाऊं माथा रे महीने ठंडक होया करे है। और देखो कि त्वचा संबंधी जका भी कोई भी विया करे दाद है गमोरिया है खुजली है ब्यों भी मेहंदी लगानो बिमें भी आराम मिलिया करे है।
0: बिल्कुल। और अब बात चमड़ी में जब आप मेहंदी लगावा ठंडक देवन रे वास्ते तो मेहंदी ने सादा पानी में या गुलाब जल में घोलर लगावा और अगर खाज खुजली हुए तो मेहंदी ने नीम रा पानी में और रस नीम रा पानी रो जो रस हुए बिर माई ने घोल लगानो चीज है। और अगर खाटा दही में आप मेहंदी घोलर लगावा तो चमड़ी री जकी खुश्की हुए बा दूर हुआ करे। और एक आधो नींबू निचोड़ मेहंदी में लगावा तो इन्फेक्शन है जको मिटे और माथा पर खुजली है जकी कौन चले। और मेहंदी घोलते टाइम अगर बिरने मायने आप 2 चम्मच आंवला पाउडर मिला ला तो बाल चमकीला हुए और गहरा भूरा हुआ करे। और अगर बाला ने अपन कत्थे ही रंग देनो है थोड़ो सो लाल रंग देनो है तो पानी री जगह चुकुंदर और रस है जो को आप डाल सका।
1: हाँ और आज जो मेहंदी है बा अपने खुशबू और ठंडक और कहवे नहीं कि मन ने शांत राख्या करे एक ताज की रो अपने एहसास विया करे है।
0: बिल्कुल। और भी मेहंदी से जुड़ी बात करा ला सुनावा आपने एक प्यारो सो गीत।

0: बिल्कुल, मेहंदी रो रंग जी हाँ तेली में बिखरे भी यही इरो जी इरी जो की सुगंध हुए बिसु या फिर एको पौधो हुए वो घर आंगना री हवा ने भी साफ और सुथरो रखे। इकी महक जकी है भावना जी इरी सुगंध जकी है वह मच्छर और जितना भी काटिया
1: कीट हो गए
0: कीड़ा हुए
1: हाँ
0: वाने घर सु दूर रखे। और अरे आप बताइए हो कि पाना रो रस हुए जो चमड़ी रा दो रोग है जका दूर करे। और
1: हाँ
0: इरा जका फूल हुए वो उनाला रे मायने भी भीनी भीनी सुगंध देवे जकी मन ने शांति देवे। और सबसे बड़ी बात इरिया है कि ओ जो को पौधो है वो
1: हाँ
0: कड़क उनाला रे मायने भी कम पानी में भी टिकेड़ो रेवे।
1: टिक्योर
0: इनरे वास्ते
1: रहे
0: अपना राजस्थान में इन्हें उगाने घना ही फायदा है।
1: इनी कई विधि भी है जिका कोमल अपा किन विधि किन तरी आपा ये उगा सका। तो देखो इन्हें बीज सु भी उगा सका, इन्हें टहनी काटने भी उगा सका। तो कई करनो कि एक स्वस्थ पौधारी लगभग 6 से 8 इंचरी लंबी पेंसिल जितनी पतली टहनी काट लेवनी, और नीचे रीज की पत्तिया हुए है टहनी री वे हटा देवनी, और वीर ने एलोवेरा जेल या शहद लगा देवनो। और टेनी ने कई करना कि गमले री 2 और 3 इंच माटी री गहराई तानी दबा देवनो है, और इन्हें नमी देवन रे वास्ते कोई पारदर्शी प्लास्टिक शू ढक देवनो।

0: लगा देना। और टेनी ने कही करना कि गमले री 2 और 3 इंच माटी री गहराई तानी दबा देवनो है। और इन्हें नमी देवन रे वास्ते कोई पारदर्शी प्लास्टिक शू ढक देवनो। और इनी टेनी रे जड़ और पत्तियां आवन रे मायने 1 से 2 महीना रो टेम तो कम कम लागे करे है।
1: बिल्कुल भावना जी, और मेहंदी रा पौधा ने ज्यादा नमी पसंद हुआ करे, पर जरूरत से ज्यादा अगर पानी देवा तो वीरी जड़ जकी है बगड़ जावे। इनरे वास्ते एक मिट्टी ने सुकन रे बाद ही एकर पानी दिया पचे दोबारा पानी देनो है। और हमेशा मिट्टी सीमेंट रा गमला में ही है जो को इस्तेमाल होना चाहिए, मिट्टी या सीमेंट रा गमला में, क्योंकि प्लास्टिक में पानी है जो को रुक जाया करे। और गमला रे निकासी रे वास्ते नीचे एक छेद होना जरूरी है, और किया करे कि पनपन रे बाद में 5-6 घंटा री धूप जकी है बस सीधी धूप पीने देनी जरूरी है। और पौधा री हरी भरी ग्रोथ रे वास्ते अपने महीना में एक बार खाद है जो को जरूर डालना है। और साल में एक बार फरवरी मार्च या मानसून रे बाद में इरी सूखी और कमजोर शाखाएं जकी वे बिने गहरी छटाई भी करती रहना चाहिए।
0: बिल्कुल। और कोमल जी टेनी री तो देखो अबार आप बात करिए और 20 सुबह ओ पौधो है वो उगया करे है, तो जो को बीज है बाने 12 से 24 घंटा रे वास्ते अपना कई करना कि हल्को गुनगुना पानी रे मैंने भिगोन राख देना है। और गमला रे मैंने जिकी माटी हुए है और जैविक खाद वे वेण मिश्रण कर और बीजों ने 1 और 2 इंच री गहराई तानी अंदर तानी डूबो देना है, बिने दबा देना है और पानी रो छिड़काव कर देना है ताकि माटी कई है माटी रे मैंने नमी बनी ओड़ी रहे। पण ओ ध्यान रखनो कि पानी घणो भरोड़ो नहीं रहे है, घणो पानी भरोड़ो तो अति तो कहवे नहीं कि नुकसान भी आ करे है। और ये जगह इन्ना जगह बीज अंकुरित वे है वे 14 से 42 दिन तानी विया करे है।
1: बिल्कुल। और मेहंदी रा पौधा पर भी है तो केवे भावना जी कीड़ा कौन लागे, पर फिर भी अगर वीरे मायने कोई सफेद कीड़ो या फिर कोई फंगस दिखे तो वीरे नीम रो तेल री कुछ बूंदा पानी में डाल और स्प्रे कर सको और आप री रख रखाव रे साथ ही मेहंदी रा पौधा ने आप उगा सको।

0: देखो कोमल, गर्मी तो घनी पड़े हैं, कहवे नहीं कि कोई काम हो जावे नहीं तो ही घर से बाहर निकलना रो मन ही को नहीं करे, गर्मी ही रहे वहां, एसी और कूलर आगे बैठा रहे वहां। पर
1: बिल्कुल
0: आज की एसी है वो अपने ठंडक तो देवे ही है, बाहर ही ठंडक देवे, अंदर अपने स्वास्थ्य वास्ते कठे रन कटे कहवे नहीं कि नुकसान ही जिया करे हैं। तो जी की आ एसी री ठंडी हवा है ब्यू कही है कि अपनी जी की त्वचा ने जी की प्राकृतिक जी की नमी मिले है नी वह खींच लिया करे है। ब्यू कही है कि जी की त्वचा ये बार रुखी रुखी हो जाया करे है। और कई बार कई होवे कि अपा कटे बारे गयोड़ा रहो और गरम तपियोड़ा हुआ और एकदम कई करा कि ठंडक देवण वास्ते एसी रे कमरा में आ जाया करा हाँ और बटे बैठ जाया करा हाँ। ब्यू कही है कि अपने जिकी मांसपेशी आए वे सिकुड़ जाया करे, बीमे ऐंठन ऐठे जड़ा हो जाया करे है, तो कहवे नहीं कि अपने शरीर वास्ते नुकसान करिया करे है। और अगर देखो कि लंबे टाइम ताने अपा एसी रे महीनीच बैठा रहे वहां तो अपने कह नहीं के कई जोड़ों रा दर्द होने लाग जाए, गर्दन दर्द होने लाग जाए, पीठ में दर्द होने लाग जाए, कई तरह रा दर्द है वे होने लाग जावे है।
1: बिल्कुल होने लग जावे। देखो नुकसान तो वही है, आप यहाँ कौन कहवा क्यों अपने वास्ते फायदो कौन करे, अपने गर्मी से बचावे, लेकिन ये इस्तेमाल विभिन्न तरीके से होना चाहिए कि अपनी सेहत है जबकि भी सही बने
0: सही
1: रही
0: बने
1: रहे,
0: उड़ी
1: तो
0: रहे।
1: ये इस्तेमाल करो अपन खुद री सेहत रो ध्यान रखकर करो, क्योंकि लगातार अगर आप ऐसी रा संपर्क में रहे वहाँ तो जो बाहरी मौसम है वो मौसम हुआ करे भी सो अपनी जी सहनशीलता हुआ करे बा कम हो
0: कम
1: सके,
0: हो जावे
1: इन रे वास्ते सही इस्तेमाल फायदो करे करे, जिया कि ज्यादा गर्मी शरीर में अपन जो कि ओवर हीटिंग हुए या हीट स्ट्रेस हुए विशु अपन ने आ बचावे, और ठंडो वातावरण हाई रेट हुए या फिर हार्ट रेट हुआ करे विने भी कंट्रोल रखे, पसीनो है और या थकान है जो को भी कम करे, इनके वास्ते सही तरीका से ये इस्तेमाल होना जरूरी है। जिया कि आप 24 या 26 बीच में ये टेम्परेचर रखो और लगातार कई घंटा तक ऐसी रिमाइने बैठन की बजाय आप जो को बीच बीच रिमाइने ब्रेक ले ले रहे हो या फिर थोड़ी थोड़ी
0: बाहा
1: देर में भी नहीं या तो आप बंद कर
0: बंद
1: दो
0: करो।
1: ऑन ऑफ करता रहे हो, और जितनी भी कमरा री खिड़कियां हुई करे बा थोड़ी देर वास्ते खोलो ताकि फ्रेश एयर जकी है फिर सर्कुलेशन है वो बनाए डू रहे,
0: बने उड़े रहे हैं।
1: और साथ ही है जकी एसी फिल्टर री जकी साफ सफाई है बा भी करती रहनो चाहिए, और एयर फ्लो जो को है वो भी बीरे ठीक सामने अपने नहीं बैठनो
0: थोड़ी
1: क्योंकि
0: दूरी
1: सीधो आपा,
0: बनान बैठे
1: हाँ सीधो आपा
0: हाँ
1: हमारे
0: संपर्क में नहीं
1: संपर्क में नहीं
0: आवना।
1: आनो, और फुल पानी पीनो हल्का कपड़ा पहनो, और बारे अगर आपा घूम आ रहे हैं या धूप सु आ रहे हैं तो अचानक सु आपा ने एसी में नहीं बैठना
0: नहीं
1: चाहिए,
0: बैठनी चाहिए
1: थोड़ी देर बिना एसी रा रूम में या एसी बंद कर देना ताकि अपने सेहत रे वास्ते एसी है जो कि ठीक रहे।

0: पर हम मान लो चाहे कोई मान लो आजकल आप देखा कि जी गर्मी आई तो ज्यादातर लोग ये भी कोल्ड ड्रिंक की तरफ बढ़ रहे हैं. कोई भी मेहमान आई तो चाय तो चलो गर्मी है तो कोई कम पीनी पसंद करे तो लोग जो कोल्ड ड्रिंक पुर से बन. लेकिन देखो आज ये 20 मई और 20 महीने राबड़ी दिवस है जो आप मना रहे हैं तो क्या करे की मारवाड़ री शान है राबड़ी और छाछरो मान जको है वो सब ज्यादा हुआ करे. मारवाड़ में मेहमान नवाजी में राबड़ी छाछरी जगह सबसे ऊपर हुआ करे. तो आप सगला ने अपील करनी है कि जो भी मेहमान आवे वाने राबड़ी छाछ है जो की परोसनी है.
1: बिल्कुल

0: पर हम मान लो चाहे कोई मान लो आजकल आप देखा कि जी गर्मी आई तो ज्यादातर लोग ये भी कोल्ड ड्रिंक की तरफ बढ़ रहे हैं. कोई भी मेहमान आई तो चाय तो चलो गर्मी है तो कोई कम पीनी पसंद करे तो लोग जो कोल्ड ड्रिंक पुर से बन. लेकिन देखो आज ये 20 मई और 20 महीने राबड़ी दिवस है जो आप मना रहे हैं तो क्या करे की मारवाड़ री शान है राबड़ी और छाछरो मान जको है वो सब ज्यादा हुआ करे. मारवाड़ में मेहमान नवाजी में राबड़ी छाछरी जगह सबसे ऊपर हुआ करे. तो आप सगला ने अपील करनी है कि जो भी मेहमान आवे वाने राबड़ी छाछ है जो की परोसनी है.
1: बिल्कुल

अभी आपने सुना कार्यक्रम गणगौर, यह आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल यूएलपीजीएम MP3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी, कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। आज की बातचीत से भारत इटली के मिले की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री

0: मंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यूबैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। यह समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
1: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ULPGM-V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन, हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस

0: जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री उत्तर बंगाल सचिवालय उत्तरकन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
1: मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही है। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
3: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम

0: और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक गिरकर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULPGM-V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं मुकेश की आवाज में संगम फिल्म के गाने के साथ। बोल हैं हसरत जयपुरी के और तर्ज शंकर जयकिशन की।

हमारी अगली पेशकश मोहम्मद रफी की आवाज में, गीतकार हैं एसएच बिहारी और संगीतकार हैं ओपी नैयर, फिल्म का नाम कश्मीर की कली।

0: भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपने पन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
1: पहनी, आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है सदाबहार नगमे। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में भावी फिल्म का गाना। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार हैं चित्रगुप्त।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। लीजिए अब सुनिए शकील बदायनी का लिखा और नौशाद का संगीतबद्ध किया गाना। आवाज है लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम कोहिनूर।

अब आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मुकेश की आवाज में कटी पतंग फिल्म से। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं आरडी बर्मन। श्रोताओं, आप सुनिए ये गीत और अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बोल बोल के थक गया।
2: क्या हुआ?
1: नया किट बैग चाहिए।
2: तो पहले कैप्टन से बोलो। नहीं सुना तो मैनेजर से।
1: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले आ गया नया किट बैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
6: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
5: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
6: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
5: अब दोनों एक ही ऐप आरोप। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
7: हम लोग जाते रहे।
8: क्या बात है, क्या बात है। जब भी चेहरे की चमक बता रही है और आपकी मुस्कुराहट और हंसी बता रही है कि आप बहुत सुंदर यात्रा करके लौटी हैं।
7: बिल्कुल।
8: कैसी रही यात्रा और क्या रहा?
7: बहुत अच्छी रही और बहुत चीजें बदल भी गई हैं मंदाकिनी जी।
8: अच्छा।
7: वहाँ जब हम लोग गए थे तो पहले जैसे बहुत परेशानियां होती थी बरसाना साइड जाने में कि गाड़ी करो ये करो तब जाओ वहां तक पहुंचो, आपको एक मंदिर है जो वहां का प्रसिद्ध। तो लेकिन इस बार था रोप वे शुरू हो गया वहां पे।
8: अच्छा।
7: तो बस आप रोपवे तक पहुंची अपनी गाड़ी से या किसी भी ऑटो से किसी चीज से और उसके बाद बहुत ज्यादा रास्ता भी नहीं है बरसाने का। अगर मथुरा से जाते हैं आप 45 मिनट में पहुंच जाएंगे, उससे भी कम में भी कभी कभी पहुंच सकते हैं 20-25 मिनट में अगर रास्ते में ट्रैफिक नहीं है तो। और रोपवे पकड़िए, सीधे आपको जहां मंदिर है वहीं पे ही उतारता है वो।
8: अरे
7: वाह। और बस आप मुश्किल से 10 कदम चलेंगे मंदिर आ गया।
8: अच्छा अच्छा।
7: हाँ तो बहुत अच्छा हो गया। अयोध्या भी गए तो वहां पे बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है, सिक्योरिटी भी उसी हिसाब से है, लेकिन बहुत अच्छा बहुत सुंदर इंतजाम किया हुआ है।
8: आपके कहने का मतलब यह है कि अब यात्रा उतनी तकलीफ देह नहीं है। कई बार हम क्या होता है निकलते तो है यात्रा पर रास्ते हैं या वो सुविधाएं हमें नहीं मिलती है जिससे यात्रीगण परेशान हो जाते हैं, लेकिन अब इतनी सुविधाएं दे दी गई हैं कि यात्रा करने का मजा बहुत ही आता है।
7: बिल्कुल। और लेकिन आप ये भी सोच के जाइए कि जैसे अगर आप मथुरा जा रहे हैं तो अगर आपको वहां मथुरा या वृंदावन में घूमना है तो आपको थोड़ा सा पैदल चलने की आपको आदत होनी चाहिए।
8: हाँ।
7: क्योंकि वहां पे ट्रैफिक की वजह से गाड़ियों को जो पहले ही रोक लेते हैं और आपको पैदल ही जाना पड़ता है, क्योंकि वहां पे ऑटो रिक्शा और जो ई रिक्शा वगैरह चलते हैं उसकी वजह से बहुत भीड़ हो जाती है, ट्रैफिक हो जाता है। इस वजह से जो पैदल चलते हैं यात्री, बहुत से लोग परिक्रमा करते हैं लेट के बैठ के, तो उनको परेशानी ना हो इस वजह से वो रोका जाता है। तो इसलिए आप पैदल चलेंगे तो अच्छी बात है ना, जितना आप पैदल चलेंगे उतना अच्छा है।
8: वो अच्छी बात है, लेकिन ये बात हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, जितने भी ये मठ हैं, तीर्थ जगह हैं, स्थान हैं, वहां पर हमें बहुत पहले रोक दिया जाता है ताकि जो हम लोग जा रहे हैं, दर्शक जा रहे हैं या जो भक्त जा रहे हैं, कहने का मतलब वो परेशान नहीं हो और यात्रा जो है सुचारू और शांतिपूर्वक हो जाए। और इस घूमने के जो है ना आरती, बहुत ज्यादा फायदे भी हैं। देखो तुम्हें देखकर लग रहा कितनी फ्रेश नजर आ रही हो, तुमने खुद ही कहा, तो तुम्हारा मानसिक तनाव बिल्कुल दूर हो गया होगा और एक फिजिकल फिटनेस महसूस कर रही होंगी।
7: बिल्कुल,
8: तो
7: बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है
8: और आत्मविश्वास बढ़ा होगा, एक नया दृष्टिकोण आया होगा यात्रा को करने के बाद। इतनी जगह घूम के आई हो,
7: इतने लोगों को देखा, सब कुछ किस तरह से लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, सब चीजें देख के बहुत
8: नई संस्कृतियों का अनुभव होता है, हमें नए अनुभव हमारे जीवन से जुड़ते
7: हैं, तरह तरह के व्यंजन मिलते हैं जो मेरा बहुत फेवरेट चीज है।
8: हाँ?
7: मैं मुझे जगह जगह की जो क्यूजीन होते हैं, जो व्यंजन होते हैं ना, वो खाने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वही चीजें हैं, एक ही चीज है जो यहाँ बनेगी और वो जो वहाँ बनेगी,
8: लेकिन फर्क होता है, स्वाद
7: बिल्कुल
8: का,
7: फर्क होता है। हाँ,
8: क्योंकि पानी का बनाने वाले का तरीके तौर तरीके बदल जाते हैं, लेकिन हमारा जो स्वाद लेने का तरीका है वो नहीं बदलता है ना। तो यात्रा करके आपके दिमाग को सुकून मिला है मैं ऐसा मानती हूँ, और अब जो आपने प्राकृतिक सुंदरता देख ली है आप फील गुड महसूस कर रही हैं।
7: बहुत बहुत अच्छा महसूस।

0: कर रही हूँ मैं अपने अंदर।
1: तो चलिए सखी सहेली में आज हमारे सखी और सखा आपको सुन रहे हैं और वो भी बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, मतलब आपकी यात्रा वृतांत सुनकर हमने मन से इस यात्रा को कर लिया है
0: जी।
1: तो अब ये गीत सुन ले।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो आरती आपके आने से भी देखो चार चांद लग गए हैं, है ना।
1: बहुत प्यारा गीत लगता है
0: जी। बताइए तो देखिए आप यात्रा में इतनी खो गई कि आप ये बताना भूल गई हैं कि हमारे श्रोता जानना चाहते हैं आज के हमारे विषय क्या क्या है।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं, मेरे एकदम ही इतना ज्यादा उत्साह लग रहा था कि मैं बताने भूल गई। तो हम बता देते हैं, अभी आज हम बात करेंगे विश्व मधुमक्खी दिवस के ऊपर।
0: अच्छा,
1: तो जो कि बहुत ही जरूरी है हमारे लिए मधुमक्खियां।
0: बिल्कुल।
1: और हम बात करेंगे,
0: काटती बहुत बुरा है।
1: अरे काट चुकी है मुझे, इसलिए मुझे पूरा उसका एहसास है, पूरा एक्सपीरियंस है उसका। और हम बात करेंगे भाषाओं से किस तरह से जुड़ा हुआ है संस्कार।
0: अच्छा,
1: तो इसके बारे में तो चर्चा करेंगे, साथ ही हम चाहेंगे हमारे जो जितने भी श्रोता हैं वो सब अपने अपने विचार, अपने अपने जो भी वो सोचते हैं उसके बारे में वो लिख के भेजा, ये बताएं कि वो उनको कितनी भाषाएं आती हैं बोलनी।
0: अच्छा ठीक है, यानी शब्द हमारा विचार आपके जो आप सेगमेंट लाई हैं
1: उसके अंदर हम बात करेंगे सद्भावना।
0: अच्छा, भाषाओं से जुड़े संस्कार में आप बताना चाहती हैं कि जी अपनी अपनी भाषाओं के बारे में हमारे श्रोता हमसे बात करें कि वो किस भाषा को जानते हैं या कितनी भाषाओं की ज्ञाता है। तो फटाफट लिखिए, हमारे सखा और सखियों से हम अनुरोध करते हैं कि जो भाषाओं से जुड़ा संस्कार है इस पर लिखने के साथ साथ ये भी बताइए आपने अब तक कितनी भाषाएं सीखी हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: है ना।
1: और हम बात करेंगे आज साड़ियों का संसार, साड़ियों का जो विषय है उसमें हम आज हम लेकर आए हैं तनचोई साड़ी।
0: क्या बात है। तो आज मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार आप मेरे लिए तनचोई साड़ी ले

0: लेकर आई है।
1: साड़ी तो मैं खैर नहीं लेकर आ पाई हूँ, लेकिन आपके लिए बहुत सारी मिठाइयाँ मैं लेकर आई हूँ।
0: बिल्कुल, वो हमें मिल भी गए हैं, है ना
1: जी।
0: और शब्द हमारा विचार आपके में आज सद्भावना पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, सद्भावना कहने को एक बहुत सामान्य शब्द लगता है, सद्भावना होनी चाहिए, लेकिन इसके गहरे अर्थ है। बहुत गहराई में जाकर आप इस पर अपने विचार लिखिएगा और ये भी बताइएगा कि आपके भीतर कितनी सद्भावना है दूसरों के प्रति, है ना। हम लिख तो देते हैं आरती बड़ी बड़ी बातें कि सद्भावना होनी चाहिए, बहुत जरूरी है जीवन में, लेकिन जब हमारा मौका मिलता है तो पता चलता है कि हमारे अंदर तो सद्भावना है ही नहीं, वो भावना ही नहीं।
1: अपने विचार लिखें
0: और
1: जो चीजें लिखी हुई पहले से उसमें
0: उस पर मत जाइए कि सद्भावना के विषय में क्या लिखा गया है, ये बताइएगा कि आप सद्भावना को लेकर क्या सोचते हैं। आपके जीवन में, आपके विचारों में, आपके व्यवहार में कितनी सद्भावना है, या सामने जो आपके लोग आते हैं उनसे आपको क्या सद्भावना रूपी विचार मिलते हैं।
1: बिल्कुल, तो हम बात एक चीज और भूल रहे हैं,
0: व्यंजन, आपका बहुत ही पॉपुलर सेगमेंट
1: जो मुझे बहुत पसंद है। आज हम बात करेंगे ठेकुआ की और दाल पीठा की। दाल पीठा मेरा इतना फेवरेट है ना, मैं बनाती भी हूँ, मैं खाती भी हूँ बहुत।
0: चलिए, तो अगली बार जब आप आएंगी तो लेकर भी आएंगे, दाल पीठा हमें खिलाएंगी भी, ठीक है। तो भाई, हम बात कर रहे थे विश्व मधुमक्खी दिवस की, जिसका हमें डर भी लगता है जब मधुमक्खी पास में छत्ता बना लेती है हमारे घर के आजू बाजू में कहीं, तो हम बड़े डर जाते हैं। एक आध मधुमक्खी उड़ती भी नजर आती है तो बड़ा डर लगता है कि कब काट खाएगी,
1: भगाओ भगाओ जल्दी।
0: लेकिन देखिए कितनी बड़ी बात है कि ये दुनिया में अगर मधुमक्खी नहीं रही तो दुनिया के लोग सिर्फ 4 साल तक जीवित रह सकते हैं, और अनाज होगा कि नहीं इस पर काफी मतलब शोध भी किए गए हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है अपने हमारे इकोसिस्टम, जो हमारे सिस्टम है पूरा पृथ्वी का, उसको चलाने के लिए।
0: बिल्कुल,
1: और हमारे जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि विश्व मधुमक्खी दिवस और मधुमक्खियों के बारे में खास बातें कुछ बता रहे हैं वो, कि दुनिया की 1/3 खाद्य फसलें पूरी तरह से मधुमक्खियों जैसे परागकों पर निर्भर है, यानी कि वो जो मधुमक्खियां हैं वो उसको पराग को जब लेती हैं और बिखेरती हैं उस पे ही निर्भर करता है।
0: बिल्कुल,
1: यदि ये ना हो तो हमारे भोजन की प्लेट से अधिकांश फल सब्जियां और मेवे गायब हो जाएंगे। मधुमक्खियां आपस में बात करने या भोजन के स्रोत का पता लगाने के लिए एक विशेष प्रकार का वेगल डांस यानी कि नृत्य करती हैं। एक पाउंड लगभग आधा किलो शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों के पूरे झुंड को लगभग 20,00,000 फूलों का दौरा करना पड़ता है, और अंत में मधुमक्खी की 5 आंखें होती हैं, 2 बड़ी मुख्य आंखें और सिर के ठीक बीच में 3 छोटी आंखें। सच में 20,00,000
0: बताइए, तब जाके हमें शुद्ध जो शहद है वो मिलता है।
1: एक बूंद भी नहीं गिराना चाहिए।
0: बिल्कुल नहीं गिराना चाहिए। और हम सभी को ये भी पता होना चाहिए आरती कि मधुमक्खियां उन पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जिन पर हम भोजन के लिए निर्भर हैं। जैसे कि सदियों से मधुमक्खियां जो पृथ्वी पर सबसे मेहनती जीवों में गिनी जाती है, और वो मनुष्य को, पौधों को, जैसा कि अभी तुमने बताया हमारे श्रोता ने पर्यावरण को लाभ भी पहुंचाती रही है, और एक फूल से दूसरे फूल तक वो पराग को ले जाती है, और प्रचुर मात्रा में फल, मेवा और बीज भी वो पैदा करती है।
1: जी, हमारी ये श्रोता जो है कितने जानकार है, मतलब कितने अच्छी तरीके से उन्होंने इस बात को लिखा हुआ है।
0: बिल्कुल सही कहा इन्होंने, और बल्कि उनकी जो विविधता है और गुणवत्ता में भी सुधार लाते हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा और पोषण में योगदान होता है, वो पृथ्वी पर जीवन चलते रहने के लिए जरूरी भी होता है। और शहद के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो शहद तो उत्पादक होने के अलावा मधुमक्खियां पौधों के निषेचन में मदद करती है, और अनगिनत प्रजातियों के प्रजनन को वो सुनिश्चित भी करती हैं। फलों की और सब्जियों से लेकर फूलों और पेड़ों तक हमारे द्वारा जो खाए जाने वाले कितने ही खाद्य पदार्थ हैं वो परागण के लिए मधुमक्खियों पर ही निर्भर हैं, जैसा अभी तुमने शुरू में बताया भी था।
1: जी, और मधुमक्खियों के बिना हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होगा, जिससे जैव विविधता में कमी आएगी, और मनुष्यों और वन्य जीवों दोनों के लिए खाद्य सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ सकती है। और विश्व मधुमक्खी दिवस की स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2017 में मधुमक्खियों और परागकर्ताओं के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए।
0: बिल्कुल, और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि काफी अच्छी जानकारी इन्होंने दी है कि विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है, और इस दिन मधुमक्खी पालन के अग्रणी एंटोन जानसा को 1734 में 32वां दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य जो है पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मधुमक्खियों और अन्य परागकणों की भूमिका को स्वीकार भी करना है। तो अमेरिका में ये पहली बार दिवस मनाया गया, और ये पहल मधुमक्खी पालकों, शिक्षकों और शहद प्रेमियों द्वारा मधुमक्खियों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, और उनका लक्ष्य मधुमक्खियों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करना था, और उनके संरक्षण को उनके महत्व पर जोर देना भी था।
1: बिल्कुल, और एक और श्रोता है हमारे, जो लिखते हैं कि 20 मई विश्व मधुमक्खी दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार दुनिया की लगभग 33% खाद्य फसलें और 90% जंगली फूलों वाले

0: पौधे पूरी तरह या आंशिक रूप से परागकों पर निर्भर करते हैं। मधुमक्खियां इस पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ रखने का सबसे बड़ा जरिया है।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखिए, बहुत सारी जानकारी जो हम जुटा के लाए थे वही हमारे श्रोता भी बता रहे हैं काफी अच्छा मधुमक्खियों के बारे में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज दिवस हम मना रहे हैं ना आरती, ये मधुमक्खियों की सुरक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने का एक शानदार अवसर है। और मधुमक्खियों को प्रचुर मात्रा में पराग उपलब्ध कराने के लिए मधुमक्खी अनुकूल फूल और जड़ी बूटियां हमें लगानी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा वो अपना कार्य कर सकें। अपने बगीचों की अगर हम बात करें, उन पर पौधों पर कीटनाशकों और रसायनों का उपयोग करने से हमें बचना भी चाहिए, क्योंकि मधुमक्खी और अन्य जो लाभकारी कीड़े हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। और साथ ही मधुमक्खी उत्पाद खरीदकर स्थानीय मधुमक्खी पालकों को हम बढ़ावा दे सकते हैं। और इस बार का जो मुख्य विषय रखा गया है वो है प्रकृति से प्रेरित मधुमक्खियां हम सभी का पोषण करती हैं।
0: बिल्कुल, हर बार एक नया विषय के साथ में आते हैं, तो इस बार का विषय ये है। और हमारे एक श्रोता है जो लिखते हैं कि फूल और फलों के फलीकरण के लिए मधुमक्खी वाहक का काम करती है, इसलिए मधुमक्खी का अस्तित्व बना रहना इस सृष्टि के लिए बेहद जरूरी है। पेड़ों की डाली के अलावा किसी घर की छत के नीचे छाता बना रही मधुमक्खियों से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल, जब तक आप उसे छेड़ेंगे नहीं तब तक वो काटी
1: करेगी। बिल्कुल,
0: और कि वो आपको डस ना ले, हम मतलब उसको डंक ना लगा दें आपको, हम भी यही कह रहे हैं। अगर उसे आप छेड़ेंगे नहीं तो वो अगर आप उसे छेड़ेंगे तो हमें छोड़ेगी नहीं। इसलिए जिस पेड़ की डाली पर तेरा छता हो उस डाली के पास से गुजरना नहीं। उन्होंने बड़े मजाकिए तरीके से इसको लिखा है।
1: बिल्कुल सही कहा है।
0: और कहते हैं कि 3 साल पहले हमारे घर के ओटीएस के सालियों पर छाता बनाया था, अब इस साल हमारे घर अमरूद के पेड़ के नीचे कपड़े सुखाने के तार पर एक कोने में एक महीन पहले छत्ता बनाना शुरू किया, जो आज काफी बड़ा हो गया है और कुछ दिनों बाद बरसात की ऋतु में अपने आप उड़ जाएंगे, ना हम उसे छेड़ते ना वो हमें छेड़ती।
1: बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि विश्व मधुमक्खी दिवस पर जरूर बताना चाहूंगी कि हमारी स्कूल बिल्डिंग में अभी अप्रैल में काफी बड़ा सा छत्ता है जिसे बुलवाकर हटवाया गया था। पहले तो हमको बहुत स्थानों पर दिखाई देती थी मधुमक्खियां, आप कम दिखती हैं। बचपन में माँ बताती थी कि उस पर बिल्कुल भी पत्थर नहीं फेंकना है, नहीं तो पानी के अंदर जाकर भी वो डंक मार देती है। वो हमेशा बात हमें याद रहती है और मधुमक्खी शहद सी मिठास देती है, ऐसे ही सभी के जीवन में मधुरता बनी रहे।
0: बिल्कुल,
1: तो चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: तो आरती
1: नाम नहीं बताने वाली हूँ चित्तौड़ का
0: भाई नाम तो हमारे पता ही है हमारे श्रोताओं को
1: बिल्कुल
0: तो हम बात कर रहे थे आज की भाई विश्व मधुमक्खी दिवस है और हमने बात की उनकी मिठास पर और मधुमक्खियों को किस तरह से हमें बचाना है इस पर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे देश में हमारी संस्कृतियों से जुड़ी चीजें हैं जहां पर हम बहुत सारी बातों से बहुत सारी चीजों से गुणों से जुड़ पाते हैं और उनमें एक है हमारा साड़ियों का संसार।
1: अरे बहुत
0: है ना। और हम महिलाओं को सबसे ज्यादा अच्छी लगती है ये साड़ियां और आज हम बात करने वाले हैं तंचोई साड़ी के बारे में।
1: तो तंचोई के बारे में बात करते हैं तो तंचोई की कहानी 19वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य से शुरू होती है और ऐसा माना जाता है कि लगभग 1856 ईस्वी में पारसी व्यापारी सर जमशेद जी जेजी भाई ने सूरत के जोशी परिवार के 3 बुनकरों को चीन भेजा ताकि वो इस विशेष ब्रोकेट रेशम की बुनाई की कला को सीख सके।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आरती। और वापस लौटने पर भाइयों ने अपने चीनी शिक्षक छोई का नाम अपना लिया और उन्होंने रेशम बुनाई की कला जो सिखाई थी। तन शब्द गुजराती शब्द त्रान से मिलता जुलता है जिसका अर्थ 3 होता है और इसी से तीनों भाइयों का नाम लिया जाता है। इस प्रकार जिस रेशम को उन्होंने बनाना सीखा उसे तंचोई के नाम से जाना जाने लगा है।
1: जी, तो उनके शिक्षक का नाम और उनका जो नाम भाई थे। और बम्बई में 1950 के दशक तक तंचोई साड़ियों का उत्पादन जारी रहा और जब बनारस के बुनकरों ने इन ब्रोकेट को बनाने की कला सीख ली तो उसी कपड़े का उत्पादन बहुत कम कीमत पर शुरू कर दिया गया और इसी तरह कुछ जटिल बनारसी डिजाइन तंचोई रेशम पर भी दिखाई देने लगे।
0: बिल्कुल सही कहा। और तंचोई बुनाई की एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक या दो ताने और बाने में 2 से 5 रंग के होते हैं, मतलब जो अक्सर एक ही रंग के होते हैं। और तंचोई साड़ियों की एक और खास बात यह है आरती कि इनके कपड़े की सतह साटन जैसी होती है और एक जटिल और तकनीकी बुनाई तकनीक है। बहुत मतलब थोड़ा जटिल है ये तकनीक
1: जी, इसको टाइम लगता है सीखने में बनाने में,
0: बहुत मुश्किल है।
1: तो इसमें 1 या 2 ताने और 2 से 5 बाने के रंगों का उपयोग होता है। ये साड़ियां बेहद हल्की और पहनने में मुलायम होती हैं। तंचोई की कई अलग अलग किस्में होती हैं जैसे कि सैटन तंचोई जो कि एक ही रंग के सैटन कपड़े पर जो साटन का कपड़ा होता है उस पर आधारित होती हैं और इसमें 1 या अधिक रंगों के ताने के धागे इस्तेमाल किए जाते हैं।
0: हाँ, और अतिरिक्त ताने के रंगों को भी मुख्य ताने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सैटिन जरी तंचोई सैटिन तंचोई का एक विस्तारित रूप है जिसमें ताना या तो एक रेशम और एक सोने के धागे का या 2 रेशम के धागे और एक सोने के धागे का इस तरह से इसको बनाया जाता है।
1: जी, और इसके साथ एटलस या गिल्ट कपड़े की सतह शुद्ध साटन की होती है। अन्य कपड़ों की तुलना में एटलस या गिल्ट भारी होता है और जरी के अतिरिक्त उपयोग के कारण इसमें अधिक चमक भी होती है। और मुशब्बर का डिजाइन अपनी जालीदार बुनाई के कारण थोड़ा अलग सा दिखता है।
0: हाँ बिल्कुल अलग लगती है तंचोई साड़ी और ये झाड़ियों या पेड़ की शाखाओं जैसा भी प्रतीत होता है। मुशब्बर डिजाइन जो है अक्सर जंगल या प्रकृति की हरियाली से जुड़ी है। तो तंचोई जो वस्त्र है वो चटक रंगों से बुने जाते हैं और बुनाई की तकनीक में कई रेशमी धागों का उपयोग होता है। ब्रोकेट की साड़ियां होती है ना, उसी तरह ब्रोकेट की तरह तंचोई भी साटन बेस को ढकने वाले रंगीन बाने के रेशमी धागों के एक अतिरिक्त सेट का उपयोग करके बनाया जाता है जिससे विशिष्ट और अनूठे पैटर्न भी बनते हैं।
1: बिल्कुल, और तंचोई साड़ियों में डिजाइन हमेशा उड़ते हुए पक्षियों, फूलों की मालाओं के बीच बैठे मुर्गों की आकृतियों से सजे होते हैं जो पूरी साड़ी पर फूलों और फूलों से भरी टोकरियों से घिरे रहते हैं। कभी कभी पल्लू पर मोर, टोकरियां, फूलों के गुच्छे या शिकार के दृश्य अधिक सघनता से बनाए जाते हैं। तंचोई रेशमी साड़ियों को कुछ मोहक मनमोहक पुष्प, ज्यामिति और पैसले डिजाइन से भी सजाया जाता है।
0: हाँ, बहुत ही अजीब सी एक क्लासिक डिजाइन होती है तंचोई साड़ियों में और अधिकतर डिजाइन जो है चीनी मूल की होती है लेकिन बुनकर जो है अनूठी कलाकृतियां बनाने के लिए भारतीय रूपांकनों को इसमें शामिल कर लेते हैं। और तंचोई साड़ियों पूरे देश में औपचारिक अवसर जो है या विवाह समारोह के अवसर है

0: यह त्योहार है हमारे, उसमें बहुत ही प्यार से बहुत ही खुशियों के साथ पहनी जाती है, शौक के साथ पहनी जाती है। और तंचोई रेशम की साड़ियां अपने कपड़े की वजह से शरद ऋतु यानी सर्दी की ऋतु में और सर्दियों के ठंडे महीनों में पहनने के लिए एक अच्छी साड़ी हो सकती है। तो आरती, मैं तो अपनी सखियों से भी कहना चाहूंगी, अगर उनके पास तंचोई साड़ी है तो हमें बताइए किस रंग की तंचोई है और उन्होंने इसे कब और कहां पहना, और नहीं तो उनके पति देव बता दे कि उनकी पत्नी ने तंचोई साड़ी खरीदने के लिए कितना दिमाग खराब किया होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो लिखिए हमें फटाफट और बताइए तंचोई साड़ी से जुड़ा कोई आपका अनुभव है हमारी सखियों और सखाओं का। हाँ, तो हमसे शाम मिश्री करें।
1: बिल्कुल, तब तक हम गीत सुनते हैं।
0: गीत सुनते हैं।

0: ये बात तो हम करने वाले हैं कि भाषाओं से जुड़े संस्कार क्या हैं,
1: जी
0: है ना। तो सबसे पहले हमें जानना होगा आरती कि भाषा क्या है।
1: भाषा क्या है?
0: तो भाषा एक साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर, लिखकर या संकेतों के द्वारा अपने मन के भावों को, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ये समाज में एक दूसरे की बात समझने और समझाने का सबसे मुख्य माध्यम है भाषा।
1: बिल्कुल। और हम लोगों ने कहा था कि अपने श्रोताओं से कि आप बताइए कितनी भाषाएं जानते हैं। तो एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि मुझे कम से कम 25 भाषाएं आती हैं। इससे मैं इससे अधिक भाषाओं को भी जानता हूं, मुझे 25 भाषा आती है, लेकिन सबसे जो भाषा अच्छी लगती है, जो सबसे खूबसूरत है, तो वो प्यारी भाषा है हिंदी भाषा। और हिंदी भाषा के बराबर उनको, मतलब वो उनको बहुत अच्छी लगती है हिंदी बोलना। वैसे वो 25 भाषाओं को जानते हैं।
0: हाँ, लेकिन आपने 25 भाषाओं के नाम नहीं लिखे। आप बताइए हमें कि आपको कौन सी 25 भाषाएं आती हैं, और उसके थोड़ा सा बताइए कैसे आपने सीखी। इतनी भाषाएं सीखना आसान नहीं होता है, क्योंकि आप जब अपने विचार हम तक भेजेंगे, अपना अनुभव हमसे साझा करेंगे, तो हो सकता है हम भी आज भी कोई भाषा सीखने के लिए चाहत हमारे मन में आ जाए, जिसका हमें डर होता है कि अरे भाई,
1: और कोई आसान तरीका भी हो
0: हमें मिल जाए। तो आप थोड़ा सा बताइए कि आपने कौन कौन सी 25 भाषाएं सीखी हैं और किस तरह से सीखी हैं, और उनका आपके जीवन में कहां कैसे उपयोग हो रहा है, इस पर थोड़ा सा बताइए। तो सबसे बड़ी बात थी आज हम बात करने वाले हैं कि भाई भाषाओं से जो जुड़े संस्कार हैं वो क्या हैं। तो आरती, क्या कभी हमने सोचा है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बोले जाने वाली जो भाषाएं, हजारों भाषाएं, एक दूसरे से इतनी भिन्न क्यों हैं? है ना, देखने और सुनने में भले ही बिल्कुल अलग लगे, लेकिन हाल ही में एक अध्ययन हुआ, शोध हुआ, उसमें चौंकाने वाला खुलासा सामने आया कि चाहे भाषा कोई भी हो, उनकी बुनियादी संरचना और उन्हें गढ़ने वाले जो नियम है वो आश्चर्यजनक रूप से एक समान है।
1: जी बिल्कुल। और साथ ही ये समानता इसलिए है क्योंकि इन सभी भाषाओं की उत्पत्ति हमारे मस्तिष्क की एक ही प्राकृतिक कार्य प्रणाली से हुई है। और यानी हम मनुष्य चाहे पृथ्वी के किसी भी कोने में क्यों न रहें, हमारे सोचने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मूल तरीका एक ही गहरे सांचे में ढला हुआ है। यानी अगर हमें दुख होगा तो हम रोएंगे, हमारे आंसू निकलेंगे, चाहे वो कोई अमरीका में रहने वाला हो, चाहे वो हिंदुस्तान में रहने वाला हो। ये खोज साबित करती है कि हमारी बोलियां भले ही अलग हो, लेकिन हम सभी भीतर से एक ही मानवीय सूत्र से जुड़े हैं।
0: बहुत गहरी बात है आरती, अगर हम इसे समझ पाए तो कितनी बड़ी बात है कि हम भीतर से एक मानवीय सूत्र से जुड़े हुए हैं, है ना। और भाषा का जो सीधा संबंध है वो संस्कार और सभ्यता से होता है। हम अपनी भाषा के संस्कार भूलते अगर जा रहे हैं तो गलत बात है। इसी संदर्भ में भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के शब्दों का अगर हम यहाँ उल्लेख करते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं अच्छा वैज्ञानिक इसलिए बना क्योंकि मैंने गणित और विज्ञान की शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त की।
1: बिल्कुल, जो वो भाषा जानते थे उसमें समझते समझ आता है ना, जिस तरीके से जिस भाषा को जानते हैं।
0: कितनी बड़ी बात है। और हमारे मन में क्या रहता है कि अगर हमने अंग्रेजी भाषा नहीं सीखी तो हमने कुछ भी नहीं सीखा, है ना। हम मॉडर्न नहीं कहलाएंगे, हमें सम्मान नहीं मिलेगा या हम विकास नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतने बड़े वैज्ञानिक और राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मैंने अपनी मातृभाषा में गणित और विज्ञान की शिक्षा ली।
1: सीखिए, आप जितनी भाषाएं हो सकते हैं उतनी सीखिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, जब हम सीखना शुरू करते हैं भाषाओं को अलग अलग, तो हमारा जो मस्तिष्क का वो हिस्सा है ना, एकदम से वो एक्टिव हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: और उसके बाद ना वो हमारा जो दिमाग है बहुत शार्प हो जाता है, जिसकी वजह से हम अच्छे से और भाषाओं को सीख पाते हैं, हम और चीजों को अपने अच्छे तरीके से कर पाते हैं।
0: बिल्कुल, आपने देखा होगा कई लोग शौक या फ्रेंच भाषा सीखते हैं, उनका जीवन में उपयोग नहीं होता है, लेकिन शौक होता है कि मैं भाषा सीखता हूँ।
1: बिल्कुल।
0: तो आप किसी भी भाषा के ज्ञाता हूँ, किसी भी भाषा को सीखते हूँ, लेकिन मन में हीन भावना नहीं रखनी चाहिए कि मुझे वो भाषा नहीं आती है तो मुझे कुछ नहीं आता है।
1: जी बिल्कुल। और भाषाएं केवल संवाद का माध्यम में नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, संस्कारों, जीवन मूल्यों और पहचान की सच्ची संवाहक हैं। मातृभाषा हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है और अगली पीढ़ी तक पारंपरिक ज्ञान और संस्कार पहुंचाने का काम करती है।
0: बिल्कुल। और आज के दौर की अगर हम बात करें, हमारी युवा पीढ़ी की बात करें, तो सोशल मीडिया के प्रचलन के कारण भाषा का प्रयोग थोड़ा शॉर्टकट में होने लगा है, जो कि गलत भी है ना, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि शुद्ध भाषा ही समाज के संस्कार के विकास की रीढ़ होती है। और ऐसे में युवा पीढ़ी को भाषा का सही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट भाषा आदत जो है सोशल मीडिया में काम तो आ जाती है, लेकिन जब ये आदत जीवन में आ जाती है आरती, तो इसका नुकसान परीक्षाओं से लेकर कई मंचों पर आपको झेलना पड़ता है, क्योंकि वहां आपके पास अच्छे शब्द और व्याकरण का अकाल पड़ जाता है।
1: बिल्कुल। और एक शोध बताता है कि जो ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी सीखने की जो क्षमता होती है वो जीवन भर बनी रहती है। जरूरी नहीं कि हम इस साल इतने इतने साल के हो गए अब हम क्या सीखेंगे,
0: हाँ,
1: ये कभी मत मन में लेकर
0: आप जब तक आपकी अंतिम सांस है आप सीख सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: चाहत आपके अंदर होनी चाहिए
1: जी। और साथ ही जो व्यस्क सीखना

0: जारी रखते हैं उनमें डेमेंशिया जो होता है मनोभ्रंश वो उसका जोखिम जो होता है वो 46% तक कम होता है। और सीखना केवल शिक्षा नहीं है, ये मन की औषधि है। यानी पढ़ना सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, पढ़ना जिंदगी को जीवित जिंदा रहने के लिए जरूरी
1: क्या
0: है।
1: बात है, कितनी बड़ी बात है कि केवल डिग्रियां हम धारण कर लेते हैं, मैं डबल एमए हूँ, ट्रिपल एमए हूँ, मैं पीएचडी हूँ, है ना, मैं एमफिल हूँ, ये अच्छी बात है। डिग्रियां लेते हैं आप, पढ़ते हैं, विद्वान बनते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों पर हम जाते हैं, वो तो है ही जिंदगी का, लेकिन इसके अलावा पढ़ना जो है वो जिंदगी को जीवित रखने के लिए कितना जरूरी। इसलिए आपने देखा होगा बहुत जो साहित्यकार है ना वो लिखते रहते हैं अंत तक, उनके लिए कहानी लिखना, उपन्यास लिखना, कविता लिखना जिंदा रहने का माध्यम होता है।
0: बिल्कुल, आप कुछ नहीं तो डायरी लिखना शुरू कर दीजिए, आप खुद ही अपने आप को आपको लगेगा कि यार ये कितना अच्छा लिखने लगा हूं मैं।
1: जो भीतर बदलाव आता है वो कितना सुंदर होता है ना, ये सबसे बड़ी बात है। तो देखते तो हम सभी चीजें हैं आरती, प्रकृति को आप भी देखती हैं, मैं भी देखती हूँ, लेकिन आप प्रकृति को किस अंदाज में देखकर क्या लिखती है
0: सबका नजरिया अलग
1: मायने रखता है ना। तो भाषाओं को सीखना जारी रखना चाहिए, एक ऐसा निर्णय हमें लेना चाहिए कि हम भाषाएं सीखेंगे, क्योंकि ये हमारे संवाद कौशल को भी बढ़ाता है और मानसिक क्षमता में वृद्धि भी करता है, और एक से अधिक भाषाएं जानना रोमांचक यात्रा अवसरों के द्वारा द्वार आपको खोल सकता है। आप कहीं भी जाएंगे अगर आपको वहां की भाषा आती है तो आपको उस यात्रा के मजे दोगुने हो जाएंगे।
0: बिल्कुल, वहां से आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं आराम से, जैसे कि हम गए थे तो हमने बात करी वहां ब्रिज भाषा में।
1: कितना अच्छा लगा,
0: बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। फिर अगर आप जब उनसे उनकी भाषा में बात करते हैं ना तो और जुड़ जाते हैं आपसे कि अच्छा ये तो हमारी भाषा बोल रहे हैं।
1: तो अपने करीब पाते हैं ना आपको,
0: बिल्कुल
1: ये हमारे ही लोग हैं, और भाषा एक दूसरे को जोड़ती है,
0: बिल्कुल जोड़ती है। और इन संवादों से स्थानीय संस्कृति और परंपराओं के बारे में ज्ञान और समझ गहरी होती है। भाषा सीखने से लोगों को अन्य संस्कृतियों से परिचित होने का अवसर मिलता है। इससे किसी संस्कृति के अनूठे दृष्टिकोण, बारीकियों और इतिहास, उनके जो इतिहास की जो समझ है वो बढ़ती है, और हम विभिन्न संस्कृतियों को पहचानते हैं और उनका सम्मान करना सीखते हैं।
1: क्या बात है, तो यानी कि भाषा हर कीमत पर हमें सीखनी चाहिए, अपनी मातृभाषा के अलावा हमें जितनी भाषाएं हम सीख सकते हो
0: बिल्कुल
1: हमें सीखनी चाहिए। इसके लिए प्रेशराइज नहीं होना, प्रेशर नहीं पालना,
0: बिल्कुल,
1: लेकिन शौक रखना चाहिए,
0: अपने मन से सीखिए। आपको खुद अच्छा लगेगा कि मैं कितने अच्छी तरह से नए नए शब्द मुझे पता चल रहे हैं, नई नई चीजें,
1: आपकी वोकैबुलरी बढ़ती है, आपका व्याकरण सुधरता है, आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कहने का दम रखते हैं। किसी मंच से जब आप अपनी बात रखते हैं तो वो भाषा ही आपके काम आती है, वो शब्द ही आपके काम आते हैं और आपकी पर्सनैलिटी को दोगुना कर देते हैं।
0: जी, जब कोई जब कहता है ना कि मुझे इतनी भाषा आती तो हम सच में एकदम से कहने लगते कैसे इतनी भाषा बोल लेते हैं,
1: चौंक जाते हैं, और हमारी दृष्टि में उसके प्रति सम्मान और बढ़ जाता है,
0: बढ़ जाता
1: देखने
0: है।
1: का जो नजरिया है वो एकदम बदल जाता है जब हमें कोई बताता है कि वो इतनी भाषाओं का ज्ञाता है। तो भाषा इतना मायने रखती है जिंदगी में, और इस भाषा को शॉर्टकट मत अपनाइए, इस भाषा को विकृत मत कीजिए, है ना, भाषा को शुद्ध तरीके से जानिए। कभी कभार मजाक में हमने कोई शॉर्टकट इस्तेमाल कर लिया वो एक अलग बात है, लेकिन भाषा से तोड़ मरोड़ अच्छी नहीं होती।
0: बिल्कुल,
1: तो ये गीत सुन ले।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: घटा लाई क्या छुपा के, घटा लाई क्या छुपा।

0: हाँ तो मंदाकिनी जी, जब हम जब बात कर रहे थे मधुमक्खियों की, तो उसपे एक शोधा जो है उन्होंने हमें लिख के भेजा है अपने उनके साथ में जो घटना हुई वो लिख के भेजी उन्होंने। तो वो लिखती हैं कि जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी तब मेरा छोटा भाई, जो मुझे लगभग 6 साल छोटा है, मेरे साथ स्कूल में खेल रहा था। हमारे गाँव के स्कूल में पीपल के बड़े बड़े पेड़ थे और उन पेड़ों पर मधुमक्खियों के विशाल छत्ते लगे रहते थे। खेलते समय किसी ने शरारत में एक छत्ते पर पत्थर मार दिया, इसके बाद मधुमक्खियों ने अचानक हमला कर दिया और मेरे छोटे भाई को कई मधुमक्खियों ने काट लिया और उसके बाद उसके पूरे चेहरे, हाथ पैर में बहुत ज्यादा सूजन आ गई। हालत इतनी खराब हो गई कि उसे उल्टियां भी होने लगी। उस दिन का दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने आ जाता है और मैं अंदर से डर जाती हूँ।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और क्योंकि आपने उनको छेड़ दिया ना, जब आप किसी को छेड़ोगे तो वो भी तो अपना कुछ ना
0: वो
1: कुछ
0: तो उनको तो लगेगा ना कि हम पे हमला हो रहा है, तो
1: वो भी तो सुरक्षा महसूस करती है ना। इस बात को हम नहीं समझ पाते, हमें लगता है मधुमक्खी तो भी काट लेती है, लेकिन वो क्यों काट रही है
0: जी,
1: उसके पीछे का लॉजिक समझ आया ना, आपने पत्थर मारा और उसने पलट कर बदला ले लिया।
0: बिल्कुल,
1: तो हमें इस बात का बचाव करना है कि पत्थर नहीं,
0: पानी पे भी अगर आप पत्थर मारेंगे तो उछल के
1: उछल कर आप पर आएगा, आप कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो उछल कर आप पर आएगा। तो ये कहने का मतलब है कि आप कहीं भी किसी भी तरह की कोई शरारत जब करते हैं, प्यारी शरारत करिए, मीठी शरारत जैसे हम करते हैं, लेकिन गलत तरीके से जब हम काम करते हैं तो उसके थोड़े से दुष्परिणाम,
0: और ये बहुत खतरनाक भी हो जाता है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा काट लिया तो बहुत ज्यादा अगर जहर फैल जाता है ना तो जान भी बनाती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, ततैया होता है, मधुमक्खी होती है, सांप है, इन सब अपना रास्ते जा रहे हैं, अगर आपने इनको छेड़ दिया।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे ही ततैया भी बहुत बुरा काटता है, ये रंग का होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं बैठ जाता है और अचानक आकर आप पर हमला कर देता है।
0: बिल्कुल,
1: है ना। तो चलिए भाषा पर बात कर रहे थे, तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि भाषा केवल विचारों के आदान प्रदान का माध्यम नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, जीवन मूल्यों और संस्कारों की संवाहक है। हम जिस परिवेश और भाषा में बड़े होते हैं उसी से हमारे आचरण, शिष्टाचार और सोच का निर्माण होता है। मातृभाषा हमें अपनी जड़ों से जुड़े रखती है, सिखाती है कि बड़ों से बात करते समय आदर सूचक शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है।
0: जी, और एक श्रोता जैसे हमने पूछा था ना कि कितनी भाषा आती है, तो एक हमारी श्रोता जो लिखते हैं कि मुझे इंग्लिश, हिंदी और प्यार की भाषा बोलनी, लिखनी और पढ़नी आती है।
1: हाँ।
0: और सिंधी भाषा सिर्फ बोलनी आती है, संस्कृत भाषा लिखनी और पढ़नी आती है, और सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्मपत्नी मेरे से एक कदम आगे हैं, उन्हें इंग्लिश, हिंदी, सिंधी और प्यार की भाषा पढ़नी, लिखनी और बोलनी आती है, और संस्कृत भाषा लिखनी और पढ़नी आती है। बहुत बहुत ही ज्यादा भाई ज्ञानी है फिर आपकी पत्नी तो।
1: चलिए अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपने कहा प्यार की भाषा, जो मोहब्बत है ना,
0: बहुत बड़ी भाषा है,
1: सबसे बड़ी बात है। भाषाएं तो आपने सीख ली, लेकिन अगर आपके भी जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है।
0: जी, और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे हिंदी के अलावा गुजराती और इंग्लिश आती है और गुजराती सीखना आसान रहा। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत पंजाबी और सिंधी आती है, वैसे 2-3 और भाषा थोड़ी थोड़ी समझ भी सकती हूँ। बहुत अच्छी बात है, कितने देखिए तभी कह रहे श्रोताओं के जो विचार है ना, वो विचार इस वजह से भी है कि उनको तरह तरह की भाषाओं का, शब्दों का, व्याकरण का ज्ञान है।
1: बिल्कुल,
0: तो वो जो उनके अंदर चीजें ना, वो विचार सामने आते हैं।
1: बिल्कुल, देखिए यही हम जानना भी तो चाहते हैं कि हमारे श्रोता क्या विचार अपने रखते हैं अपनी भाषाओं को लेकर, अपने विचारों को, जो उनके विचार हैं जिंदगी में। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भाषाओं का संसार अत्यंत विशाल है, विविधतापूर्ण और जीवंत है। वर्तमान में दुनिया भर में लगभग 7,000 से अधिक जीवित भाषाएं बोली जाती हैं और ये न केवल संवाद का साधन है बल्कि संस्कृतियों, इतिहास और मानव पहचान को जीवित भी रखती हैं। और बाकी जैसा आपने लिखा कि वो लिखते हैं गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, सिंधी, 2-3 भाषाएं थोड़ी थोड़ी समझती भी हैं और बोलती भी हैं, तो बहुत अच्छी बात है।
0: जी।
1: बिल्कुल, और
0: एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि भाषा किसी भी समाज की संस्कृति का दर्पण होती है, हमारी मातृभाषा ही हमें बड़ों का आदर करना सिखाती है, जैसे कि आप कहकर बुलाना, छोटों को प्यार देना और अतिथि देवो भव जैसे सामाजिक मूल्य सिखाती है, और साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं और मातृभाषा में जो अपनापन और आत्मीयता होती है वो किसी अन्य विदेशी भाषा में संभव नहीं है। यही जुड़ाव हमें अपनी पारिवारिक जड़ों से बांध कर रखता है और हमारी भाषाएं विशेष रूप से संस्कृत और हिंदी वेदों, उपनिषदों और पुराणों का ज्ञान समेटे हुए हैं। ये ग्रंथ हमें जीवन जीने की सही कला, नैतिकता और कर्म के

0: शांत भी सिखाते हैं।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हमें किसी भी भाषा के बारे में कोई भी नकारात्मक टिप्पणी नहीं करनी।
0: भाषा भाषा है,
1: विदेशी भाषा ऐसी है या देशी भाषा,
0: अगर आपको वो भाषा नहीं आएंगी तो अगर आपको कहीं बाहर जाना है या कोई बाहर से कोई हमारे अतिथि आता है तो हम उससे बात कैसे कर पाएंगे।
1: चलिए आपको भाषा नहीं भी आती, आप नहीं भी सीख पाए, लेकिन भाषा भाषा है, हमें हर भाषा का,
0: भाषा कभी बुरी नहीं,
1: हमें वैश्विक भाषाएं जितनी भी हैं उन सभी का सम्मान करना चाहिए।
0: जी
1: एक गाना सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: हाँ तो आरती भाई, हमारे श्रोताओं ने तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात कही कि किस तरह से भाषाओं से जुड़े संस्कार हमारे काम आते हैं, और इसी के साथ हमने एक और सेगमेंट रखा उनके लिए कि शब्द हमारा और विचार आपके, और आज का विषय था सद्भावना।
1: तो उस पर भी बहुत सारे हमें कमेंट्स में आए हैं। तो एक श्रोता है जो लिखते हैं कि सद्भावना का अर्थ है अच्छी भावना, शुभ विचार या भलाई की चाह, और इसका मतलब किसी व्यक्ति या समाज के प्रति प्रेम, सहानुभूति, सहयोग और निष्पक्ष रहने का सच्चा इरादा रखना है जिसमें कोई द्वेष या स्वार्थ ना हो।
0: बिल्कुल सही लिखा। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सद्भावना यानी अच्छी नीयत, दूसरों के प्रति शुभ भावना और परोपकार। जब किसी व्यक्ति के मन में दूसरों के लिए प्रेम, दया, सहानुभूति और सहयोग की भावना होती है तो वो किसी का बुरा नहीं सोचकर उसकी भलाई चाहता है तो उसे सद्भावना कहते हैं। और साधारण बोलचाल में किसी के साथ निष्पक्ष और मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना जिसमें कोई छल, कपट या द्वेष न हो, सच्चाई और ईमानदारी का इरादा, बिना किसी को धोखा देने के भाव से कोई कार्य करना इसमें आता है।
1: बिल्कुल। और श्रोता है जो लिखते हैं कि सद्भावना का अर्थ है अच्छी भावना, अच्छे और उच्च विचार। मन में बसने वाली वो सुंदर भावना है जो प्रेम, सम्मान और अपनापन बढ़ाती है। जहां सद्भावना होती है वहां रिश्तों में मिठास, समाज में शांति और जीवन में खुशी बनी रहती है।

0: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि सद्भावना जीवन को सरल और रिश्तों को मधुर बनाने का एक महत्वपूर्ण मानवीय गुण है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज के समय में जहां समाज में विभाजन और असहिष्णुता बढ़ रही है, वहां सद्भावना की प्रासंगिकता बहुत अधिक है। ये विभिन्न संस्कृतियों और विचारधाराओं को आपस में जोड़ने का काम करती है। वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी धरती ही परिवार है, इस भारतीय सोच सद्भावना पर ही टिकी है। ये जो भारतीय सोच है इसी सद्भावना पर टिकी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध और विवादों को सुलझाने के लिए देशों के बीच में भी सद्भावना का होना अनिवार्य है।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो ईर्ष्या, द्वेष और स्वार्थ से मुक्त होती है और मानवता, प्रेम, करुणा और भाईचारे को बढ़ावा देती है। सद्भावना केवल एक नैतिक गुण नहीं है बल्कि एक शांतिपूर्ण और प्रगतिशील समाज के निर्माण की बुनियादी जरूरत है। जब हमारे विचार शुद्ध होंगे तभी समाज का कल्याण संभव है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी तो हमने ये भी जानना चाहा था कि आपके अंदर सद्भावना कितनी है, ये भी बताइएगा। लिखा है हमारे श्रोताओं ने कुछ आरती, ऐसा कोई विचार आया है किसी का?
1: अभी तो सबने यही चीज लिखी है कि सद्भावना के जो अर्थ है
0: वो क्या है। हाँ, वही एक श्रोता लिखते हैं कि सद्भावना अच्छे विचार, दूसरों के प्रति भलाई की भावना, प्रेमपूर्ण व्यवहार, और ये किसी के मन में दूसरों के लिए ईर्ष्या, द्वेष या बैर का भाव नहीं रखकर आपसी भाईचारा और सहयोग बनाए रखने की एक स्थिति है। और सद्भावना जीवन को सरल और रिश्तों को मधुर बनाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानवीय गुण है।
1: बिल्कुल। एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि जहां सद्भावना होती है वहां झगड़े कम और प्रेम अधिक होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सद्भावना अपनानी चाहिए। और उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि यदि हमारे पड़ोसी पर कठिन समय आए तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए।
0: ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, पर आपने ये नहीं लिखा कि क्या ऐसा कोई कठिन समय आपके पड़ोसी पर आया था और आपने कोई उनकी सेवा की थी, है ना, ध्यान दिया था उनका। ये भी लिखते तो हमें अच्छा लगता। वही एक श्रोता लिखते हैं कि दूसरों के प्रति मन में स्नेह, आदर और सहानुभूति रखना ही सद्भावना है। इसमें जाति, धर्म या वर्ग के भेदभाव के बिना सभी के कल्याण की कामना होती है और समाज में आपसी भाईचारे और शांति को बनाए रखने के लिए ये बहुत मूल्यवान है।
1: जी बिल्कुल। और आप हमें गीत सुन लेते हैं?
0: अब मूल्यवान तो एक गीत ही है
1: जी।

पीठा की रेसिपी क्या है, तो वो दाल पीठा बिहार और उत्तर प्रदेश का व्यंजन है जिसमें जो चावल के आटे और दाल आमतौर पर चना मूंग और उड़द से बनाया जाता है, भाप में पके होने के कारण ये बेहद स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट होता है। उन्होंने बताया इसके बारे में, और इसमें उन्होंने कहा है कि इसे भाप में पकाया जाता है जिसमें तेल या घी का उपयोग ना के बराबर होता है। सर्दियों के मौसम में विशेषकर पौष के महीने में बिहार के घरों में बड़े चाव से बनाया जाता है। पुजही पीठा सिर्फ दाल से ही नहीं, तरह तरह के भरावन, भूनी मूंगफली, तिल, मावा, गुड़, नारियल, इन सब चीजों से बनाया जाता है। और इन्होंने जो ठेकुआ है उसकी भेजी है रेसिपी, तो उसमें गेहूं का आटा चाहिए 2 कप, गुड़ 1 कप और बारीक कटा हुआ कद्दूकस किया हुआ होना चाहिए गुड़, घी मोयन के लिए 3-4 बड़े चम्मच सूखी नारियल, 2-3 बड़े चम्मच बारीक कटा या कद्दूकस किया हुआ होना चाहिए, और सौंफ 1 छोटा चम्मच, इलायची पाउडर 1 छोटा चम्मच होना चाहिए, आधा छोटा चम्मच, और पानी और 1/2 कप गुड़।

0: हाँ तो आरती, अब हम कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी सोपान तक पहुंच चुके हैं और अब हमारे श्रोता या क्या कर रहे हैं, व्यंजन की
1: बिल्कुल,
0: प्रतीक्षा।
1: और हम बता देते हैं उनको दाल

0: और अर्थ से बनाया जाता है। भाप में पके होने के कारण ये बेहद स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट होता है, उन्होंने बताया इसके बारे में। और इसमें उन्होंने कहा है कि इसे भाप में पकाया जाता है जिसमें तेल या घी का उपयोग ना के बराबर होता है। सर्दियों के मौसम में विशेषकर पौष के महीने में बिहार के घरों में बड़े चाव से बनाया जाता है। पुजही पीठा सिर्फ दाल से ही नहीं, तरह तरह के भरावन, भूनी मूंगफली, तिल, मावा, गुड़, नारियल, इन सब चीजों से बनाया जाता है। और इन्होंने जो ठेकुआ है उसकी भेजी है रेसिपी, तो उसमें गेहूं का आटा चाहिए 2 कप, गुड़ 1 कप और बारीक कटा हुआ कद्दूकस किया हुआ होना चाहिए गुड़, घी मोयन के लिए 3-4 बड़े चम्मच सूखी नारियल, 2-3 बड़े चम्मच बारीक कटा या कद्दूकस किया हुआ होना चाहिए, और सौंफ 1 छोटा चम्मच, इलायची पाउडर 1 छोटा चम्मच एक होना चाहिए, आधा छोटा चम्मच, और पानी और आधा कप गुड़ पिघलाने के लिए, और फिर तेल या घी तलने के लिए, और आवश्यकता अनुसार बनाने की विधि है। एक गुड़, पहले आप गुड़ का पानी तैयार करें, एक बर्तन में गुड़ और आधा कप पानी डालकर धीमी आंच पर पिघला लीजिए उसको गुड़ को, और चाशनी नहीं बननी चाहिए उसकी, सिर्फ गुड़ को पानी में घुलने देना है, और इसे ठंडा होने दीजिए, और फिर छलनी में इसे छान लीजिए, जो भी गंदा होगा वो निकल जाएगा। आटे का मिश्रण बनाएं, एक बड़े कटोरे में गेहूं का आटा लें, उसमें सूजी कुरकुरेपन के लिए सौंफ, इलायची पाउडर और कसा हुआ नारियल डालें, मोयन डालें। अब आटे में 3-4 चम्मच पिघला हुआ घी डालें, आटे को दोनों हाथों से अच्छी तरह से रगड़ें, जब आटा मुट्ठी में बंधने लगे तो समझ लीजिए मोयन जो है वो एकदम सही है। अब आटा गूंद लीजिए और छने हुए गुड़ के पानी को थोड़ा थोड़ा डालकर सख्त आटा गूंदना है, इसका मुलायम नहीं होना चाहिए, इसे ज्यादा मुलायम नहीं करना है। और आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाइए और सांचे पर थोड़ा सा तेल लगाकर लोई को दबाएं और मनचाहा डिजाइन बना लीजिए। अगर सांचा ना हो तो हाथ से भी आप कांटे की मदद से भी बना सकते हैं, और धीमी आंच पर तल लीजिए आपका जो तेल में या घी में, तो सुनहरा होने तक तल लीजिए, फिर आराम से निकाल के खाइए।
1: तो आपने इतनी जल्दी में बताया है मुझे, तो भाई आरती बनाना आया ही नहीं है, मुझे लगता है हमारे श्रोता जिनको ठेकू और दाल पीठा बनाना आता है वो आराम से बनाएंगे।
0: बिल्कुल, और रेसिपी आपको वहाँ फेसबुक पेज पे मिली जाएगी,
1: मिल जाएगी, तो बनाने की मैं भी
0: समय की कमी की वजह से हमें थोड़ा सा जल्दी है वो
1: बताना पड़ा। तो चलिए अब सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और
0: आरती श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत, नमस्कार। सखी सहेली की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। जिंदगी के डर, जिंदगी की उदासी और जुल्मतों को वो अपनी लेखनी में पिरो देते हैं। घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। जिंदगी की नाकामियां, उदासियां और विडंबनाएं भी राजेश रेड्डी की लेखनी में नजर आती हैं। जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। राजेश रेड्डी वो शायर हैं जिन्होंने बड़ी ही मशहूर गजल लिखी जिसे पंकज उधास ने गाया। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। कई वर्षों तक राजेश रेड्डी विविध भारती के हेड रहे। उन्होंने विविध भारती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाने माने शायर और विविध भारती के हमारे पुराने साथी राजेश रेड्डी विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस और विविध भारती पूरे परिवार को। इस पूरे परिवार से बरसों बाद 13-14 साल बाद एक मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और विविध भारती के श्रोताओं से भी इस बहाने मिलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस विविध भारती परिवार को।
0: मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो जमाना लौट आया जब आप विविध भारती के मुखिया हुआ करते थे और ढेर सारे काम हम लोग मिलकर एक साथ किया करते थे।
1: जो वो बहुत प्यारा जमाना था और एकदम तुमसे मिलके और विविध भारती में आने के बाद वो जमाना फिर एकदम तरोताजा हो गया। और वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो उमंग और श्रोताओं के साथ वो लगाव एकदम आंखों के सामने आ गया। जी खुश हुआ जी।
0: क्या बात है सर, बातें हो रही हैं जयपुर के जमाने की और आपने बताया कि न केवल आपने नाटक किए बल्कि वहां एक कंपोजिशन वाला मामला भी लगातार चलता रहा और अलग अलग कार्यक्रमों की अपनी योजना भी चलती रही, तो एक तरह से आपका वो रचनात्मक उत्कर्ष का पूरा दौर था। जयपुर के बाद आप यात्रा जीवन की आपको कहां ले गई?
1: जयपुर के बाद मेरा ट्रांसफर जो है 5 साल पूरे हो जाने के बाद
0: जी
1: अल्मोड़ा हुआ।
0: अरे गजब, पहाड़ों पर।
1: पहाड़ों पर। और मेरे जीवन का वो सबसे कष्टप्रद, मतलब यूं नहीं
0: जी,
1: मतलब मुझे अल्मोड़ा स्टेशन शुरू होने वाला था उस वक्त।
0: अच्छा।
1: तब तक शुरू नहीं हुआ था
0: जी।
1: जो शुरुआती स्टाफ भेजा जाता है ना, तो उनमें से मैं प्रोग्राम की तरफ से मैं था, फिर इंजीनियर्स थे, तो सेंटर तब तक शुरू नहीं हुआ था, हमको जाना था। तो लेकिन मैं मैदान पे रह इतना आदि था और होमसिक तो मैंने बताया था शुरू से था
0: जी, जी।
1: तो वो पहाड़ों की जिंदगी मेरे लिए बहुत कठिन थी, मतलब और परिवार भी था, बच्चे बच्ची छोटी थी तब। तो अब लगता है कि यार मूर्ख था कि तुम जल्दी चले आए वहां से। अच्छा था वो
0: जी,
1: वो एक अलग अनुभव था
0: जी।
1: तो एक तो यह कि स्टेशन शुरू नहीं हुआ था, काम भी उतना नहीं था, आपको सिर्फ जाना है और प्लानिंग करनी है और तो कब होगा ये सब तय होना है सारा कुछ। लेकिन वो वहां चलते चले जाओ, चलते चले जाओ,
0: हाँ।
1: उतरते जाओ, चढ़ते जाओ, तो ये सब था। और जो आदमी पहली बार गया हो तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। जो घूमने जाओ तो अलग बात है
0: जी,
1: लेकिन आपको रहना हो और जो कभी रहा ना हो,
0: हाँ,
1: कभी रहा ना हो,
0: हाँ, हाँ,
1: तो वो उसके लिए हो, तो वो कठिन दौर था। लेकिन वो गुजरा और मैं एक साल के बाद ही वापस आ गया वहां से। उसके बाद फिर बॉम्बे आया।
0: अच्छा,
1: 86 में।
0: क्या बात है। तो ये तो पंत जी का शहर था,
1: हाँ,
0: पंत जी का इलाका था, तो वो तमाम चीजें
1: और वो भी सब भी देखा हमने। वो पंत जी, अज्ञे जी वहां पर रहे और रविशंकर जी का वहां पे वो था,
0: बिल्कुल
1: ना? तो ये सब भी
0: उदय शंकर जी का
1: तो वो सब भी देखा, घुमा फिरा भी, सब अच्छा भी लगा वो सब
0: जी।
1: कि ये सब कुछ, लेकिन मैं तो हैरान होता था कि यहाँ ये लोग कैसे
0: रहते कैसे।
1: उस वक्त वाकई हैरान होता था मैं, जो लगता था कि जिंदगी तो मैदान में ही है,
0: पहाड़ों
1: में कैसे।
0: बिल्कुल।
1: तो ये था
0: मुंबई, 80 के दशक की मुंबई, बहुत ही अलग तरह का मामला था। आप जैसे जयपुर शहर से आ रहे थे क्योंकि वहां के पले बढ़े हैं, पैदाइश नागपुर के, तो मुंबई आपके लिए एक बहुत बड़ा दायरा था, बहुत बड़ा क्षितिज था। पहला अनुभव क्या था मुंबई का?
1: नहीं, पहला अनुभव तो यही था कि एक तो ये तो ये सपनों की नगरी थी
0: जी,
1: फिल्मों में देखा ही देखा था और सब कुछ था। आज तो खैर हालत ही खराब है, उस वक्त 86 में जब हम आए थे तो अच्छी खासी भीड़ तो मुंबई में हमेशा रही है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: ये भीड़ भाड़ वाला शहर है तो हर सपना देखने वाला यहाँ आता है और काम ढूंढने वाला यहाँ आता है। तो फिर यहाँ आने के बाद वो बसों का सफर, लोकल ट्रेनों का सफर, एक अलग ही दुनिया थी। लेकिन था कि कुछ लगा था कि बॉम्बे में कुछ होगा और अच्छा लगेगा और धीरे धीरे

0: आज के मेहमान कार्यक्रम में श्रोताओं, आज लीजिए सुनिए जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: राजेश रेड्डी एक जाने माने शायर जिनकी गजलों का हर शेर खरा होता है। वो लिखते हैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। राजेश रेड्डी अपने समय और समाज की आवाज भी बन जाते हैं। जुबां खामोश है डर बोलते हैं, अब इस बस्ती में खंजर बोलते हैं। राजेश रेड्डी की शायरी में जिंदगी का फलसफा छलक छलक पड़ता है। वो लिखते हैं, ये जो जिंदगी की किताब है

0: जिंदगी ढलती चली गई उस हिसाब से। हम शुरू में टॉपिल में रहे, गवर्नमेंट कॉलोनी वहां पे था, तो 11-11 महीने का जो किराया होता है उस पे वो उस पैटर्न पे रहे, और अलॉट होने का तो सॉल्यूट था, हम तो फ्रेश थे एकदम
1: बिल्कुल। और तब तो लंबी लाइनें हुआ करती थी।
0: लंबी लाइनें हुआ करती थी, तो जीजस कॉलोनी जो टॉपिल की थी वहां रहे, और फिर वहां से बस पकड़ना, फिर इधर आना टॉपिल से किंग सर्कल आना, वहां तो पैदल,
1: जी
0: फिर ट्रेन पकड़ना, फिर चर्च गेट, तो ये सब सिलसिला चलता रहा। लेकिन थोड़ा उस वक्त शुरुआत में लगा, लेकिन फिर औरों की तरह से फिर हमको भी वो जिस दिशा में उतरना उस दिशा में खड़े होने की आदत हो गई।
1: मुंबई शहर आपको अपने हिसाब से ढाल लेता
0: तो
1: है।
0: फिर वो लोग अपने आप आपको उतार देते हैं
1: जी जी
0: तो ट्रेन में ये हुआ कि उस दिशा में मुंह करके खड़े हो जाओ,
1: जी
0: उतार देंगे लोग,
1: लोग उतार
0: तो ये
1: देंगे
0: उतार
1: जी। तो मुंबई शहर में एक बड़ा आकाश आपको मिला, और जाहिर है कि उस समय तक तो कवि सम्मेलन भी हो रहे थे, रेडियो भी चल रहा था, तो जिंदगी किस तरह से बदली और यहाँ लिखने पढ़ने का दौर किस तरह से आगे बढ़ा?
0: यहाँ जो जिंदगी बदली वो मेरी उस वक्त गजल गायकी पीक
1: चरम
0: पर
1: पर
0: थी,
1: थी
0: चरम
1: जी
0: पर। फिल्म संगीत जितनी पॉपुलर थी,
1: जी
0: मतलब जगजीत सिंह, पंकज दास, मेहंदी हसन, गुलाम अली, ये सब सुपर हीरो हुआ करते थे। मतलब अनूप जलोटा, इनके कैसेट जो है घरों घरों में चलते थे, बजाए जाते थे, मोहल्लों में मतलब चलते थे, शादियों फंक्शनों में भी ये उस वक्त चीज बजाया करते थे लोग, तो इतनी पॉपुलर नॉन फिल्म म्यूजिक कहना चाहिए। तो वो दौर था जिस वक्त मैं बॉम्बे में एंटर हुआ था, और नेचुरली जो गजल का शायर होगा उसकी पहली ख्वाहिश होगी कि जगजीत सिंह तक किस तरह से पहुंचो और
1: बिल्कुल
0: वो उन तक मेरे शब्द भी पहुंचे। तो यहां आने के बाद तो यह सिलसिला चलता रहा, और लेकिन जगजीत सिंह साहब से पहले मेरी भूपेंद्र जी से बात हुई।
1: अच्छा, अरे वाह वाह, मुझे ये पता है क्योंकि अब हमने साथ में काम किया है और मैं आपके करीब भी रहा हूं कि भूपेंद्र सिंह की आवाज से आपको बेपनाह प्यार रहा है,
0: बहुत प्यार रहा,
1: बल्कि
0: बहुत
1: हमने
0: प्यार।
1: उनको बुलाने की बहुत भरसक कोशिश की थी। आपकी इच्छा ये थी कि वो इंटरव्यू मैं लूं, तब मैं था नहीं शहर में।
0: तो भूपी जी मतलब पहले थे जिन्होंने मेरी एल्बम में जो कोई चीज, और जैसे मैं जयपुर में आकाशवाणी में युवाणी में जो अपनी आवाज पहली बार मैंने रिकॉर्ड की,
1: जी
0: तो घर में जिस ढंग से मैंने खुशी का इजहार किया था और अपने आप की आवाज को आकाशवाणी में सुनकर जो
1: जी
0: खुशी हुई थी, तो वो खुशी मुझे यहाँ पे भूपेंद्र सिंह की आवाज में अपनी गजल सुन के हुई थी।
1: क्या
0: हाँ ना,
1: बात है,
0: तो वो किसी गजल सिंगर ने और मेरे फेवरेट गजल सिंगर ने या गायक ने जो इतना बड़ा सिंगर है, तो ये हुआ। नहीं, उसके बाद फिर जगजीत जी से बात हुई तो मैं मिलना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा आ जाओ। वो
1: पेडर रोड
0: हाँ, पुष्प मिलन 25 उनका एड्रेस था, तो
1: जी
0: मैं गया और उस समय का वक्त था। तो मैं बताना चाहूंगा अपने श्रोताओं को, अपने सुनने वालों को, कि बड़ा आदमी ऐसे ही नहीं बनता है।
1: जी
0: जगजीत सिंह साहब रोज सुबह उनका वो रियाज का वक्त होता था, इतने बड़े आर्टिस्ट जो थे वो ऐसे ही नहीं थे, वो
1: जी
0: रोज रियाज करना उनका काम था। जब बॉम्बे में होते थे
1: जी
0: तो वो तानपुरा चल रहा है और वो सब कुछ, और मिलने जुलने वाले भी अगर आते हैं तो बीच में आते हैं और बातचीत होती है, और वो उनका सिलसिला फिर रियाज पे। तो ये
1: जी
0: तो मैं पहली बार गया तो वो तानपुरा चल ही रहा था, वो अपने बैठे हुए थे और फिर उन्होंने वो गजल देखी। मेरी खुशकिस्मती कि वरना अक्सर होता है कि इतने बड़े लोग आपका मिलना ही बड़ी बात थी उनसे,
1: जी
0: हाँ वो उनका मिल जाना। फिर उन्होंने कहा कि गजल देखे, तो सरसरी निगाह से जब उन्होंने देखी तो ये मेरा सौभाग्य था कि उन्होंने पहली ही उसमें कहा ये मैं कर रहा हूं।
1: वाह
0: वरना
1: वाह
0: अक्सर होता है
1: वाह
0: कि रख के जाओ, देखता हूं, मैं करता हूं, सोचता हूं, बताता हूं,
1: जी जी
0: है ना,
1: जी जी
0: लेकिन उस वक्त उन्होंने उसी वक्त कह दिया ये मैं कर रहा हूं।
1: वो कौन सी गजल थी? घर से निकले थे, ये
0: नहीं, ये जो जिंदगी की किताब
1: जो
0: है,
1: जिंदगी की किताब है। वाह वाह वाह
0: तो ये वो
1: वाह।
0: पहली गजल थी जो जगजीत जी ने गाई।
1: और भूपी जी ने क्या गाया था?
0: वो हैरानी होगी कि उस वक्त पंकज जी वगैरह सब ये शराब और हल्की फुल्की गजलों का दौर था। भूपी जी ने कहा कि यार मुझे गजलें बहुत है, मुझे हल्की फुल्की गजल चाहिए।
1: अच्छा
0: हाँ,
1: हाँ
0: तो मैंने पहली गजल जो डिमांड पे लिखी, डिमांड पे,
1: हाँ हाँ
0: वो ये गजल थी, और जिसको मैं न कहीं पढ़ाता हूँ न सुनाता हूँ,
1: जी
0: और वो गजल जो मैंने कभी आज तक छुई नहीं,
1: अच्छा,
0: वो गजल शराब पड़ती तो वो
1: गजब।
0: गजल लेकिन उनको पसंद आई, उन्होंने गाई और चलिए।
1: जी जी जी ये जो जिंदगी की किताब है ये भी आपकी पहचान के साथ पूरी तरह से जुड़ गई है, और ये कहना चाहिए कि एक तरह से आपकी प्रतिनिधि गजल है। तो जगजीत साहब ने तो सुनाई, वो भी हम सुनेंगे, लेकिन हम आपसे भी सुनना चाहते हैं इसको।
0: ये गजल है जिसकी धुन मैंने खुद ने नहीं बनाई,
1: जी
0: तो मैं जगजीत जी की आवाज में जो धुन है, कंपोज है,
1: वही
0: उसको
1: आप
0: हाँ वो पढ़ देता हूँ एक।
1: जरूर जरूर।
0: ये जो जिंदगी की किताब सब है ये।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: क्या बात है। जगजीत जी ने जब इसे गाया और ये कैसेट रिलीज हुआ तो जाहिर है कि एक बहुत ही ख्वाब पूरा होने जैसी बात
1: बिल्कुल
0: थी
1: सही, बिल्कुल
0: और ये
1: सही।
0: बहुत लोकप्रिय हुआ। आपके जहन में क्या चल रहा था?
1: नहीं, मेरे लिए तो एक सपना सच होना जैसा तो वही बात है। और फिर जिस ढंग से इन्होंने गाया,
0: जी
1: और
0: जी
1: ये कंसर्ट्स में भी अक्सर गाया करते थे,
0: खूब
1: और सोशल मीडिया तो अब आया है, लेकिन कभी कभी मैं देख लेता हूं और लोग बताते हैं इस गजल की जो लिसनिंग हुई है, जो व्यूअरशिप है, और वो नहीं है कि पूछ, मतलब मैं तो खूब है।
0: बिल्कुल
1: और उसमें जो
0: बिल्कुल
1: कमेंट्स हैं लोगों के, ये गजल वो गजल, और ये जगजीत जी ने बहुत अच्छी गाई है, और ये वो शायरी बहुत अच्छी है, सब कुछ है, और पूरे दुनिया से, पाकिस्तान, लंदन, अमेरिका, यहाँ यहाँ से कमेंट्स हैं उस गजल पे। तो ये गजल जिसने मुझे दुनिया भर में पहुंचा दिया, यूं कह लीजिए मुझे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और जब आपको फोन करें तो आपकी
1: जी
0: रिंगटोन में भी ये गजल
1: जी जी
0: बजती है। जगजीत जी ने गा लिया, भूपी जी ने गा लिया, पंकज जी ने भी उस दौर में गा लिया था
1: पंकज जी उसके बाद
0: जी।
1: ये गजल जगजीत जी ने गाई, उससे पहले पंकज जी, हाँ नहीं, पंकज जी पहले थे, ये गजल थी वो जो यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होना सर, तो पंकज जी से भी जब मिला तो खुश हुए। और ये गजल पहली नजर में सबको ही अलग लग जाती है कि ये होने से डरता है ना। तो इस गजल से जुड़ा एक और भी किस्सा कि ये गजल जब आई तो मतलब उस पूरे एल्बम में ये अलग सी गजल थी, लोगों ने बहुत पसंद की सब
0: नबील
1: जगह।
0: था,
1: हाँ,
0: नबील था
1: नबील, नबील,
0: जी।
1: तो इसकी खूब लोगों ने प्रशंसा की, पसंद किया, सब कुछ किया। तो इससे जुड़े दो किस्से हैं। तो
0: जी
1: एक तो ये कि उन दिनों दूरदर्शन पर भी जब ये पूरा कमर्शियल नहीं हुआ था, तो बड़ा अच्छा सुबह कार्यक्रम आता था वो गजल का, जिसमें सुरेश वाडकर, हरिहरन, पंकज जी, कभी कभी जगजीत जी, छाया जी, बहुत अच्छा नाम था, दूरदर्शन पे आता था गजल का, आरोही। हाँ,
0: आरोही
1: तो ये गजल पंकज जी ने गाई उसमें, आरोही में।
0: जी
1: अच्छा, उन दिनों पता नहीं क्यों या नहीं हुआ, तो इसमें राइटर का नाम, शायर का नाम नहीं था,
0: अरे
1: नीचे
0: बाप रे
1: नहीं था, तो उन्होंने गा दी गजल। तो ये गजल घर घर में सुनी, मतलब उस वक्त दूरदर्शन ही था।
0: तो आपके संपर्क से गाई या उन्हें ये गजल कहीं मिली?
1: नहीं, ये तो रिकॉर्ड होने के बाद की बात है,
0: अच्छा है, ओके।
1: एल्बम आने के बाद में, उसके बाद
0: आरोही
1: इनको
0: में
1: मिटा था।
0: गाया
1: हाँ, तो ये एल्बम तो हो गया था, लोग पसंद भी कर चुके सब कुछ, तो ये दूरदर्शन पे ये गजल दिखाई जा रही थी, सुनाई जा रही थी। और उस वक्त दूरदर्शन ही था जिसमें लोग अच्छे सीरियल देखते थे, अच्छे प्रोग्राम देखते थे, आरोही बहुत पॉपुलर था, तो ये चल रहा था और लोग सुन रहे। तो मेरा एक जयपुर का दोस्त है, तो अपने परिवार में बैठ के जैसे सुनता है, तो ये जब गजल आई तो उसने कहा, यार ये पाकिस्तानी शायर क्या खा के गजल लिखते हैं।
0: आपके अपने दोस्त ने
1: हाँ,
0: ये बात
1: ये मेरे
0: कही
1: उस, और तब तक हमारा संपर्क भी नहीं था, वो है बॉम्बे में वो, लेकिन हम
0: जी
1: बहुत अरसे से नहीं मिले थे। तो
0: जी जी
1: ये पाकिस्तानी शायर क्या खा के गजल लिखते हैं, है ना।
0: ओहो
1: तो वो कल्पना नहीं कर सकता था कि ये हिंदुस्तान का शायर है और
0: जी
1: ये यही की गजल है। तो ये उसने मुझे बाद में बताया जब हम मिले और सब कुछ। तो उसका नाम है अजय कार्तिक, जो ये जो है जिंदगी का राइटर था,
0: हाँ,
1: सीरियल है
0: बिल्कुल
1: ना,
0: बिल्कुल,
1: और
0: बड़ा
1: वो
0: नाम है अजय
1: हाँ।
0: कार्तिक जी।
1: तो वो तो जब बाद में मिले तो उसने कहा कि ये यार ये गजल तो

0: हम सुन रहे थे और हमने मेरा ये कमेंट था
1: जी।
0: अच्छा दूसरी बात ये कि ये गजल पंकज दास साहब ने सूरत उनमें एक शेख अबू आदम आदम वाला को एक शायर रहे हैं गुजराती के बड़े शायर रहे हैं तो उनकी पुण्यतिथि पर सूरत में कंसर्ट था हाँ तो वो पंकज जी वहां पे उन्होंने कंसर्ट किया वहां गाने गए मजरूर सुल्तानपुरी वहां पे चीफ गेस्ट थे तो मजरूर साहब बैठे थे सामने तो पंकज जी ने ये गजल सुनाई तो फिर ये जब शेर सुनाया तो फिर मजरूर साहब ऑडियंस में बोलते हैं हाँ पंकज फिर सुनाओ तो जब जो कहते हैं ना फिर सुनाओ तो शायद मुशायरा हो या म्यूजिक का हो तो ये लगता है कुछ गलत तो नहीं हो गया।
1: हाँ बिल्कुल
0: कुछ तलफ़ुज़ गलत हो गया या कुछ मिसरा गलत हो गया या कुछ मैंने कुछ कमजारा तो नहीं कर बोल दिया या सुना दिया हाँ ये सुर का इधर उधर नहीं फिर सुनाओ फिर एक बार फिर उन्होंने तीन बार ये सुना और हाँ वाह तो ये होगा। फिर जब ग्रीन रूम में आए मजरूर साहब उनसे मिले तो बोले कि ये किसकी गजल थी ये तो उन्होंने बताया कि ये उस वक्त मैं नौजवान हुआ करता था
1: जी।
0: तो नौजवान शायर बॉम्बे के राजेश रेड्डी तो ये बहुत अच्छी गजल है अलग गजल है उसको मेरी तरफ से मुबारकबाद देना
1: वाह वाह वाह
0: तो ये मजरूर सुल्तान
1: आशीर्वाद शायर की बात
0: है ना तो इस गजल से जुड़ी एक दो बातें हैं तो ये मैं शेयर करना चाह रहा था।
1: क्या बात है पंकज जी की आवाज में ये गजल सुनते हैं हम।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: मुंबई के अपने सफर के बारे में कुछ और बातें बताइए।
1: मुंबई में फिर सफर तो मेरा ज्यादातर शायरी का ही रहा
0: जी,
1: और जगजीत जी वाला मैं सिलसिला एक और बहुत महत्वपूर्ण इंसिडेंट है वो सुनाता हूँ। उससे पहले एक मेरी शायरी और मुशायरों में कैसी वो एक सिलसिला शुरू हुआ, बड़ा सिलसिला जो है
0: जी।
1: तो नेहरू सेंटर का एक ऑल इंडिया मुशायरा होता है सालाना,
0: बिल्कुल बहुत ही मशहूर जी।
1: आज तो वो दौर नहीं है
0: जी,
1: लेकिन एक जमाना था मतलब उसके सुनने वालों में। और जब मैंने ये पहला मुशायरा पढ़ा तो उस वक्त स्टेज पे अली सरदार जाफरी
0: जी,
1: मजरू सुल्तानपुरी,
0: कैफी आजमी,
1: मुमताज राशिद और ये सब बड़े बड़े नाम है ना, बशीर बद्र, निदा साहब उसके संचालन कर रहे थे
0: जी।
1: अली सरदार जाफरी उसके वो थे सदारत कर रहे थे। और सुनने वालों में दिलीप कुमार,
0: बाप रे,
1: अजित एक्टर
0: जी,
1: और कई तो फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोग थे। तो वो दौर था जब बिहार जो नेहरू सेंटर के अलग ही हुआ करता था
0: जी,
1: हॉल खचाखच भरा हुआ। तो और मेरा पहला बड़ा मुशायरा मुंबई का,
0: क्या बात है,
1: मेरा पहला मुशायरा तो बड़ा मुशायरा। तो निदा साहब ने मुझे उसकी ओपनिंग के लिए, बल्कि यूं कह लीजिए,
0: अरे बाप,
1: तो शुरुआत के एक दो मुशायरों में।
0: और निदा साहब की अपनी अदा थी, वो बहुत रेफरेंसेस के साथ बुलाया करते थे।
1: तो उन्होंने मुझे माइक पे बुला के मेरा पहला मुशायरा और ये ऑडियंस, ये लोग
0: जी,
1: है ना, भरपूर ऑडियंस, पूरा हॉल। तो मैंने गजल पढ़ी, तो वो गजल जब पढ़ता गया तो सब हर शेर को दोबारा पढ़ना पड़ रहा, ये सब कुछ हुआ। और जब मैं पढ़ के आया हूं तो मुमताज राशिद और जफर गोरखपुरी, तो उस वक्त दाद देने का एक ये भी होता था, ये बड़े लोग जो दाद देते थे, जफर गोरखपुरी साहब मेरे बराबर में बैठे थे, मैं होता है। तो मतलब अगर किसी को बहुत अच्छा लगा, ये प्यार हुआ ना, तो मुशायरा तो हो गया।
0: अरे हाँ, हाँ, हाँ, अब तो शुरुआत कर रहे थे जब,
1: हाँ,
0: जी
1: मुशायरा तो हो गया।
0: अरे बाप रे, बहुत बड़ी बात है,
1: तो ये बड़ी बात थी
0: जी।
1: तो ये मैंने कहा था कि उधर नीरज जी का वो हार पहनाना, माला पहनाना
0: जी,
1: तो ये तो हो गया, मुशायरा तो हो गया। और ये ऐसे सुने, फिर अजीत साहब ने मुझे हैदराबाद बुलाया,
0: गजब,
1: अपने घर पर
0: जी,
1: उनसे वहां से मिलना हुआ, सुना सुनाना हुआ। तो ये हुआ, ये गजल मैं सुन जो बता रहा हूँ जिसके बारे में
0: जी,
1: ये गजल जगजीत सिंह साहब को बहुत पसंद थी।
0: हाँ हाँ,
1: और जगजीत सिंह साहब ने इसको धुन भी बनाई, रिकॉर्ड भी किया, उनका
0: हाँ,
1: आखिरी एल्बम था ये।
0: ओहो हो,
1: और वो एल्बम रिलीज होने से पहले वो नहीं रहे दुनिया में,
0: जी, जी,
1: वो चले गए
0: जी।
1: वो एल्बम रिलीज हुआ, चित्रा जी पता नहीं कब करेंगे नहीं करेंगे
0: जी,
1: तो ये गजल

0: उन्होंने गाई भी और सुनाई भी। लेकिन इस वजह से मैं एक और जो जगजीत जी के साथ जुड़ा मैं बता रहा हूँ कि मेरी दूसरी किताब पहली उड़ान
1: जी
0: और दूसरी आसमान से आगे।
1: बिल्कुल।
0: तो जब आसमान से आगे की किताब के लोकार्पण की बात हुई और मैं चाह रहा था तो मैं उनको अपने चाह रहा था कि जगजीत जी इसका कव करें। हाँ, तो मैं उनको इनवाइट करने गया और बोला कि मैं चाह रहा हूँ कि आप करें, तो इसके लिए अलग से प्रोग्राम क्यों करते हो? मेरा कंसर्ट है केयर का जो है नेहरू सेंटर में, तो उसमें कर देते हैं, तुम उसको किताब लेके आ जाना, फिर अपन कर लेंगे। तो मैं चला गया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो हुआ वो ऐसा होगा।
1: जी जी जी
0: तो किताब लेके रैपर वेपर सबके रिबन में सब लेके भी चला गया। तो मैं मिला वहां पे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम ऑडियंस में बैठो, मैं तुम्हें बुलाऊंगा और वहां उसको कर देंगे सब ठीक है। तो मैं बैठ गया, फिर उन्होंने वो गजल गाई, दूसरी गजल, जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। तो जगजीत जी ने ये गजल गाई और उसके बाद श्रोताओं से कहा कि ये गजल जो मैंने अभी गाई ये हमारे प्यारे शायर राजेश रेड्डी की लिखी हुई है और आज इत्तेफाक है कि वो हमारे ऑडियंस में मौजूद है, तो मैं चाहता हूं कि वो ऊपर आए और आज उनकी किताब का भी वो है, वो लेके आए किताब। तो फिर मैं ऊपर गया और वो नमस्ते और तक क्लैपिंग वगैरह सब कुछ हुआ, फिर जगजीत जी ने वो उसका रिबन खोला ऑडियंस के सामने, ये सब हो गया और तालियां वालियां सब हो गई और मैं स्टेज से उतरने लगा।
1: जी
0: तो बोले नहीं राजेश रुक गए, तो मैं आया तो उनका कंसर्ट है, देखिए स्टेज
1: हाँ,
0: है पूरा
1: और पूरा हॉल
0: पूरा
1: भरा
0: हॉल
1: हुआ
0: है, म्यूजिक का पूरा सेटिंग है, गा रहे हैं वो, बीच में उन्होंने बुलाया हुआ है। फिर वो उन्होंने कहा कि भाई एक माइक इधर लगाइए, स्टैंडिंग माइक दीजिए। हाँ, तो ये इसकी म्यूजिक कोई उम्मीद नहीं, कल्पना नहीं, और तो वो दिया उन्होंने कि तो अब वो गजल पढ़िए, जाने कितनी उड़ान बाकी है।
1: अरे बाप रे,
0: वो उससे पहले महफिलों में गा चुके थे, मतलब उनको पसंद थी गजल, तो सारे तो वो गजल पढ़िए जाने कितनी उड़ान बाकी। तो बात वहीं खत्म हुई, मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी।
1: जी
0: हो ये रहा है कि मैं मतलब मैंने पढ़ा शुरुआत की और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए।
1: अरे गजब।
0: ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ,
1: जी जी
0: आज
1: जी
0: तक किसी शायर के साथ नहीं हुआ,
1: गजब गजब,
0: ऐसा विमोचन और ऐसी ऐसा सम्मान, ऐसा प्यार। तो मैं पढ़ रहा हूँ और वो उसे गा रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ वो उसे गा रहे हैं,
1: अद्भुत अद्भुत
0: ये अद्भुत अद्भुत। तो और जब घर पे मैंने श्रीमती जी को बताया कि ऐसा हुआ तो वो मुझे क्यों नहीं लगे आप, मुझे
1: अरे
0: क्यों नहीं
1: बाप
0: लगे,
1: रे यार, ये
0: और
1: तो बड़ा
0: आपको
1: मिस हुआ।
0: मालूम था कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, तो मुझे दादाजी। तो ये था उनका
1: वाह,
0: प्यार, ये था उनका शायर को सम्मान देने का तरीका। तो इस गजल के साथ ये जुड़ाव है, इसलिए मैंने बताया।
1: क्या बात है, ये आपसे सुनेंगे।
0: हाँ जो

0: जाने कितनी उड़ान। और ये शेर खास तौर से यूनुस,
1: स्वागत है।
0: जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन,
1: वाह वाह,
0: जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन, अब तो बस

0: गजल का एक और शेर खास मैं सुनाना चाह रहा हूँ।
1: स्वागत है।
0: सर कलम होंगे कल यहाँ उनके,
1: वाह,
0: सर कलम होंगे कल यहाँ उनके जिनके

0: क्या बात है, क्या बात है, शानदार शानदार।
1: जी
0: विविध भारती के आपके इस दौर की बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बहुत प्यारा वक्त आपने विविध भारती में 2 बार गुजारा है। और मुझे याद है कि आपके जमाने में जो कार्यक्रम आपने शुरू किए, उसमें सरगम के सितारे उजाले
1: उनकी

0: किया, यादों के मंथन जैसे कार्यक्रम थे। मुझे लगता है कुछ और भी कार्यक्रम, गुलदस्ता एक कार्यक्रम था जो आपने शुरू किया है, सखी सहेली आपके दौर में शुरू हुआ है, तो ये तमाम चीजें हैं, इस दौर को याद कीजिए।
1: नहीं, वो मेरे पूरे करियर का पीक भी था और स्वर्णिम दौर था हर तरह से। मतलब ये नहीं कि मेरे मेरी आखिरी वो पोस्टिंग थी कहना चाहिए या मेरा करियर का आखिरी पीरियड था, उस लिहाज से नहीं। मेरे क्रिएटिव एक्सप्रेशन का भी और लोगों से जुड़ाव का भी और चीजों को एक्सप्लोर करने का भी वो बेस्ट पीरियड था। और उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने अच्छे ढंग से इन चीजों को संवारने और उसको साकार करने का अवसर दिया, जिसमें मैं बार बार नाम लूंगा तो सबसे पहले यूनुस,
0: अरे राकेश जोशी,
1: राकेश जोशी, उस वक्त हमारे जो साथी लोग थे लोकेंद्र जी, महेंद्र मोदी, ममता, कांचन प्रकाश संगीत, कमलेश और शेट्टी जी जो हमारे मैनेजर हुआ करते थे, एक तरह
0: सब
1: से
0: चीजों को संभालते
1: थे। तो एक अच्छी टीम थी जो हर तरह से जो जिस चीज का एक्सपर्ट था वो था, और वो अपने को भरपूर सहयोग के साथ, भरपूर इन्वॉल्वमेंट के साथ, भरपूर पोटेंशियलिटी के साथ
0: जी,
1: मतलब हर आदमी ने अपना बेस्ट दिया
0: बिल्कुल, और हर रोज आप एक नई चुनौती सामने
1: रखते हैं, ऐसा कम होता है
0: जी।
1: तो हमने तो ऐसे ऐसे वो दौर देखा और किया है कि कोई बड़ी हस्ती है, खयाम साहब आ गए, लक्ष्मी प्यारेलाल जी आए
0: जी,
1: आनंद जी आए
0: बिल्कुल,
1: है ना, अनु मलिक भी आए, कौन कौन नहीं आए यहाँ पे, तो सारे, और संगीतकारों में भी बड़े बड़े लोग,
0: रवि जी आए,
1: हाँ
0: बिल्कुल,
1: खयाम साहब
0: आए,
1: हाँ।
0: और बातों का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा है
1: तो बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े इंटरव्यूज
0: मुझे याद है कि खयाम साहब, नौशाद साहब आए हैं
1: हाँ।
0: और हम उनको छोड़ने नीचे गाड़ी तक गए हैं
1: हाँ।
0: और वहीं एक घंटे बात हो रही है
1: उनको वो नौशाद साहब तो ऐसे थे कि वो उनको बोलने का बहुत वो था
0: जी,
1: वो अच्छा भी बोलते थे और इतना था उनके पास बोलने का
0: बिल्कुल,
1: और उनको शौक भी था तो बहुत अच्छी बातें करते थे, देर तक बातें करते थे। कैफी आजमी साहब, तो मतलब ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियों के, फिर हमने ये भी किया कि इनको हमको जाया नहीं करना है कि एक घंटे में बांध लिया, दो घंटे में बांध लिया, उनको कभी सरगम के सितारे, कभी हमारे मेहमान, कभी इसमें उसमें, जितना हम उनके
0: ले सकते
1: हैं उनका श्रोताओं के लिए, क्योंकि ये लोग बार बार नहीं मिलते हैं, ये लोग अब कहाँ आएंगे अब इस दुनिया में, तो इनका जो है वो है, जो विविध भारती के पास है वो किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। वो आर्काइवल रिकॉर्डिंग और स्टेशंस पे है
0: जी,
1: लेकिन इस तरह की जो रिकॉर्डिंग्स जो है, इतनी लाइवली रिकॉर्डिंग्स जो है, वो संस्मरणात्मक रिकॉर्डिंग है सारी की सारी, या गानों पे बातें हो रही हैं या गाने कैसे बने उस पर बातें हो रही हैं
0: जी,
1: है ना, आपका फेवरेट क्या है, आप वो सारा कुछ, मतलब पूरी उनकी यात्रा
0: एक से बढ़ के एक,
1: एक से बढ़कर एक प्रोग्राम जो है वो हुए, प्लस कहीं कहीं कोई चला गया अचानक तो उसके लिए छुट्टी भी हो तो सब लोग एक फोन पर पूरी टीम विविध भारती की स्टूडियो में हाजिर
0: और
1: पूरा प्रोग्राम शुरू हो गया। तो ये सब वो एक अनुभव जो है वो विविध भारती में हुआ और कहीं नहीं हो सका।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो विविध भारती में वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा हमेशा रहा कि चाहे मौजूदा कलाकार हों चाहे ट्रिब्यूट्स हों, जी जान के साथ लोगों ने काम किया। एक चीज जो क्रिकेट का आपका शौक, उसकी भी मैं बात करना चाहूंगा, एक बहुत जुनून रहा है आपको क्रिकेट का। मुझे याद है कि वर्ल्ड कप हो रहा है तो आपने स्पेशल प्रोग्राम शुरू कर दिया था और मैंने वो चुनौती निभाई थी कि रोज सुबह एक बुलेटिन देना है।
1: नहीं, क्रिकेट का शौक बहुत अरसे से रहा और शायद ये हमारा राष्ट्रीय खेल शुरू से रहा है
0: जी,
1: तो थोड़ा बहुत खेला भी, लेकिन देखने का शौक जो है वो, ये तो वो जमाना था, वो दीवानगी का वो आलम था कि इसके लिए मैंने ऑफिस से छुट्टी तक ली है मैच देखने के लिए
0: जी जी,
1: तो ये भी हुआ है। और खासतौर से जब हम वर्ल्ड कप जीते 83 में,
0: बिल्कुल,
1: तो उसके बाद तो कमाल ही हो गया मतलब। और जब जयपुर में आकाशवाणी में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव था, स्पोर्ट्स भी था, देखता था
0: जी,
1: तो पाकिस्तान इंडिया का मैच, इंडिया इंग्लैंड का मैच, ये सब देखा और आनंद आया।
0: बिल्कुल, विविध भारती के दौर में भी क्रिकेट पर हमने बहुत कार्यक्रम किए आपके दौर में, और मंथन किया जब पाकिस्तान गई थी इंडिया की टीम, और ऐतिहासिक दौरा था, दिलीप साहब को रिकॉर्ड किया उस जमाने में, और उन्होंने शुभकामनाएं भेजी इंडिया की टीम को, तो एक जुनून उससे मैं वाकिफ हूँ।

0: एक जरूरी बात रह गई है और वो है रेखा जी से आपकी मुलाकात की बात।
1: रेखा से, रेखा का यूं है कि वो हम लोग एमए में साथ थे,
0: जी
1: एमए हिंदी लिटरेचर में राजस्थान यूनिवर्सिटी में, तो एक ही क्लास में थे और हम दोनों का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था। मैं जैसे मैंने बताया, हमारे पिताजी पीएनटी डिपार्टमेंट में काम करते थे, तो एक लोअर मिडिल क्लास

0: सरकारी मुलाजिम के बेटे बेटा वो इस तरह से परिवार में पला बढ़ा, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम लोग बहुत समृद्ध थे। लेकिन जो रेखा की जो फैमिली है वो सिंधी कम्युनिटी है, वो लालवानी रहे हैं है मतलब, तो वो बिजनेस में थे जापान पे, हमारे फादर इन लॉ, दोनों ब्रदर इन लॉ हांगकांग मनीला, तो वो उनका बैकग्राउंड ही अलग था, मतलब उनका आर्थिक स्तर भी बहुत अलग था
1: जी।
0: तो कोई संभावना नहीं थी इसकी, लेकिन वो जो होता है वो होता है। तो जब उस वक्त मेरी थोड़ी बहुत पहचान गीतकार के रूप में, थोड़ी पत्रकार के रूप में सब होने लगी थी, लिखने वाले के तो और अट्रैक्शन भी हो ही गया था, और हम लोगों में मिलना जुलना सब कुछ है। लेकिन शादी तक की बात, ये उनका साहस था
1: जी जी।
0: प्रपोज तो नेचुरली मैंने ही किया था, लेकिन मैं हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था और विलोम था एक तरह से, तो उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत दिखाई, उनका ठीक है। और ये कहानी बड़ी दिलचस्प है
1: जी,
0: तो घर में बता के तो उन्होंने कहा कि संभव नहीं है।
1: ओके,
0: घर में तो वहां तो राजी होने का सवाल ही नहीं उठता कि वो मान जाए। तो अच्छा, उस वक्त हमारे इन लॉ फादर इन लॉ जापान में रह रहे थे, ये हमारी जो सास है मदर इन लॉ जो है वो उनके साथ ये रह रही थी, सब कुछ दोनों भाई बाहर थे, तो घर का कोई पुरुष यहां मौजूद नहीं था, और माँ को भी ये बताने की और इस हालत में वो उम्मीद नहीं थी कि हो जाएगा। तो ठीक है, तो हमने कहा कि हमारे समाज में शादी करते हैं।
1: अरे बाप रे।
0: तो आर्य समाज में तय हुआ शादी, हम मेरे कोई निकट के मित्र 5-7, और उस वक्त भी मतलब मैं क्योंकि अपने कॉलेज के जमाने से अपनी एक्टिविटीज की वजह से लिखने पढ़ने और थिएटर का जो माहौल था, तो अपने लेक्चरर्स का चहेता बन गया था, मतलब ये था
1: जी,
0: तो वो सब
1: जी।
0: आगे आगे करते थे, तो मेरे 2-3 जो लेक्चरर्स थे वो शादी में आए।
1: अरे वाह,
0: आर्य समाज की शादी में
1: क्या बात है।
0: तो उन्होंने संभाला और सब कुछ हुआ। अच्छा हुआ ये कि मैं शादी के बाद वो अपने घर चली गई,
1: अरे
0: मैं अपने घर चला आया।
1: जी जी जी।
0: तो उन्होंने कहा कि अब मैं बता सकती हूँ कि हम मैंने शादी कर ली है। और तो अब तो
1: कुछ हो नहीं सकता,
0: होंगी नहीं सबकी। तो हमारे जो लेक्चरर्स थे तो नेचुरली वहां से रेजिस्टेंस होना था कि नहीं नहीं तुम्हारे पिताजी को बुलाते हैं वो करते हैं, तो उन्होंने वो दौड़े दौड़े जापान से लौट के आए। फिर उन्होंने सब बता दिया सब कुछ, तो बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, हम उनसे बात करेंगे, उनको बुलाते हैं सब कुछ करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुझे लग नहीं रहा कि मानेंगे, तो मुझे यहाँ से ले जाओ।
1: अरे बाप रे,
0: ये इनकी हिम्मत बता रहा हूँ मैं अब। तो मुझे ले जाओ यहाँ से। तो मैं अपने 2 लेक्चरर्स के साथ घर गया हूँ उनके।
1: गजब।
0: और हमारे फादर इन लॉ जो मौजूद थे तो हाँ हाँ ये बैठी चाय वाय पी सब कुछ कुछ। तो उन्होंने वही कहा कि थोड़ा हमें वक्त दीजिए ना, हम ढंग से करते हैं इस वक्त करेंगे उस पूछे। लेकिन ये फिर मुझे अलग ले गई, बोले नहीं
1: ये नहीं हो रहा है,
0: ये नहीं होने देंगे, मैं भी चलूंगी।
1: गजब,
0: मैं भी चलूंगी। तो फिर उन्हीं के साथ हम लोग बाहर आ गए और हम लोग निकल आए। और फिर मैंने अपने घर वालों को भी तब बताया
1: जी जी जी,
0: जब उनको लेके आया कि मेरी शादी हो गई है
1: और ये है।
0: तो इस तरह से ये पूरी कहानी हुई। और इसके पीछे मेरी तो जो है सो है, सारा साहस इनका है।
1: क्या बात है,
0: ये उस जमाने में
1: जी, शानदार शानदार। तो ये अद्भुत कहानी रही है और ये हमारे सुनने वालों के साथ शेयर हुई, तो ये भी एक दिलचस्प है। सबसे अच्छी मुलाकातें वो होती हैं जिनमें आगे की गुंजाइश छूट जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, 2 एपिसोड में उनको समेटना बड़ा मुश्किल था। आगे फिर मिलेंगे और कुछ बहुत सारी बातें आपके साथ की जाएंगी। चलते चलते आपसे कुछ सुनना चाहेंगे।
0: मैं 2-3 शेर सुनाता हूँ।
1: जी जरूर इरशाद।
0: ये रोजमर्रा का सच हम सबके साथ, किसी दिन जिंदगानी में
1: किसी दिन
0: करिश्मा क्यों नहीं होता।
1: वाह।
0: किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ जिंदा क्यों नहीं होता।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
0: किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ जिंदा क्यों नहीं होता।
1: वाह वाह।
0: मेरी एक जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं लेकिन, मेरी एक जिंदगी के
1: कितने
0: हिस्सेदार हैं लेकिन, किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता।
1: वाह वाह वाह।
0: मेरी एक जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं लेकिन, किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता। और 2 छोटी-छोटी बहर के शेर
1: इरशाद।
0: एक तो ये शेर के, एक आंसू
1: एक आंसू।

0: कागज पर गिरा,
1: वाह,
0: एक आंसू
1: कोरे कागज पर,
0: कोरे कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या
0: एक आंसू कोरे कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया,
1: क्या बात है।
0: और ये शेर आखिर में, गम छुपाना,
1: गम छुपाना
0: कोई मजाक नहीं, गम छुपाना कोई मजाक नहीं, देर तक मुस्कुराना पड़ता है।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात क्या बात।
0: गम छुपाना कोई मजाक नहीं, देर तक मुस्कुराना पड़ता है,
1: क्या बात है क्या बात है। सर इतनी सारी बातें हुई, मैं चाहता हूं कि एक ऐसी गजल सुनाएं जो आपके इस पूरे रचनात्मक सफर की रिप्रेजेंटेटिव हो, जो आपके मन की हो, जिसे आप जरूर सुनाना चाहें।
0: यूनुस, ये गजल मैं इसलिए खास महसूस करता हूं अपने क्रिएटिव सफर की, कि रामपुर की एक बहुत मशहूर लाइब्रेरी है, रजा लाइब्रेरी।
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो उसमें रिसर्च का नामी गिरामी लोग तो आए, बहुत अच्छी महफिल थी। तो उसमें ये गजल जो मैंने पढ़ी
1: जी,
0: तो इतना प्यार मिला, तरह मुशायरा था जो मेरा पहला अनुभव था।
1: जी जी,
0: मतलब किसी
1: लाइन होता है।
0: लेकिन ये गजल मुझे वहां दो बार पढ़नी पड़ी।
1: क्या बात है,
0: इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला, तो वो हासिल मुशायरा साबित हो गई।
1: वाह।
0: तो इसलिए मेरे लिए वो जो है बड़ी यादगार गजल रही, तो मैं वो उसके कुछ शेर पढ़ देता हूँ।
1: इरशाद इरशाद।

0: से हूँ।
1: क्या बात है, क्या बात है। तो आगे की बातचीत के लिए प्यास बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी बातें की।
0: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस, और पूरे विविध भारती परिवार को मेरी तरफ से धन्यवाद, आभार, और अपने पूरे परिवार में फिर एक बार अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए और पुराने श्रोताओं से मिलने के लिए, मिलाने के लिए मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।
1: शुक्रिया सर, शुक्रिया। ये था जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है। आज के मेहमान

ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सैंसिटी चैनल है। FM बैंड 102.1 MHz पर शाम के 5 बज चुके हैं। अब आप सुनने वाले हैं युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युव वाणी।

राम राम साथीरा, छिंजियारी 5 बज गई है और इन टाइम आप सगड़ा ने उड़ीक रहा करे आपने दैनिक कार्यक्रम युवाणी री। पर आज है बुधवार और इन दिन आप सगड़ा ने खास उड़ीक रहा करे आपने मैड भाषा रे कार्यक्रम निम्बोड़ी री, जिनमें मैं आप री फरमाइशा ने कार्यक्रम में शामिल करया करूँ और लोकगीत और लोक भजन सुनाया करूँ। तो आज रो इन कार्यक्रम री शुरुआत करा इन प्यारे से गीत लेरे सागे।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया फीडबैक चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
2: करेक्ट।
3: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
1: चले ले आ गया नया फीडबैक।
4: RBI कहता है
5: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: साथी आज रो निम्बोड़ कार्यक्रम लेना हाजिर हो यहाँ मैं दो रेडियो साथी, मैं आपके साथ बोम सिंह और हमारे साथ है
7: सदरा, मैं आप रेडियो साथी रघुवीर सिंह। सदरा इन एक घंटे के कार्यक्रम में मैं घनी सारी आपसे बातें कराला, आपने भेजड़ी फरमाइशा ने शामिल कराला, आपकी पसंदरा गाना भी सुना वाला। तो सदरा जका साथी हमारे साथ नया जुड़िया है वह नए फरमाइश भेजन रो पतो में बता देवा, पतो लिख ले रहा वो आप व्हाट्सअप रहा नंबर 94133 29359 इन नंबर माथे आप अपनी फरमाइश माने भेज सको हो।

0: साधना आवारा बा बहुत ही चौकी राजस्थानी लोक रचना सुनी। साधना हर राजस्थानी कार्यक्रम रे मायने निमोली रे मायने आपने एक राजस्थानी शब्द दया करा हाँ। आज रो शब्द है माड़ियो या फिर माड़िया। पर गांव सु घर सु मकान सु जुड़ो शब्द इन रो अर्थ आपने ध्यान में तो आपरी फरमाइश रे साथ इन शब्द रो अर्थ भी माने जरूर भेज दो। हमारा व्हाट्सअप रा नंबर 9419339359। इन नंबर माथे आप आपरो नाम आपरो पतो और आपरी पसंद रो राजस्थानी लोक गीत माने भेज जरूर भेजो।
1: सादिना औकात आयो है टिकमगढ़ मध्य प्रदेश हूँ। भेजन वाला है बिजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष।
0: गांव मेलाना तहसील बावड़ी जोधपुर से आप साथ जुड़िया है चलाराम मेघवाल, रविंद्र, देवेंद्र, अनिता और फूली देवी मेघवाल।
1: कलानौर से रविंद्र शर्मा, किरण, नितिन और मयंक शर्मा।
0: खेतेश्वर कृषि फार्म तहसील सिंहदरी से आपार साथ जुड़िया है नाग सिंह राजपुरोहित, भावेश, कृष्णा, तनवीर और परी।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अपने से ऊपर का जो स्टूडेंट है, हमसे ज्यादा होशियार है, उसको कहो मैं 5-10 मिनट मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है क्या, तुम करेक्ट करो।
0: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: साजरा अगली फरमाइश आपने लिखकर भेजी है कनोडिया प्रोहितान जोधपुर हाल उदयपुर शू। भेजने वाला रेडियो श्रोता है राहुल सिंह, राजपुरोहित, स्वाई सिंह, हनुमान सिंह, जसवंत सिंह, गोवर्धन सिंह, स्वरूप सेन, भागीरथ लावा और यारा साथीगण।
1: औखत आयो है रायगढ़ बिहार सु। भेजन वाला है रमेश, आशा और उमा अरविंद।
0: गांव रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर सु आप साथे जुड़िया है लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी।
1: जालंधर सु संदीप कौर और हितेशा उमेश।
0: प्रतापनगर जोधपुर सु आप साथे जुड़िया है मनोहर चितारा, सरोज चितारा, पंकज करण और अर्जुन।
1: मधुबनी बिहार सु मोहम्मद साबिर, साजिद अली।
0: गांव दोरेखन लिढाणी तापू सु आप साथे जुड़िया है विष्णाराम बालियान, विदामी देवी बरवड़, सुनील, पूजा, सुरेश, सुभाष और श्याम सुंदर।

0: सादरा आपरी फरमाइशा हमारे तई लगो लग पूग रही है। अगली फरमाइश माने लिख रहे भेजी है खांडा फलसा मियाँ चौक जोधपुर सु। भेजने वाला रेडियो श्रोता है अब्दुल हमीद चीपा, रईसा बानो, अब्दुल अहमद चीपा, अब्दुल मुशवीर, आयशा बानो और फिजा बानो।
1: बालोत्रा सु मोहनलाल प्रजापत, माणक उषा और बाला देवी प्रजापत।
0: पदमपुर जिला गंगानगर सु आपा साथे जुड़िया है मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति और भूमिका अरोड़ा।
1: पटेल नगर मालो सू डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, जगनदीप और आरजू जाजोरिया।
0: भोपालगढ़ सु आपार साथे जुड़िया है श्री राम जानी, राजेश, अशोक कड़ेला, घनश्याम सिंह चौधरी और गोविंद।
1: विलय नगर सु अनुश्री प्रदीप।
0: तो साथरा इन सगले श्रोता पसंद माथे आपा सुना अगली राजस्थानी लोक रचना।
2: शादी का गाना है और हाजर उबारे से हो मैं लाल बने नो जोश हो धीमेरा धीमेरा चालो थाना घनोड़ी कमा।

0: साधना आपने एक राजस्थानी शब्द दियो हो माड़ियो घना ही सारा श्रोता जगह महान इन शब्दों सही अर्थ लेकर भेजियो साधना आपने सही अर्थ बता देवा मकान रे ऊपरी छत माथे बनियोडो छोटो सो कमरो जिके ने आपा माड़ियो या माड़िया भी कया करा हाँ साधना बात मन तो घने करियो आपसू बाता करा आपरे भेजड़ी फरमाइशा ने पढ़ा और आपरी पसंदरा गाना सुनाता जावा पर बखतरो ध्यान रखता था का आज रे इन निमोली कार्यक्रम रो समय हो रियो है 28 पूरो इन कार्यक्रम री प्रस्तुति किन ही राजेश लामरोड और संयोजन किन हो मनीष कुमार सोलंकी मैं आपरे साथे हा दो रेडियो साथी मैं रघुवीर सिंह और मारे साथे हा
1: मैं आप रेडियो दोस्त बोम सिंह फिर मिला अगले बुधवार इन्हीं कार्यक्रम में नवा रंग नवा जोश रिसागे जड़ताई स्वस्थ रहो मस्त रहो राजस्थानी बोलो राम राम सा।

ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है, FM बैंड 102.1 MHz पर। अब आप सुनने वाले हैं समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। अंग्रेज

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारियों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी पार्टनरशिप का इंजन है। AI, क्वांटम, स्पेस और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानने में के मामले में एकजुट हैं। सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। ये संबंध स्वतंत्रता, लोकतंत्र और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण के मूल्यों पर आधारित हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के मंत्री ली जोंग चुल से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्ष संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और संयुक्त निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए आपसी प्रयासों का लाभ उठाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के नवाचार इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षा काइंड एक्स पहल की क्षमता को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए एक रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर भी चिंता व्यक्त की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। ये आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा

0: मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, रक्षा से उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है बल्कि राष्ट्र को एकजुट करने का एक सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत के साथ साथ दूसरे टीम के परिणाम पर भी निर्भर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सान सिटी चैनल है, FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:05 हो चुके हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर।

नमस्कार जोधपुर, आकाशवाणी के सतरंगी मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर, और आज की इस सुहानी शाम को आपके साथ बिताने आ गई हूँ मैं राधिका व्यास। दिन भर की भागदौड़ और काम की थकान के बाद शाम का यह वक्त होता है थोड़ा रिलैक्स करने का, और आपके इसी रिलैक्सेशन में बेहतरीन संगीत का तड़का लगाने मैं हाजिर हूँ। आज का हमारा शो बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम फिल्मी दुनिया की भागदौड़ से थोड़ा दूर चलेंगे। आज हम उन 90 और 2000 के दशक के प्राइवेट एल्बम्स यानी गैर फिल्मी गीतों की बात करेंगे, जिन्होंने बिना किसी हीरो हीरोइन के साथ हमारे दिलों पर राज किया, और साथ ही जोधपुर की इस कड़कती धूप और भयंकर गर्मी में खुद को कैसे कूल और फिट रखे, इस पर भी हम कुछ थोड़ी बहुत सिंपल बातें करेंगे। तो चलिए इस सुहाने सफर की शुरुआत करते हैं सोनू निगम की उस आवाज के साथ जिसने 90s के हर युवा को अपना दीवाना बना दिया था।

0: थ्री प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS व चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: श्रोताओं, अभी हमने सुनी आवाज सोनू निगम की। सोनू निगम ना, उसकी आवाजें सुनकर आज भी मन तरोताजा हो जाता है। वैसे तरोताजा रहने की सबसे ज्यादा जरूरत हमें आजकल है। मई का महीना चल रहा है और जोधपुर में इतनी धूप है कि जैसे आग उगल रही हो। ऐसे में सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम है खुद को हाइड्रेटेड रखना। जब भी घर से बाहर निकलें तो पानी की बॉटल ज़रूर साथ में रखें। सिर्फ सादा पानी ही नहीं, आम पन्ना ले सकते हैं, शिकंजी, छाछ, ये सब कुछ आपको हाइड्रेटेड रखेगा, आपको तरोताज़ा रखेगा और भयंकर लू से बचाएगा भी।

0: दुनिया रा सारा सुख एक तरफ हर माँ बड़न रो सुख एक तरफ
1: निसंतान दंपतिया रे जीवन में खुशियाँ री उम्मीद विनायका हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर गीता भवन रोड जोधपुर।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है, अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए।
2: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

श्रोताओं, अदनान सामी की उंगलियां ना जब पियानो पर चलती हैं तो बस जादू सा हो जाता है। कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर में गीतों और हमारी आपकी बातों का ये सफर जारी है। बात हो रही थी धूप और उससे बचने की। दोस्तों, हाइड्रेशन के साथ साथ सही कपड़े पहनना भी बहुत जरूरी है। कोशिश करें कि इन दिनों हल्के हल्के रंग के और कॉटन यानी सूती कपड़े पहने, और अगर दो पहिया वाहन पर निकलना पड़े तो सिर और चेहरे को साफे या स्कार्फ से जरूर ढके, आंखों पर धूप का चश्मा जरूर पहने, और आपकी सेहत सबसे पहले है। इसी बात पर तो सुनते हैं हमारा अगला गीत, जो कि है कैलाश खेर की आवाज में।

सूफी अंदाज और कैलाश खीर की दमदार आवाज, माहौल एकदम खुशनुमा सा हो गया है। दोस्तों, इस चल चलाती धूप में हमारी त्वचा भी काफी झुलस जाती है, इसलिए जब भी बाहर से घर आए तो तुरंत चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे जरूर मारें। अगर घर में एलोवेरा का पौधा है तो उसका थोड़ा सा जेल चेहरे पर भी लगाएं, उससे ना चेहरे को आपके बहुत ठंडक मिलेगी। ये जो छोटे छोटे घरेलू नुस्खे होते हैं ना, इस मौसम में बहुत काम आते हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

वैसे दोस्तों, इस सुहाने गीत के बाद एक आखिरी और सबसे काम की बात मैं ये कहना चाहूंगी आपसे कि गर्मियों में अच्छी और गहरी नींद लेना भी उतना ही जरूरी है जितना बाकी सब चीजें करना जरूरी है, क्योंकि दिन भर की थकावट के बाद शाम को जब आप अपने घर लौटते हैं ना, तो ठंडे पानी से हाथ मुंह धोकर थोड़ा रिलैक्स करते हैं ताकि आपकी बॉडी को पूरा आराम मिल सके। इस प्रोग्राम की ये आखिरी आवाज लकी अली की आवाज़।

0: श्रोताओं, संगीत के सफ़र में वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। उम्मीद है आज का हमारा ये प्राइवेट एल्बम स्पेशल एपिसोड और गर्मियों में अपने ख्याल रखने की छोटी छोटी बातें आपको पसंद आई होंगी। खूब पानी पीजिए, धूप से बचिए और अपनों का ख्याल रखिए। अब आज आज के गुड इवनिंग जोधपुर को यही समेटने का वक्त आ गया है। मुझे यानी राधिका व्यास को दीजिए इजाज़त। कभी फिर आपसे मुलाकात होगी इसी स्टेशन पर। सुनते रहिए आकाशवाणी का ये FM सन सिटी चैनल और शुभ संध्या। नमस्कार। श्रोताओं, ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है, FM बैंड 102.1 MHz पर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर। शाम के 7 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम जयमाला, जो कि विविध भारती मुंबई से रिले किया जाएगा।
1: कुछ ही पलों में फौजी भाई सुनेंगे जयमाला कार्यक्रम।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, धूप स्टिक, कोन्स एवं हवन सामग्री।

0: अभी आपने फना फिल्म में महालक्ष्मी को सुना, संगीत जतिन ललित का था बोल प्रसून जोशी के। अब सुनिए भारतीय सेना पर आधारित गीत, स्वर गीत और संगीत कैलाश खेर का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

अभी आपने भारतीय सेना पर आधारित गीत सुना, स्वर गीत और संगीत कैलाश खेर का था। अब सुनिए इस्माइल दरबार के संगीत निर्देशन में महबूब का लिखा गीत, आवाजें कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद सलामत और डोमिनिक की। फिल्म का नाम है हम दिल दे चुके सनम।

0: विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, धूप स्टिक, कोन्स एवं हवन सामग्री।
2: याग्निक की आवाजों में नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

आपने अपने लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों को फिल्म मिस्टर नटवरलाल में सुना। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार राजेश रोशन। और अब जयमाला में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल और फिर वापस लौटते हैं अपने कार्यक्रम में।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

में अलका याग्निक और कुमार सहनी को सुना। संगीत नदीम श्रवण का था, बोल समीर के। और अब यह है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश शान फिल्म से। इसे गाया है आशा भोसले ने, संगीत तैयार किया है आरटी बर्मन ने, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम इंद्रधनुष। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे राग अनुराग। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं राग यमनची जोटी पर आधारित गीत से। फिल्म का नाम है आए दिन बहार के। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तर्ज बनाई है और गीतकार है आनंद बख्शी। स्वर दे रहे हैं लता मंगेशकर और आशा भोसले।

राग यमन जी चोटी पर आधारित गीत सुना। अब सुनिए राग भैरवी पर आधारित गीत, आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। रवि के संगीत निर्देशन में गीत की रचना की है प्रेम धवन ने।

ये था राग भैरवी पर आधारित गीत। और अब कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं राग रागेश्री पर आधारित एक युगल गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने, संगीत रवि का, पोल असद भोपाली के।

0: आज के कार्यक्रम में सुनिए शोभा रस्तोगी का लिखा प्रहसन खरीदा हुआ दुख।
1: अम्मा अम्मा जल्दी आओ, दाल जल रही है।
2: अम्मा की बच्ची, तू बर्तन भी नहीं उतार सकती?
3: खाने को चाहिए मन भर, लेकिन काम के नाम पर नहीं लगती है। दाल एकदम लग गई, अब खाना नमक से रोटी।
4: तुम्हें तो कहा था कि खाने पीने की चीजें ना छुआ करो, फिर क्यों डांट रही हो?
3: डांटू नहीं तो क्या पूजा करूँ? दुनिया भर का मैल लपेटे रहती है हाथों में, इसलिए मना किया था। सांसी से बदलोई तो उतार ही सकती थी, लेकिन तुम लोग तो मेरा खून पीने पर उतारू हो। जैसी तू वैसी मुन्नी, जैसा धीरू वैसा वीरू, इसी से कोई सहारा नहीं।
4: सबका गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रही हो? जब देखो तब डांटती रहती हो।
5: हो गया सवेरे सवेरे महाभारत शुरू। कभी तो बच्चों से मीठे बोल बोल दिया करो शारदा।
3: हाँ हाँ, सारा दोष मेरा ही तो है, अपने बच्चों के लक्षण नहीं देखते।
5: तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे बच्चे मेरे ही हैं, तुम्हारे नहीं। लाओ थाली पर सो, दफ्तर को देर हो रही है।
3: दाल जल गई, सब्जी है नहीं, नमक से रोटी खाओ तो दे दूं।
5: रोज कोई ना कोई टोटा ही पड़ा रहता है, गृहस्थी चलाने का जरा भी शऊर नहीं।
3: मांग जांच कर जैसे गृहस्थी चलाती हूँ मैं ही जानती हूँ। मेरी जगह कोई और होती तो भूखा रहना पड़ता।
5: ठीक है देवी जी, सवेरे सवेरे मूड ना खराब करो। चुन्नी, स्कूल नहीं गई तुम?
4: नहीं।
5: क्यों, इम्तिहान सर पर है?
3: तुम्हें आज पता चला? 4 दिन से चुन्नी पढ़ने नहीं जा रही है, कहती है टीचर जी डांटती हैं।
5: मुझे बताया क्यों नहीं? क्या बात है चुन्नी, क्यों डांटती हैं टीचर जी?
4: हमारे पास यूनिफॉर्म जो नहीं है, टीचर जी कहती हैं जो लड़की यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आएगी उसे दिन भर बेंच पर खड़ा रखेंगे। खड़े खड़े हमारे पैर दुख जाते हैं बाबूजी।
5: पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, बस यूनिफॉर्म चाहिए, दर्जनों किताबें चाहिए, कॉपियां चाहिए, तमाशा बना रखा है। ठीक है, फंड से रुपए निकाल कर प्रबंध कर दूंगा। चुन्नी जाओ अपना पाठ याद करो, इम्तिहान तो देना ही है।
4: जाती हूँ, आज कॉपियां भी ले आना बाबूजी।
5: है? लगता है कोई स्कूल नहीं गया। मुन्नी धीरू बीरू गली में खेल रहे हैं, तुमने बच्चों को सर पर चढ़ाकर बिगाड़ रखा है। देख लेना, भीख मांगेंगे भीख।
3: मैंने बिगाड़ रखा है? किसी के पास किताब नहीं, किसी के पास कॉपी नहीं, किसी के पास साफ सुथरे कपड़े नहीं, ये मेरी गलती है। बच्चे दिन भर गली में लफंगों की तरह खेलते रहते हैं, ये मेरा दोष है।
5: नहीं जी, तुम्हारा क्यों होगा, सारा दोष मेरा है। शादी क्या की, जंजाल में फंस गया, जितना कमाओ कम है, जब देखो तब कंगाली। ठीक है मैं जा रहा हूँ दफ्तर।
3: टिफिन ही लेते जाओ।
5: कोई जरूरत नहीं है, कैंटीन में खा लूंगा।
3: ये क्यों नहीं कहते, चटपटा खाने का मन है। ठीक है, पूरी तनख्वाह कैंटीन में ही उड़ाओ, बीवी बच्चे भूखे नंगे रहे तुम्हारी बला से।
5: ऐसा कहते तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं कैंटीन में पैसे बहाता हूँ, पूरे पैसे तुम्हारे हाथ में रख देता हूँ, तब तो ये हाल है। अगर उड़ाने लगूं तो जीना दुभर कर दो। लाओ टिफिन दो, अगर घर में हो तो प्याज और नमक रख देना, नहीं तो सूखी रोटी ही खा लूंगा।
6: आपका टिफिन तैयार है।
7: थैंक यू शीला दीदी, कुछ साग सब्जी भी रखी है, या नमक और प्याज से ही काम चलाना पड़ेगा।
6: लगता है आप भी मिस्टर और मिसेस वर्मा की बातें सुन रहे थे।
7: अरे भाई बहरे तो है नहीं, पड़ोसी की बातें सुनाई पड़ ही जाती है। अब ये बात दूसरी है कि हम उनकी कड़वी बातें सुनते हैं और वो लोग हमारी मीठी मीठी बातें हैं। वर्मा जी जरूर अपनी श्रीमती जी से कहते होंगे कि तुम्हारी जुबान हरी मिर्च है और शीला जी की जुबान बंगाली रसगुल्ला।
6: वर्मा जी ना भी कहते हो लेकिन आपने तो कह ही दिया, तभी तो मैं कहती हूँ कि आप डॉक्टर ऑफ फ्लैटरी यानी डॉक्टर ऑफ चापलूसी हैं।
7: इस डिग्री के लिए शुक्रिया मैडम। बड़े बूढ़े कह गए हैं कि जिंदगी में खुशी की कुंजी है घर वाली की चापलूसी।
6: ये आपके बड़े बूढ़े कह गए होंगे। हमारी बड़ी बूढ़ी कह गई है, अगर सुखी जीवन चाहती हो तो चापलूस पतियों से सावधान।
7: ये तो वही बात हुई कि फाटक पर जैसे बोर्ड टंगा हो, कुत्तों से सावधान।

0: गोया शौहर ना हुआ दुम हिलाने वाला।
1: अरे इसका फैसला बाद में होगा, पहले दफ्तर जाकर अपने साहब के सामने दुम हिलाइए। अगर देर हो गई तो बेकार ही झूठे बहाने बनाने पड़ेंगे।
0: तुम्हारा मतलब है जब ओवर टाइम करने मुझे दफ्तर से घर आने में देर हो जाती है तो मैं तुमसे यहाँ आकर झूठे बहाने बनाता हूँ?
1: हाय, जब तुम नाराज होते हो तो कितने अच्छे लगते हो।
0: और तुम इसलिए मुझे जानबूझकर चिढ़ाती हो।
1: चिढ़ाने में मजा आता है ना।
0: वाह रे तुम्हारा मजा, अब अगर मैं भी तुम्हें।
1: अरे, अरे क्या करते हो, छोड़ो। अगर पिंकू आ गया तो?
0: पिंकू आज स्कूल नहीं गया क्या?
1: गया क्यों नहीं?
0: फिर तुमने?
1: डियर इसी को प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं। पिंकू का नाम ना लेती तो तुमसे छुटकारा कैसे मिलता?
0: ठीक है, इस वक्त तो बच्चा खा ही गया। बुरा ना मानो तो एक बात कहूं शीला?
1: आपकी बात का कभी बुरा माना है जो आज मानूंगी?
0: पिंकू पर जरा कंट्रोल रखो।
1: क्या हुआ, क्या स्कूल से कोई शिकायत आई है?
0: नहीं नहीं, लेकिन अगर वो वर्मा जी के बच्चों के साथ इसी तरह खेलता रहा तो स्कूल से भी शिकायत आने लगेगी। धीरू वीरू गंदी गंदी गालियां भगती हैं। अगर अपने पिंकू ने भी सीख ली तो
1: क्या करूं, आप ही बताइए। कई बार पिंकू को मना कर चुकी हूं, अब स्कूल से आकर घर में बंद होकर तो बैठा नहीं रह सकता है।
0: कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुनो, तुम मिसेस वर्मा से कहो ना तो उनके बच्चे बिगड़ रहे हैं।
1: आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वे जानती नहीं। कई बार इशारा कर चुकी हूँ, वो कभी वर्मा जी को दोष देती हैं और कभी अपने भाग्य को कोसती हैं। बाबा रे बाबा, उनके साथ जब उनके बच्चे भी यहाँ आ जाते हैं तो यही डर लगा रहता है कि तोड़ फोड़ न करने लगे। मैंने आपको बताया नहीं, एक बार धीरू पिंकू की पेंसिल रबरी चुरा कर ले गया था।
0: तुम साफ क्यों नहीं कह देती हो कि बच्चों के यहाँ न लाया करें?
1: कहना ही पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ कोई और मकान देखो, कम से कम पड़ोस तो अच्छा मिले।
0: मकान छोड़कर भागना समस्या का हल नहीं है शीला। अच्छा हो हम अपने पड़ोसी यानी मिस्टर वर्मा के परिवार को ही सही रास्ते पर लाने की कोशिश करें।
2: क्या हो रहा है शीला बहन?
1: पिंकू के लिए शर्ट सिल रही हूँ, आओ बैठो।
2: तुम तो सिलाई कढ़ाई बुनाई हर काम में होशियार हो, तुम्हें फुर्सत भी रहती है, हमें तो दम लेने का भी वक्त नहीं मिलता।
1: ऐसा क्या काम है तुम्हारी गृहस्थी में शारदा बहन?
2: अब एक हो तो बताऊं, हम तो ये जानते हैं कि सुबह से उठकर रात तक कमर सीधी नहीं कर पाते।
1: घर के काम में बच्चे हाथ नहीं बटाते?
2: नहीं जी, उल्टे काम बढ़ाते हैं। अब बहन इतनी समाई तो है नहीं कि नौकरानी रखें मेहरी रखें।
1: मेहरी वेहरी तो हमारे यहाँ भी नहीं है, झाड़ू बुहारू भी खुद ही करती हूँ। पिंकू स्कूल गया, गुप्ता जी दफ्तर गए, बस खा पी कर बर्तन मांजे, चौका धोया और उसके बाद फुर्सत ही फुर्सत।
2: अपने अपने भाग्य की बात है बहन, हमारे भाग्य में आराम है ही नहीं। अब आज ही किलो नास पीटी चुन्नी की मारे दाल जल गई, वर्मा जी भूखे दफ्तर चले गए। अब हमसे तो सूखी रोटी चबाई नहीं जाती, अचार डाला था सो बच्चों ने गंदे हाथों से छू छू कर बर्बाद कर डाला।
1: कोई बात नहीं, अचार हमारे यहाँ है।
2: इसीलिए तो आई हूँ बहन, तुम भी सोचती होगी कि अच्छी पड़ोसी मिली, रोज कुछ ना कुछ मांगने आ जाती है, मगर क्या करें बहन, बिना मांगे काम भी तो नहीं चलता।
1: नहीं नहीं बहन, एक दूसरे के सुख दुख में काम ना आए तो पड़ोसी कैसा। अच्छा बताओ, आम का अचार दूं या नींबू का?
2: तुम्हारा मिर्च का अचार तो कभी भूल ही नहीं सकती। शीला बहन ऐसा करो, थोड़ा थोड़ा तीनों तरह का दे दो।
3: तुम यहाँ आकर बैठ गई अम्मा, वहाँ मुन्नी और धीरू लड़ रहे हैं।
2: लड़ रहे हैं तो अम्मा क्या करें, अम्मा का खून पीकर ही चैन आएगा तुम लोगों को।
1: मैं अभी अचार ला रही हूँ, एक मिनट में।
3: अम्मा ये मशीन कितनी अच्छी है, जरा चलाकर देखें।
1: अरे अरे ये क्या कर रही हो चुन्नी, सुई डूब जाएगी। तुमने भी मना नहीं किया शारदा बहन।
2: हम क्या जाने कि मशीन छूने से टूट जाएगी, बच्ची का मन था सो जरा चला ली। चल चुन्नी
1: प्लेट खाली करके जरा जल्दी ही भिजवा देना।
2: घबरा नहीं बहन, शाम को जरूर भेज दूंगी।
1: ये भी अच्छी रही, दो तो आफत न दो तो आफत, कभी आटा मांगेगी कभी दाल, कभी मसाला मांगेंगी कभी घी। समझती है हमारे यहाँ मुफ्त का आता है, अच्छा पड़ोस मिला है। चलो मशीन तो ठीक है।
3: आंटी जी ये प्लेट
1: ले आए? अरे ये तो टूट गई।
3: अम्मा अचार लेकर गई तो मुन्नी धीरू और वीरू छीना झपटी करने लगे सो अचार भी गिर गया और प्लेट भी टूट गई। माने प्लेट भेजी है, थोड़ा अचार और मंगाया है।
1: कह देना अचार अब नहीं।

0: और ये प्लेट भी ले जाओ।
1: अच्छा आंटी, हम इन टुकड़ों से खेलेंगे खेलेंगे खेलेंगे।
2: मैं बहुत शर्मिंदा हूँ गुप्ता जी, आज बच्चों ने आपकी प्लेट तोड़ डाली।
3: वर्मा जी, ये कहकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे भाई, बच्चे हैं, तोड़ फोड़ तो करते ही रहेंगे, और फिर प्लेट तोड़ी है कोई।
2: ये आपकी शालीनता है गुप्ता जी, सच मानिए मैं तो इन बच्चों से तंग आ गया हूँ।
3: शायद बच्चों का इतना दोष नहीं जितना आप समझते हैं।
2: क्या मतलब?
3: मतलब बाद में बताऊंगा, पहले चाय पीजिए। अरे भाई शीला, चाय में क्या देर है?
0: एकदम तैयार है, लीजिए।
2: अरे आप तो चाय के नाम पर पूरा खाना ले आई भाभी जी, बर्फी, समोसे, दाल मोट, पकौड़ी।
0: ऐसा तो कुछ भी नहीं है वर्मा जी, दफ्तर से आने के बाद नाश्ते में कुछ तो होना ही चाहिए।
2: काश हमारी श्रीमती जी भी ये समझ सके। नाश्ते की कौन कहे, हमें तो कभी कभी चाय भी नसीब नहीं होती।
3: लीजिए चाय पीजिए। वर्मा जी, हम लोग बहुत दिनों से आपसे बात करना चाहते थे। देखिए वैसे तो आपका घर है, आपके बच्चे हैं, लेकिन पड़ोसी होने के नाते
2: कहिए कहिए, निसंकोच कहिए गुप्ता जी।
3: आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं।
2: जानता हूं, वो स्कूल नहीं जाते, गली में खेलते रहते हैं, गालियां बकते हैं, चोरी करते हैं। मुझसे कुछ छुपा नहीं है गुप्ता जी, अब मैं क्या क्या देखूं, शारदा बच्चों पर ध्यान ही नहीं देती।
0: सिर्फ शारदा बहन को दोष देना ठीक नहीं, अकेली माँ क्या क्या कर सकती है। अगर पिंकू के भले बुरे पर ये भी निगाह न रखे तो।
3: मैं भी ये कहने वाला था।
2: ये न समझे गुप्ता जी कि मुझे बच्चों की चिंता नहीं है, मगर समझ में नहीं आता क्या करूं। सुबह होते ही घर में कला शुरू हो जाती है, इसका असर बच्चों पर तो पड़ेगा ही।
1: बाबूजी, अम्मा बुला रही है, धीरू ने मुन्नी की कॉपी फाड़ डाली, मुन्नी धीरू को मार रही है।
0: कोई बात नहीं, जरा अम्मा को यही भेज दो, कहना आंटी जी ने बुलाया है। लो चुन्नी, ये दाल मोट लो, सब लोग मिल बांट कर खाना, लड़ना नहीं।
1: आप बहुत अच्छी आंटी जी, अम्मा हमें कभी कोई अच्छी चीज खाने को नहीं देती।
2: देखा आपने, ज्यादा से ज्यादा कमाई करने की कोशिश करता हूँ, फिर भी बच्चे छोटी छोटी चीज के लिए नदी दे रहते हैं।
3: आपने कभी सोचा है वर्मा जी ऐसा क्यों?
2: रोज कोई ना कोई बच्चा बीमार ही रहता है, सारा बजट गड़बड़ा जाता है, शारदा को भी ढंग से गृहस्थी चलाने का शऊर नहीं।
4: मेरी बुराई के अलावा और कुछ आता है तुम्हें? शिकायत तो मुझे होनी चाहिए कि माँ बाप ने ऐसे खूंटे से बांध दिया जहाँ ना खाने पीने का सुख है न पहनने ओढ़ने का।
0: शारदा बहन, दुख तो आप लोगों ने खुद खरीदा है, हम लोगों के आंगन के बीच बस एक छोटी सी दीवार है, इधर और उधर में जमीन आसमान का फर्क क्यों है जानती हैं?
4: इसमें जानने को क्या है, सब पैसे की माया है, आप लोगों की आमदनी ज्यादा है और हम लोगों की कम।
3: ये आपका भ्रम है भाभी जी, मेरा और वर्मा जी का एक ही ग्रेड है। ये जरूर है कि थोड़ा बहुत ओवर टाइम में भी मिल जाता है।
2: ओवर टाइम तो मैं भी करता हूँ गुप्ता जी, फिर भी पूरा नहीं पड़ता। बताइए मैं क्या करूँ?
3: बड़े परिवार में खर्च ज्यादा तो होगा ही, समस्याएं रहेंगी ही। अगर हम लोगों की तरह आपका भी परिवार सीमित होता तो ये नौबत क्यों आती?
2: मैंने तो दो बच्चों के बाद ही सोचा था, मगर इनकी जिद।
4: हाँ हाँ, सारी गलती मेरी तो है ही,
0: जो हुआ सो हुआ, अब तो समझिए।
2: अब भी नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे भाभी जी।
3: चलिए, सुबह का भूला शाम को घर आ गया।
0: शारदा बहन, अब तुम बचत करना सीखो, तुम तो पढ़ी लिखी हो, छोटे बच्चों की ट्यूशन करके कुछ न कुछ कमा भी सकती हो। आखिर सिलाई कढ़ाई बुनाई करके मैं कमाती हूँ या नहीं?
1: एक बार गृहस्थी की गाड़ी घर्रे पर आ जाए तो।
3: गाड़ी लाइन पर आने में देर नहीं लगेगी भाभी जी, अब दोनों पहियों में पक्का मेल जो हो गया है।
5: अभी आपने सुना शोभा रस्तोगी का लिखा प्रहसन खरीदा हुआ दुख, निर्देशिका थी दुर्गा मेहरोत्रा। आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र की प्रस्तुति आपने सुनी।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की पहली पेशकश जॉलियल बीट टू फिल्म से, आवाजें सुखविंदर सिंह, मुर्तजा मुस्तफा और कादिर मुस्तफा की, संगीत विशाल खुराना का, बोल जुनैद वासी के।

0: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: सचिन अ बिलियन ड्रीम्स। अब सुनिए इस फिल्म में AR अमीन और अंजलि गायकवाड़ को इरशाद कामिल ने बोल लिखे हैं और संगीत तैयार किया है AR रहमान ने।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

चित्र लोक कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए सुनते हैं शान और अनुष्का मनचंदा को फिल्म गोलमाल में। कुमार का इस गीत को लिखा है कुमार ने और संगीत तैयार किया है प्रीतम ने।

और ये है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश काबिल फिल्म से, आवाज जुबिन नौटियाल की, संगीत राजेश रोशन का, बोल मनोज मुंतशिर के।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को

0: अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। और मेरा भी यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
1: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा, वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
2: हमने आज JPC को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
1: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की CBI हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी ₹96.83 पर बंद हुआ।
1: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ये राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं जूली फिल्म के गाने से, जिसे गाया लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, संगीत राजेश रोशन का, बोल आनंद बख्शी के।

0: दिलचस्प बातों का गुलदस्ता और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: लीजिए सुनिए अनिरुद्ध फिल्म में किशोर कुमार को। तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आपने एसडी बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत सुना। आवाज किशोर कुमार की थी, फिल्म का नाम था आराधना।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

खामोशी द म्यूजिकल। अभी आपने इस फिल्म में अलका याग्निक और हरिहरन को सुना। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी जतिन ललित ने। और यह है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

एसपी बाला सुब्रमण्यम के गाय इस गीत के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती

कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनका कार्य उन्हें जीते जी अमर कर देता है। फिल्मों में गिरीश कर्नाड को हमने चरित्र अभिनेता के रूप में देखा, निशांत, स्वामी, मंथन, अपने पराए, मेरी जंग, सुर संगम के तो वे नायक थे, परंतु मूलतः गिरीश सच्चे साहित्यकार और रंगकर्मी थे। गिरीश कर्नाड का जन्म 19 मई 1938 को महाराष्ट्र के पर्यटन स्थल माथेरान में हुआ था, मगर उनकी माँ कृष्णाबाई और पिता डॉक्टर रघुनाथ कर्नाड कन्नड़िगा थे, अर्थात कर्नाटक के रहने वाले थे। प्राथमिक शिक्षा मराठी में हुई। आगे जब वो परिवार कर्नाटक के सिरसी गांव में रहने लगा, तब गिरीश नाटक मंडलियों के संपर्क में आए। वहां के लोक नाट्य यक्षगान के तो वे जबरदस्त प्रशंसक थे। गिरीश जब 14 बरस के थे तब उनका परिवार धारवाड़ में आ बसा, जहां उन्होंने बीए तक की पढ़ाई पूरी की और फिर वे इंग्लैंड चले गए। ऑक्सफोर्ड के मैग्डलिन शहर में रहकर उन्होंने फिलोसॉफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स विषयों को लेकर एमए की डिग्री हासिल की।

1963 में भारत लौटने के बाद गिरीश कर्नाड चेन्नई में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के लिए काम करने लगे। अब भी नाटकों और लोक कलाओं के प्रति उनका आकर्षण कम नहीं हुआ था। चेन्नई में रहते हुए गिरीश कर्नाड द मद्रास प्लेयर्स नामक नाटक मंडली से जुड़ गए। विदेश जाने से पहले ही 1961 में गिरीश कर्नाड ने जब लिखना शुरू किया था, ये वो समय था जब कन्नड़ साहित्य पर यूरोपीय साहित्य की छाप देखने को मिलती थी। कमोबेश सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य की स्थिति यही थी। सी राजगोपालाचारी द्वारा रचित महाभारत का संस्करण गिरीश कर्नाड ने पढ़ा और उन्होंने अनुभव किया कि महाभारत के पात्र उनके मस्तिष्क में विचरण कर रहे हैं और उन पात्रों के संवाद कानों में गूंज रहे हैं। आगे एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि मैं तो मात्र लेखनी हूं, एक एक कर सभी पात्र मेरे कानों में बोलते गए और मैं लिखता गया। नाटक तैयार हुआ ययाति। पांडवों के पूर्वज ययाति पर केंद्रित ये नाटक बहुत सफल हुआ और अन्य भाषाओं में इसके अनुवाद भी हुए। 1964 में गिरीश कर्नाड ने अपना अगला नाटक लिखा तुगलक। 14वीं सदी के दिल्ली के इस सुल्तान की कहानी के माध्यम से तत्कालीन प्रशासन के महत्वाकांक्षी आदर्शवाद का बुलबुला बड़ी सहजता से दर्शाया गया था इस नाटक में। गिरीश कर्नाड को एक नजरिया मिल गया था, कहानी के स्रोत इतिहास या पुराणों से लेना और समकालीन विषयों तथा आधुनिक मानव की अस्तित्व के लिए चल रही लड़ाई के साथ उसे जोड़ देना। मात्र 26 वर्ष की आयु में गिरीश कर्नाड एक उदीयमान प्रतिभाशाली लेखक के रूप में स्थापित हो चुके थे। सन 1971, गिरीश कर्नाड के कला जीवन की दो महत्वपूर्ण घटनाएं। एक और 11वीं सदी के संस्कृत ग्रंथ कथा सरित सागर से ली गई एक कहानी पर आधारित नाटक हैवदन का निर्माण और दूसरी ओर SL भैरप्पा के उपन्यास पर बनी फिल्म वंश वृक्ष का निर्देशन। लोकनाट्य यक्षगान के सांचे में ढलकर नाटक हैवदन का सफल मंचन हुआ और खूब सराहना मिली। ये नाटक जर्मन भाषा में भी अनुवादित हुआ, उसका निर्देशन किया जानी मानी निर्देशिका विजया मेहता ने। यूं तो 1970 में ही गिरीश कर्नाड का पदार्पण हो चुका था फिल्म संस्कार के पटकथा लेखक के रूप में। इस फिल्म को राष्ट्रपति के स्वर्ण कमल से सम्मानित किया गया था। निर्देशक के रूप में गिरीश कर्नाड की पहली फिल्म थी वंश वृक्ष, जिसके लिए राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वोत्कृष्ट निर्देशक का पुरस्कार उन्होंने साझा किया BV कारंत के साथ। आगे कई कन्नड़ फिल्मों का उन्होंने निर्देशन किया। जहां तक हिंदी फिल्मों की बात है, 1977 में गिरीश कर्नाड ने जिस फिल्म का निर्देशन किया वो फिल्म थी गोधूली और 1984 में शशि कपूर निर्मित फिल्म

जी हाँ, क्यों न बजे मृदंग मन में और क्यों न खनके मंजीरा अंग अंग में, जब लेखन और निर्देशन के साथ साथ गिरीश कर्नाड के नाम का डंका अभिनय के क्षेत्र में भी बजने लगा। तब्बलियू नीनदे मगने, ओंदनंदु कलदल्ली, चेलुवी, काडू, कोन्नुरु हेगदित्ती, ये हैं कुछ प्रमुख कन्नड़ फिल्मों के नाम जिनमें गिरीश कर्नाड ने अभिनय किया है। उनके अभिनय से सजी हिंदी फिल्मों की तो एक लंबी फहरिस्त है। जादू का शंख, निशांत, मंथन, स्वामी, जीवन मुक्त, संपर्क, रत्नदीप, बेकसूर, आशा, मनपसंद, अपने पर आए, क्षमा, तेरी कसम, आनंद भैरवी, एक बार चले आओ, तराना, जमाना, मेरी जंग, सुरसंगम, सूत्रधार, आकर्षण, मिल गई मंजिल मुझे, चैतन्य, ब्रह्म, अंतर्नाद, गुना, प्राणदाता, आतंक, चाइना गेट, AK-47, पुकार, इकबाल, डोर, 8x10 तस्वीर, आशाएं, लाइफ गोज ऑन, एक था टाइगर, शिवाय, चौक एंड डस्टर और टाइगर जिंदा है। फिल्म सुरसंगम, जो तेलुगु में शंकरा भरणम के नाम से बनी थी, इसके नायक पंडित शिवशंकर शास्त्री की भूमिका में थे गिरीश कर्नाड। वो जानदार शानदार अभिनय कैसे भुलाया जा सकता है।

0: 1980 के दशक में कलाकारों के लिए एक और मार्ग प्रशस्त हुआ, दूरदर्शन का। नई नई श्रृंखलाएं बनने लगी। अंग्रेजी के मशहूर साहित्यकार आर के नारायण की कहानियों पर आधारित हिंदी सीरियल बना मालगुड़ी डेज, जिसका नायक था एक नन्हा सा नटखट बालक स्वामी। इस श्रृंखला में स्वामी के पिता की भूमिका की थी गिरीश कर्नाड ने।
1: पिताजी कॉफी, मुझे आपका कमरा चाहिए।
2: किस लिए?
1: मेरा एक दोस्त आ रहा है।
2: तो तुम्हारा अपना कमरा है, वही ले।
1: राजम को वहाँ कैसे ले जाऊं?
2: ये राजम है कौन, इतना बड़ा आदमी?
1: डीएसपी का बेटा है, बहुत बड़ा आदमी है वो।
2: अच्छा ठीक है, तुम ये कमरा ले सकते हो, लेकिन मेज पर रखी हुई चीजों को हिलाना नहीं।
1: बिल्कुल नहीं हिलाऊंगा पिताजी, आप अच्छे पिताजी हैं।

दूरदर्शन के ही एक कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका टर्निंग पॉइंट के सूत्रधार के रूप में भी हमने गिरीश कर्नाड को देखा है।

1971 से लेकर 1990 तक गिरीश कर्नाड द्वारा लिखित नागमंडल, अग्निमट्टुमाले और तालेदंड, इन नाटकों को अनुवादित रूप में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपार सफलता मिली। भाषा साहित्य की सेवा के लिए गिरीश कर्नाड को 1972 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1974 में पद्मश्री पुरस्कार, 1992 में पद्मभूषण पुरस्कार से गौरवान्वित किया गया। 1992 में ही उन्हें कन्नड़ साहित्य परिषद का पुरस्कार प्रदान किया गया। 1994 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। 1998 में कालिदास सम्मान तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से गिरीश कर्नाड को सम्मानित किया गया। फिल्मों में उनके योगदान को अन्यान्य पुरस्कारों से प्रतिष्ठा मिली। 1971 में बेस्ट डायरेक्टर फिल्म वंश वृक्ष के लिए, 1977 में बेस्ट फीचर फिल्म इन कन्नड़ा तब्बलियू नीनदे मगने के लिए, फिल्म भूमिका की पटकथा के लिए 1978 में बेस्ट स्क्रीन प्ले का पुरस्कार उन्होंने साझा किया श्याम बेनेगल और सत्यदेव दुबे के साथ।

ओंदनंदु कलदल्ली कन्नड़ भाषा में बनी इस फिल्म के लिए बेस्ट फीचर फिल्म का उन्हें पुरस्कार मिला 1978 में। कन्नड़ भाषा के एक संत कवि कनक पुरंदर पर उन्होंने एक वृत्तचित्र का निर्माण किया था। इसके लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार उन्हें दिया गया 1990।

वासी में। साथ ही साथ कर्नाटक राज्य सरकार के कई सम्मान उन्हें मिले तथा कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी गिरीश कर्नाड को मिले साहित्य एवं फिल्मों

10 जून 2019 भारतीय रंगमंच और सिनेमा तथा कन्नड़ साहित्य जगत के आकाश से एक चमकता सितारा अस्त हुआ।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था लेखक निर्देशक एवं अभिनेता गिरीश कर्नाड पर।
1: आज के फनकार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती पेस्ट।

0: सामिन, कुछ रिश्ते जैसे जन्म जन्मांतर के लगते हैं, क्योंकि ये रिश्ते केवल इस जीवन के नहीं होते, सात जन्मों से साथ हैं जैसे यू लगता है कभी कभी। हालांकि प्यार सिर्फ साथ होने का नाम नहीं है, पर प्यार में लगता है कि हम हर पल साथ रहें, एक दूसरे में खोए खोए से, एक दूसरे में गुथे हुए से, क्योंकि ये प्यार सिर्फ प्यार नहीं, आदत भी नहीं, रूह का एक हिस्सा बन जाता है। तब
1: भूल गया सब कुछ, भूल गया सब कुछ।

मैंने उस दिन पहली बार अपने भीतर उतर कर देखा, वहां मैं थी और वो था। उसने मेरी आंखों में झांक कर कहा था, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। उसने कहा था, तुम्हारा चेहरा चांद जैसा नहीं है, पर तुम एक प्यार से लिखी हुई किताब हो जिसे मैं पढ़ना चाहता हूं। तुम जैसी हो तुम वैसी ही पूरी हो। कहते कहते उसकी आंखें शरारती हो गई थी।

0: चाहती थी कि कोई मेरे जज्बात को बिना बोले समझे। फिर तुम मिल गए। साधारण सा प्यार भी असाधारण हो जाता है तुम्हारे साथ जैसे। न कोई बड़े सपने, न दीवानगी, न झूठा रोमांस। तुम्हारा प्यार किसी फिल्मी डायलॉग से शुरू नहीं होता, वो तो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। पर हाँ, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरी आंखों में झांक कर शरारती अंदाज में कुछ कह जाते हो, कुछ कह जाते हो।
1: ए, आओ ना, दिल है बेकरार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर कोई थोड़ा सा भी थाम ले तो मन थिरकने लगता है, जिंदगी खुशगवार हो जाती है तब। हाँ, छोड़कर चले जाना तो आसान है, लेकिन थामे रहना, जैसे तुमने थामा मुझे। सैकड़ों को प्यार करने की जरूरत नहीं होती, तुम्हीं ने तो कहा था बस एक को 100 तरीके से प्यार किया जाए वही काफी है। प्रेम की जरूरत होती है सच्चाई, विश्वास और धैर्य। जरा थाम कर तो देखिए किसी को, कभी किसी तरह।

उसका यूं गले लगाना एक अजीब सुंदर सा एहसास है। वो थोड़ा सा स्पर्श, वो थोड़ी सी करीबी, आहा, एक आवेग नहीं, पल भर की शांति है वहां जैसे। उसका वो आलिंगन एक विश्वास देता है मेरे मन को। उसकी बाहों की खामोशी मेरी टूटन को जोड़ देती है। उसका यूं गले लगाना जैसे दिल की गहराइयों में पना देता है मेरे समूचे अस्तित्व को।

प्रेम सर्दियों में सुबह की सूरज की गर्मी जैसा है। उसका चाहना गर्मी की तपन से दूर एक ठंडक का एहसास देता है। कभी कभी ये प्रेम बसंत में हवा की हल्की सी सरसराहट जैसा लगता है और कभी कभी वो प्रेम सितार की मधुर तान जैसा बन जाता है। प्रेम की वो गर्माहट, वो तपिश, आह कितना सुकून है इस प्रेम में।

सिर्फ एक अनुभव नहीं, प्रेम साथ रहने का नाम भी नहीं, ये तो एक रूपांतरण है। हाँ, एक रूपांतरण। तपिश है, नरमाहट है, गर्माहट है, विश्वास है, प्राणवायु है ये तो। उसका

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। FM बैंड 102.1 MHz पर रात्रि के 11 बजने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कुछ देर प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को

0: विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके

0: हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
0: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में असम में 4000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव कार्यों की समीक्षा की। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज चैट बाय अपराजिता नायर। इंडिया एंड इटली टुडे फाइनलाइज्ड 15 आउटकम्स अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर्स। द एग्रीमेंट्स वर साइंड फॉलोइंग डेलीगेशन लेवल टॉक्स बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी and his Italian counterpart, Giorgia Meloni, in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said, India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025 to 2029 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said, both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Center and noted that the India-Italy Defense Industrial Roadmap has opened new avenues for co-development and co-production in the defense sector. Later in the day, Prime Minister Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agriculture Organization at its headquarters in Rome. The medal was presented by FAO Director General Ki Dong-gyu. Speaking on the occasion, the Prime Minister